0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आपने इतने प्यार से पुकारा, दिल ने दिल को सुना, हम भी चले आए, यानी कि आपके नहीं तो आपके पास, आपके और करीब on the waves of Radio Musti. Wishing you all a very good morning. वो भी Monday morning. प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम my dear listeners. कैसे हैं आप, ठीक ठाक? So already 6 जुलाई हो चुका है और बाप, time is flying, time is fleeting. लेकिन हमारा और आपका साथ ना छोटे, बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं इन खूबसूरत गीतों के जरिए. व्हाटएवर यू माइट बी स्टे वर्ल्ड ट्यून तैयार हो रही

ये काम पर जाने के लिए लेकिन काफी लोग तैयार भी हो रहे हैं टू वॉच द मैच यानी कि इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको बस इंग्लैंड की जीत हो जाए हम तो यही कामना कर रहे हैं एंड इट गॉट डिलेड ड्यू टू रेन एक घंटे से ओ माय गॉड सो आप तैयार हो जाइएगा ड्रेस अप हो जाएगा लेकिन कहीं मत जाएगा जब तक कि फुटबॉल मैच वगैरह शुरू ना हो जाए आप एंजॉय कीजिए अपने फुटबॉल मैच को और इन गानों को भी 5499 1294 पर आपके मैसेजेस का हम स्वागत करें

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: शुक्रगुजार तो हम आपके हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके घर आपके दिल में थोड़ी सी जगह पा सकें. थैंक यू सो मच. लेट मी विश अ वेरी गुड मॉर्निंग हर हर महादेव भाई सूरज शर्मा सजादा एंड पूरे परिवार थ्रियोले से. गुड मॉर्निंग धीरज आयुष विदिशा साथ में अश्विन ज्योति हरक परिवार मोदालबिया से. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी मिस सजेशन एंड आपके पिक्चर मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच. ओम नमः शिवाय. गुड मॉर्निंग आपको शीला जी लेस्पेरेंस त्रिबुशे से हैं आप. हर हर महादेव आपको भी अंजनी जी एंड आपके पूरे परिवार. हाय नीटू हाय और एम टू टीम गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटी रिया के नाम मानशी केशनी चाची प्रेमिला रामचंद्र आप है कहाँ से. वेल फ्रॉम कविता बर्टन ऑफ पुस्ट डिफ्लैक सब परिवार के नाम. गुड मॉर्निंग टोनी जी कैसे हैं आप. ठीक ठाक फ्रॉम खुशबुआ. आज आप कहते हैं कि आई कोट लाइफ इटसेल्फ इज अ स्ट्रेंज मिक्सचर वी हैव टू टेक इट एज इट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन टू बेटर इट. ये सही बात कही है आपने. जिंदगी अटपटी होती है अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं और जैसे जिंदगी होती है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं बस उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं. उसके लिए हमें गुड एक्शन करने चाहिए. व्हाट से गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती. गुड मॉर्निंग अब्दुल अंसारा बानू एंड आपको भी अब्दुल एंड कुमार देवीचंद जॉगिंग एंड लिसनिंग थैंक यू. यहाँ पर साथ देने के लिए थैंक यू अनुषा होरीराम आप हो फ्रॉम प्लान दे रोश गाना पापा ससन मामा प्रेमिला संजू आपके भाई भाभी रोशनी परी हेमकेश एंड आपके पूरे परिवार के नाम. डियर मैडम आप मुझे नीतू बुलाइए. विश हैप्पी बर्थडे टू फूफू शीला. ये है निसिस माला रुमा बेबी एंड मीरा एंड थैंक यू सो मच. हमारे लिए एक नए कई जन्मों का साथ है बस ये साथ कभी ना छूटे. और यहाँ पर मिस्टर गुलाब जगा सिंह रेडियो के साथ भी जुड़े हुए हैं एंड वर्ल्ड कप मैचेस देखने के लिए भी एकदम तैयार. अभी इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको वाला मैच अभी शुरू होने ही वाला है. इट गॉट डिलेड ड्यू टू हैवी रेन. तो बस इंतज़ार कीजिएगा और मैच देखते देखते हमारे साथ भी जुड़े रहें.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musty.
2: समा वाकई में एकदम सुहाना है और मेक्सिको सिटी में तो समा और भी सुहाना है भाई। होम टाउन में खेल रही है मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड, किसकी जीत होगी? मे द बेस्ट विन, हमें तो चाहिए इंग्लैंड की जीत हो जाए। अब अगर खेलेंगे अच्छे से तो जीत हो ही जाएंगे, लेकिन पीपल आर जस्ट वेटिंग और बारिश की वजह से मैच रुकी हुई है और बस लेट्स होप फॉर द बेस्ट।

ये साथ इतनी आसानी से छूटेगा नहीं. बस थैंक यू सो मच अफादू फैमिली खुशनुमा से. हे गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग आपको भी. आप प्रिया मोसलमा सैतंद्रे से प्लीज़ अगला गाना मेरे पति ईश्वर के नाम जो काम पर जाने के लिए तैयार हो रही है. सो बों को आज एंड गर्मा गर्म चाय के साथ आप अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कीजिए ऑफकोर्स विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. गुमनाम वाला गाना आपको अच्छा लगा सरोज, बहुत धन्यवाद. राजन मोनिका पूनम श्रेया उमेश अर्षी अम्बल कैथोबोन से. एंड बस ऐसे ही आप स्टे ब्लेस्ड एंड हमेशा मोटिवेटेड रहें और अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा विद रेडियो मस्ती. थैंक यू.

लोग बुरा नहीं होते सिचुएशंस यानी कि जो परिस्थितियां होती है वो बुरी बन जाती हैं और बुरे बन जाते हैं लोग, बस इसलिए कहते हैं जो भी करो सोच समझ कर करो। वैसे रुक तो बहुत सारे लोग गए थे लेकिन बारिश की वजह से जो मैच है मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड फ्रॉम मेक्सिको सिटी वो थोड़ी देर के लिए डिले हो गया है एंड लॉट्स ऑफ पीपल

थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंतजार कर रही हैं, बस आपको काम पर जाना है, बोकुहाश, और क्या पता आप हॉरोस्कोप भी सुनते सुनते चले जाएंगे, लेकिन मैच जो है अपने समय पर वो शुरू होगा, और बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है ना।

वो तो हमेशा से रहेगा. और अभी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द मैच वर्सेस मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड. हम कब से इंतजार करते हैं कि मैच शुरू हो जाए और देखते ही देखते 37th मिनट भी हो चुके हाँ और इंग्लैंड की जीत हो रही है. यानी कि इंग्लैंड इज लीडिंग बाय 2 एंड जूड बेलिंगहम ने 2 मिनट के अंदर 2 गोल्स दागे. यूपी, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई. हमारा दिल मचल रहा है. स्टुअर्ट जोंस और भी गोल्स के बारे में, मैच के बारे में आपको जानकारियां देते रहेंगे ऑफ कोर्स. एंड थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप. इंग्लैंड 2 मेक्सिको 0.

0: अभी तक तो हमारा दिल मचल रहा था क्योंकि इंग्लैंड की जीत हो रही थी 2-0, लेकिन अब धक धक कर रहा है क्योंकि मेक्सिको ने भी एक दो दागे दिया। ऑफ कोर्स जूलियन किनोनेस ने 42 मिनट में, यानी कि 4 मिनट के बाद एक गोल आ गया। अब क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन मे द बेस्ट विन। आपका दिन कैसा रहेगा?
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
2: Aries Mesh Rashi.
0: चलिए जी, आज जो है किस्मत आपके लिए अवसरों यानी कि मौकों के दरवाजे खोलने का संकेत दे रही है। आपकी मेहनत और समझदारी लोगों के बीच आपकी पहचान को और मजबूत बना सकती है। आर्थिक मामलों में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने का विचार मन में आ सकता है जो आने वाले समय में लाभ का कारण बनेगा।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: राइट, आज का दिन जिम्मेदारियों को सफलता में बदलने का अवसर लेकर आया है। परिवार के साथ बिताए गए पल आपके मन को सुकून देंगे और आप खुद को पहले से अधिक हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे। मौज मस्ती का मूड बना रहेगा और छोटी छोटी खुशियां भी आपको बड़ी लगेंगी। यदि किसी बात को लेकर मन में चिंता थी तो उसका समाधान धीरे धीरे सामने आता दिखाई देगा।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आज फैमिली के बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई देगा। किसी भी महत्वपूर्ण डिसीजन में जल्दबाजी करने के बजाय गहराई से सोच विचार करना आपके लिए फायदेमंद होगा। संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों को संतुलित ढंग से निभाएं क्योंकि अधिक दबाव रिश्तों में दूरी ला सकता है।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: वेल, आज आपके लिए संतुलन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगी। आय और खर्च के बीच सही तालमेल बैठाने में सफलता मिलेगी और कई रुके हुए काम भी गति पकड़ सकते हैं। कोई पुराना सपना हो तो वो पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई देगा, जिससे मन बेहद प्रसन्न होगा। वैसे लाइफ पार्टनर के साथ बिताए गए खास पल रिश्तों में नई मिठास खोल सकते हैं।
2: लियो सिंह राशि।

0: आपके विरोधियों से अधिक अपने धैर्य पर भरोसा रखने की आपको जरूरत है। कुछ लोग आपकी राह में बाधाएं डालने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता रहेगा। नई संपत्ति या निवेश से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा और आपकी कोई पुरानी इच्छा भी पूरे होने से घर में खुशी का माहौल बन सकता है।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: ऑलराइट, आज आपका दिन मेहनत और समझदारी का सुंदर मेल लेकर आया है। काम का दबाव थोड़ा अधिक रहेगा, लेकिन आपकी लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और साथी के साथ बिताए गए पल यादगार बन सकते हैं। यदि पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना मजबूत है। यह है स्टूडेंट्स के नाम और आप ही अपनी मेहनत जारी रखें। वैसे आर्थिक मामलों में सतर्क रहना आपके लिए जरूरी होगा।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: आज आपको विवादों से दूर रहकर अवसरों पर ध्यान देने की जरूरत है। धन कमाने की कई रास्ते आपको सामने नजर आएंगे और आपकी सूझबूझ उन्हें सफलता में बदल सकती है। परिवार में चल रही किसी पुरानी गलतफहमी का अंत हो सकता है और रिश्तों में फिर से मधुरता लौट सकती है। वैसे संपत्ति से जुड़ा कोई मामला थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में लाभ के मजबूत संकेत भी मिल रहे हैं। सुधैर्य और समझदारी आपको आगे बढ़ाएंगी।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज व्यापार और आर्थिक मामलों में आपके लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुराने निवेश का अच्छा लाभ मिल सकता है और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत महसूस होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। वैसे बड़ों का सम्मान और उनका मार्गदर्शन आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोल सकता है।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज परिस्थितियां माने कि सिचुएशंस आपको सावधानी और समझदारी से आगे बढ़ने का संदेश दे रही है। कामकाज से जुड़े कुछ डिसीजंस को लेकर मन में असमंजस रह सकता है, लेकिन धैर्य रखने से ही सही रास्ता दिखाई देगा। बैंक ऋण या फिर वित्तीय सहायता से जुड़ा कोई प्रयास सफल हो सकता है और कहीं अटका हुआ धन वापस मिलने से राहत महसूस होगी और कुछ नया करने की आपकी कोशिश रंग भी ला सकती है।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: ऑलराइट, आज का दिन आपके लिए अवसरों से भरा हुआ दिखाई देगा। साझेदारी के लिए किए गए कार्य अच्छे परिणाम दे सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत और ईमानदारी वरिष्ठ अधिकारियों का दिल जीत सकती है। क्या बात है, मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा और दिन में कुछ सुखद पल भी जुड़ सकते हैं। वैसे हालांकि व्यवसाय से जुड़ी कोई भी नई बातचीत किसी अनजान व्यक्ति के साथ करने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। हाँ,
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज सेहत आपकी प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी होनी चाहिए। कार्यक्षेत्र में जल्दबाजी से बचें, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है। जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ नए कदम उठा सकते हैं और आपकी लंबी अवधि की योजनाएं गति पकड़ भी सकती हैं। किसी सहयोगी की बात आपको थोड़ी चुभ सकती है, लेकिन संयम बनाए रखना ही समझदारी होगी।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली, आज धन से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। किसी बड़े निवेश या जोखिम भरे डिसीजन को फिलहाल टालने में ही बेहतर आपके लिए रहेगा। शेयर बाजार या फिर निवेश से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। किसी अजनबी की बातों में आकर डिसीजंस लेने से बचे। हाँ, और बड़ों की सेहत को लेकर आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, दैट्स व्हाई उन्हें विशेष ध्यान रखे। बस बी पेशेंट एंड डू गुड बी गुड। हैव अ नाइस डे अहेड। बेस्ट ऑफ लक।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

कोई कहने वाली बात है, आपका साथ ना ही छोड़ेंगे कभी नहीं। 554 बस थोड़ी देर के लिए, हाँ जुदा तो होंगे नहीं, लेकिन आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, वो भी 6 बजे। हाफ टाइम इंग्लैंड 2-1, बस इंग्लैंड 3-4 और मेक्सिको 1 ही पर रह जाए। भाई आप ही वही सोचते हो,

0: FM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: 6 बजे हैं. संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति. नमस्कार आपको.
6: नमस्कार निधुषा. श्रोताओं को भी नमस्कार. बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही के दौरान विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई है. सालाना तौर पर ये रकम 2.889 बिलियन रुपए से घटकर 2.786 बिलियन रुपए हुई है. ये आंकड़े जून महीने के आखिर में जारी किए गए हैं, जब विदेशी कामगारों के काम करने की स्थिति को लेकर देश में

सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई है। मार्च महीने के आखिर में सरकार ने मॉरिशस में 64,165 विदेशी कामगारों का रिकॉर्ड दर्ज किया था। हालांकि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि फैजल अली बिगन का अनुमान है कि अगर उन लोगों को भी सूची में शामिल किया जाए जो अपना काम छोड़ने के बाद बिना दस्तावेज के यहां रह रहे हैं, तो ये संख्या 70,000 के करीब हो सकती है।

0: अनुसार इन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डायलिसिस के मरीजों को पहले से ही घर से अस्पताल तक निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा मजबूत करना ताकि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर अयतुल्ला अली खामिने के शव को आज तेहरान भर के रास्तों पर ले जाया जाएगा जिससे जनता उनके अंतिम दर्शन कर सके। उनकी मैयत में दुनिया के कई देशों के राष्ट्र और सरकारी नेता तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। कल ईरान के में आम छुट्टी की घोषणा की गई थी लेकिन इन सबके बीच उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा अली खामिने की गैर मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पश्चिम से आ रहे एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़े बादलों का असर आज दिन से हमारे इलाके पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश हो सकती है। रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा दक्षिण की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सैंडल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी, मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चलेंगी। कल से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकेगी। सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम को 5:43 पर। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 के मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv,
1: NBCRadio.tv. Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services, TV contents such as films, TV serials, local productions amongst others, TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on NBC's website mbc.mu and on NBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through NBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
2: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
3: Radio Musty.

हमको तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा? वेल, अगर जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो शायद हम इंसान जो होते हैं ना, सब कुछ फटाफट हमको चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हम लोग कम मेहनत करेंगे। तो मुश्किल आती ही है, तभी तो हम आगे बढ़ने की हम कोशिश करती है, कोशिश लगे रहे। और अभी जो मैच चल रहा है बिटवीन मेक्सिको एंड इंग्लैंड, तगड़ा मैच है भाई। किसकी जीत होगी, सब कोई कह रहा है, सब कोई अपना अपना अपनी अपनी टीम के बारे में सोच रहा है। एंड केन हैज कम, तो हम कहेंगे हैरी केन हैरी करो, यानी कि जल्दी जल्दी करो, गोल डालो और इंग्लैंड को जीतवाओ। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हैप्पी बर्थडे टू आरजे सन, आपको हैप्पी बर्थडे। ये है भाई सूरज एंड निशाल, सब परिवार की तरफ से आप

आपको बेस्ट विशेस. गुड मॉर्निंग इंदिरा, रिश्मा, विमल, अंजु, कृषा, केशव, नील, मायशा, तानिया, मोता, ब्लॉन्श से हर हर महादेव. आपको भी हैप्पी मंडे. ये आपके लिए गर्मा गर्म चाय के साथ टू क्यूट नीसेस कृति एंड किमी, भाई संजीव और शिवाला जा रहे हैं, तो बस हर हर महादेव. बम बम का नाम लीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा, है ना. सुया बिहारी परिवार कोंगुमा से, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग यहाँ पर. गुड मॉर्निंग. ओके, यहाँ पर लंबा मैसेज है. टू माय हस्बैंड पुष्कर, बों कुआज टू हिम एंड ऑल हिज कॉलीग्स ऑफ ऑप्स रूम पीतों पुलिस स्टेशन. सलाम साहब जी. इक्वली को साथ छो लवली लेडीज एंड गुड जेंटलमैन. क्या बात है. लव इज ब्यूटिफुल वन यू फाइंड द राइट वन. सेलिब्रेटिंग आवर वेडिंग एनिवर्सरी इन अ फ्यू डेज. क्या बात है दिशा. एंड आपको और पति पुष्कर को अभी से ही बहुत सारी बधाइयाँ. जोड़ी सलामत रहे. फ्रॉम किरोधर गुर्दी फैमिलीज ऑफ कोटेज रिविया चौंपा. मैसेजेस तो यहाँ पर भर भर के आ रही हैं. ललिता एंड जीतन फैमिली, हैप्पी मंडे टू यू टू. यहाँ पर है कौन, दुधिका एंड रघु जना परिवार. गुड मॉर्निंग आपको. एंड प्रेमिला जी प्रदीप पपाई से हैं. पति रंजीत, शुभादि, सबके नाम हैप्पी बर्थडे टू यू. शिवम एंड आप शिवम रामी तो मोसल मोसैत ऑन्द्रे, मॉम मीनाक्षी, पापा करुण, आपकी बहन निहारिका, विधि, रामित परिवार, आप दया एंड रेडियो मस्ती टीम की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: आप जैसे प्यारे लोग हैं तो हम क्या कहें, बस थैंक यू सो मच. हे रेखा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपको कैसे हैं, ठीक ठाक? बेटा अंश पोंबोजे से हैं और पूरे परिवार के नाम बृंदा बंगारू फ्रॉम गोजबेल आपको गतुलन वैसे मिला. थैंक यू सो मच, आपने खूब एंजॉय किया. हैव अ लवली मंडे अहेड. अनुष्का फ्रॉम गुडलैंड्स एंड हैप्पी 8th बर्थडे टू ट्विंस दियांशी एंड दिव्य लू बोवरीन ऑन आइलैंड. यह देवा शाह रविश प्रिशा लवशा सब दियो वांस की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड शुभकामनाएं.

पर हम नहीं भूले, इंग्लैंड इज स्टिल लीडिंग बाय 2-1 एंड दो गोल्स दागे इंग्लैंड ने. एम आई राइट, जारे क्वांसा को रेड कार्ड मिला? ओप्स. 6:23 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन, उसके बाद यानी कि 7 बजे के बाद वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट आपके दिल की धड़कनों को तेज बढ़ाने आएंगी, जबकि हमारी मुलाकात होगी कल यानी कि दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इन रेट्रो रिदम.

चलते चलते अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू माय डियर कविता. एंड यहाँ पर है कौन? गुड मॉर्निंग स्वीटी फ्रॉम कप मालूरू. आपकी बहने हेमलता भजन, भारती पोतोपीमो से भाई विक्रम काम कर रही है एज ड्राइवर. बो कुहाश एंड टेक केयर एवरीवन. हाँ, सो बो कुहाश टू ऑल दोस गोइंग टू वर्क. रास्ते पर होंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली. और

पर, यानी कि इंग्लैंड लीडिंग बाय 3-2-1। साढ़े छह बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन।

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई है। मार्च महीने के आखिर में सरकार ने मॉरिशस में 64,165 विदेशी कामगारों का रिकॉर्ड दर्ज किया था। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। अधिकारियों के अनुसार समाधान के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस सिस्टम और ई हेल्थ की तरफ जरूरी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी देखते हुए जल्द ही एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन ने इस फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताकर इसका स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरानी

0: वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर आयतुल्लाह अली खामिनी की मैयत में उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा अली खामिनी की गैर मौजूदगी में ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही के दौरान विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई है। सालाना तौर पर ये रकम 2.889 बिलियन से घटकर 2.786 बिलियन रुपए हुई है। ये आंकड़े जून महीने के आखिर में जारी किए गए हैं, जब विदेशी कामगारों के काम की स्थिति को लेकर देश में सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई है। मार्च महीने के आखिर में सरकार ने मॉरिशस में 64,165 विदेशी कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज किया था। हालांकि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि फैजल अली बीगन का अनुमान है कि अगर उन लोगों को भी इस सूची में शामिल किया जाए जो अपना काम छोड़ने के बाद बिना दस्तावेज के यहाँ रह रहे हैं, तो ये संख्या 70,000 के करीब पहुंच सकती है। शैली नियरबर्न, यशना मिश्रा।
1: फैजल अली बिगन के अनुसार ये विदेशी कर्मचारी वैध तरीके से यहाँ पर मॉरिशस में काम करने आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बाद में अपने रहने या काम करने की परिस्थितियों के कारण अवैध स्थिति में पहुंच जाते हैं। परिस्थिति या कार्य शर्त ठीक नहीं, एजेंट ने नहीं बताया कि उनकी पगार से महीने में 3,000 रुपए काटे जाएंगे जीवन खर्च, डॉर्मेट्री और खाने पीने के लिए। ये सब जब उन्हें पता चलता है तो वे भाग जाते हैं, छुप कर काम करते हैं, ये जानते हुए कि जब इमिग्रेशन को पता चलेगा तो उन्हें रोक कर डिपोर्ट किया जाएगा। श्रमिक संघ प्रतिनिधि इस सोच के भी खिलाफ हैं कि विदेशी कर्मचारी मॉरिशस के कर्मचारियों की तुलना में सस्ते हैं या उन्हें विशेष प्राथमिकता दी जाती है। उनके अनुसार कार्यस्थल पर विदेशी और मॉरिशस के कर्मचारियों के समान मौलिक अधिकार होते हैं। उनका कहना है कि असंतुलन या असमानता मुख्य रूप से कुछ भर्ती प्रक्रियाओं या फिर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के कारण पैदा होता है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसी अवैध स्थिति को बढ़ावा देते हैं, कदम नहीं उठाते और बदले में इन्हीं अवैध कर्मचारियों को काम देते हैं, पगार भी देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विदेशी कर्मचारी मॉरिशनों की नौकरियां छीन रहे हैं। फैजल अली बिगन का कहना है कि कई पद अब भी खाली पड़े हैं, जबकि मॉरिशन उच्च शिक्षा प्राप्त करने या अन्य कैरियर विकल्पों की ओर अधिक रुझान रखते हैं। जो काम ये विदेशी कर्मचारी कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे नहीं करेंगे। कपड़ा, होटल, कृषि, बस परिवहन क्षेत्र, ड्राइवर आदि का काम, जिस काम को मॉरिशन ठुकरा रहे हैं, ये विदेशी कर्मचारी वही काम करने आते हैं। उन्होंने दावा किया कि 30 वर्षों से अधिक के अपने ट्रेड यूनियन अनुभव में उन्होंने कभी भी ऐसे किसी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं देखी जिसने अवैध स्थिति में रह रहे श्रमिकों को काम पर रखा है, जबकि कानून में इसके लिए स्पष्ट दंड का प्रावधान है।
0: सरकारी अस्पतालों में मरीजों की ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंतरिम निदेशक डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इन समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डायलिसिस के मरीजों को पहले से ही घर से अस्पताल तक निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सिस्टम की सुविधा मजबूत करना ताकि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। शैली नियरबर्न, यशना मिश्रा।
1: जब कोई आपात स्थिति हो, कोई दुर्घटना या हार्ट अटैक, तो 114 हॉटलाइन कायम है। हर इलाके में 2 एम्बुलेंस हैं। हम इस सेवा को रात को भी जारी रखने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर रात को एक ही एम्बुलेंस काम करता है। कुछ एम्बुलेंस पुराने हो गए हैं और खराब भी हो सकती हैं, इसी कारण कुछ समय तक मरीजों को लाने और छोड़ने के लिए समस्याएं हो रही थी। बहुत जल्द समस्या समाप्त हो जाएगी। जब रीनल ट्रांसप्लांट यूनिट खुला तब कई

0: एम्बुलेंस मिले जिससे फ्लीट बढ़ी है। अब बजट में निर्धारित रकम की सहायता से हम सेवाओं को भी और बेहतर कर पाएंगे।
1: अधिकारियों का ये भी मानना है कि अस्पतालों में मेडिकल दस्तावेजों का खो जाना या उनकी गलत फाइलिंग एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इसके पीछे डिजिटल प्रणाली और रिकॉर्ड्स विभाग के कर्मचारियों की कमी के कारण पाए जाते हैं और समाधान के तौर पर मंत्रालय ई हेल्थ की तरफ कदम बढ़ा रहा है। शुरुआत फ्लैग के अस्पताल के साथ की जाएगी। इस सिस्टम के जरिए देश के सभी सार्वजनिक अस्पतालों में रिकॉर्ड्स एक ही नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।
0: ऐसी समस्या जो सालों से बनी रही। कई मॉरिशन जब अस्पताल आते हैं तो वे अपने आइडेंटिटी कार्ड साथ नहीं लाते और ऐसे नाम बोलते हैं जो उनकी आईडी में नहीं है। ऐसी स्थिति में कभी कभी वे एक दूसरे व्यक्ति का नाम भी ले लेते हैं, इसीलिए कभी कभी एक ही नाम पर दो फाइल्स भी होते हैं। फाइल में आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर है वो जरूरी है। हमारे रिकॉर्ड्स पूरी तरह से डिजिटलाइज नहीं हुए हैं और रिकॉर्ड्स अफसर की भी कमी है। इसका भी समाधान निकल जाएगा। ई हेल्थ प्रणाली से भी बहुत कुछ सुलझ जाएगा और ये एक ऐसी प्रणाली है जो देश के 5 अस्पतालों में कायम होगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा।
1: दुनिया मौसम संबंधी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जुलाई और सितंबर महीनों के बीच एलनीनो के तेज होने की आशंका है, जिससे दुनिया के कई इलाकों में गर्मी की भीषण लहर, सूखे तो कहीं भारी बारिश का खतरा बढ़ जाएगा। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं है। वाकवा के ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। आमतौर पर एलनीनो का असर 8 से 12 महीनों तक रहता है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी देखते हुए जल्द ही एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। ये नई संस्था उन मुख्य सुझावों में से एक है जो ऐसे बच्चों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशने के वास्ते स्थापित कमेटी ने दिए हैं। परिवार कल्याण मंत्रालय इस संबंध में एक नया विधेयक प्रस्तुत करेगा। मंत्रिमंडल ने इस पूर्णतः स्वायत्त विशेष देखभाल और शिक्षा केंद्र की तत्काल स्थापना के लिए मंजूरी दी है। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनीता गुरा ने इस फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार इस संस्थागत कमी को दूर करना बहुत आवश्यक है। पेश है ये रिपोर्ट यशना मिश्रा के साथ।
2: À peu près 10% des cas rapportés à mon bureau concernent des enfants qui ont des trous.
0: मेरे दफ्तर में दर्ज 10% मामलों का संबंध उन बच्चों से है जिनके बर्ताव में समस्या है। हिंसा, मौखिक या शारीरिक हिंसा, धमकी, भावनात्मक या मानसिक परेशानी, ये वे बच्चे हैं जो उन परिवारों से आते हैं जहां आर्थिक समस्या है, विघटन है, हिंसा है, तनाव है। भावनात्मक मार्गदर्शन का अभाव या तनाव इन बच्चों को प्रभावित करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड संस्था बहुत जरूरी है जहां इन बच्चों को एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।
1: घरेलू हिंसा के पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा करना और साथ ही हिंसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना, ये डोमेस्टिक अब्यूज बिल का प्रमुख मकसद है जिस पर पिछले मंगलवार से राष्ट्रीय सभा में बहसें चल रही हैं। ये विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेगा। इसके लिए इसमें हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसमें आर्थिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक शोषण जैसे रूपों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक में एक्सक्लूजन ऑर्डर और इंटरवेंशन ऑर्डर जैसे नए प्रावधान किए गए हैं जिससे पीड़ितों और उनके बच्चों की बेहतर सुरक्षा हो और हिंसा करने वालों को अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह होना पड़े। पेश है ये रिपोर्ट अंजलि सिरतन और यशना मिश्रा के साथ।
0: मॉरिशस में घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी ढांचे में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया डोमेस्टिक अब्यूज बिल इस समय राष्ट्रीय सभा में परीक्षण के स्तर पर है। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव है। सबसे बड़ा परिवर्तन घरेलू हिंसा की परिभाषा में किया गया।

0: अब तक ये मुख्य रूप से शारीरिक हिंसा तक सीमित थी, लेकिन अब इसे और व्यापक बनाया गया है। इसका संबंध मात्र महिलाओं से नहीं बल्कि पुरुषों से भी है। अब मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, आर्थिक हिंसा के साथ साथ घर के अंदर नियंत्रण, डराने धमकाने, सामाजिक रूप से अलग रखने तथा आर्थिक बाधाएं उत्पन्न करने जैसे व्यवहारों को भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में शामिल किया जा रहा है। विधेयक में उन बच्चों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जो ऐसे हिंसक माहौल में रहते हैं। भले ही वे सीधे तौर पर शारीरिक हिंसा के शिकार न हो, लेकिन लगातार हिंसक वातावरण में रहने के उनके अनुभव को अब पारिवारिक परिस्थितियों में अधिक महत्व दिया जाएगा। विधेयक का एक और महत्वपूर्ण पहलू घरेलू हिंसा करने वालों के पुनर्वास से जुड़ा है। मनोवैज्ञानिक संजना गोविंद के अनुसार पुनर्वास की प्रक्रिया से अपराधी को अपनी हिंसक प्रवृत्ति के पीछे छिपी समस्याओं का सामना करने और उन्हें समझने में मदद मिलेगी। यदि व्यक्ति को अपनी समस्याओं का सामना करने का मौका मिले तो शायद वो इससे उभर पाए। मार्गदर्शन बहुत जरूरी है।
1: Vraiment comprendre c'est quoi le problème, l'encadrement que la personne a besoin, ça reste très très important.
0: उन्होंने ये भी कहा कि मनोवैज्ञानिक परामर्श और उपचार दोबारा हिंसा की घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इसकी सफलता सामाजिक सहयोग और अपराधी की खुद को बदलने की इच्छा पर भी निर्भर है।
1: Souvent, l'auteur de violence, c'est une personne qui n'a pas vraiment contrôle sur ses émotions.
0: हिंसा करने वाला आमतौर पर वो होता है जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा है, जिया है, जिसका खुद की भावनाओं पर वश नहीं होता, जो खुद के बर्ताव को काबू में नहीं रख पाता, जो बचपन से ही शांत या उचित तरीके से खुद की भावनाओं को दूसरों के सामने नहीं रख पाता। मादक द्रव्य या शराब आदि भी कारण हो सकते हैं। सामाजिक सहायता और पेशेवरों की मदद से ज्यादा व्यक्ति को खुद को बदलने की चाह होनी चाहिए।
1: Soutien social ou le soutien des professionnels. Ce qui reste le plus important, c'est le willpower de la personne.
0: Domestic abuse bill पर बहस अगले मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में फिर से शुरू होगी।
2: व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों को आजकल एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है जिसमें यूजर नेम रिजर्व करने के लिए कहा जा रहा है। 29 जून को इस मैसेजिंग ऐप ने दुनिया भर में अपनी 30 बिलियन यूजर्स के लिए ये नया फीचर लागू करने की घोषणा की। जल्द ही बिना अपना फ़ोन नंबर शेयर किए संपर्क करना मुमकिन होगा, जबकि अभी ऐसा करना ज़रूरी है। अमेरिका की इस कंपनी के अनुसार इस कदम के पीछे मकसद है उन लोगों की प्राइवेसी बेहतर करना जिन्हें किसी ग्रुप चैट में शामिल होने का आमंत्रण मिलता है या जो कोई नया कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। हालांकि इस बड़े अपडेट को अपने सबसे बड़े मार्केट में एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सरकार ने व्हाट्सएप से इस फीचर को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामले बढ़ने का खतरा है। प्रणव बिहारी, यशना मिश्रा।
0: मॉरिशस में घरेलू हिंसा से गणेशा ने बुधवार से ही अपना यूजर नेम रिजर्व कर लिया है। रुकने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। उसके लिए इसके कई लाभ हैं।
3: Tu places mon cher, mon numéro de téléphone avec un étranger. Il peut gagner mon numéro de téléphone, il peut gagner un email username. Aussi, moi, je peux dire que pour une raison professionnelle et ou cher ou username, il est beaucoup plus facile à retenir un nom qu'un numéro de téléphone.
0: अभी के लिए इस अपडेट को लेकर कम ही जानकारियां दी गई हैं, लेकिन भारतीय सरकार इसे अलग नजरिए से देख रही है। उसे शक है कि इस कदम से साइबर अपराध के खतरे और बढ़ जाएंगे। यदि भारत पीछे हटा तो मेटा को लगेगा भारी झटका, क्योंकि मात्र भारत में ही व्हाट्सएप के 850 मिलियन यूजर्स हैं। नॉलेज 7 कंपनी के निदेशक और इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट अविनाश मितु बताते हैं, कोई भी किसी भी बॉलीवुड अभिनेता या फिर मशहूर नेता या मंत्री का नाम डाल सकता है। जब किसी को मैसेज मिलेगा तो उसे लगेगा कि असल में वही व्यक्ति मैसेज कर रहा है। मेटा के लिए जांच करना असंभव होगा। शायद इसके लिए लोगों को ज्यादा शिक्षित करना ही जरूरी है। शायद समय आ गया है मॉरिशस में लोगों को ज्यादा

0: जागरूक करने का। यहाँ की आबादी ऐसी नहीं जिसने आजीवन टेक्नोलॉजी को जिया है, यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा है, बच्चों को भी जागरूक करना उतना ही जरूरी है। इस बीच कई मॉरिशनों ने अपना यूजर नेम रिजर्व कर लिया है, लेकिन आईसीटी मंत्रालय की ओर से इस पर अभी तक कोई विज्ञप्ति नहीं मिली है।
1: कोंडेमास में कल एक हादसा पेश आया। 24 साल की एक महिला उमेश्वरी एंटनी की मृत्यु कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन के कारण हुई है। उसके पति ने उसे बाथरूम में बेहोश पाया और उसे फ्लैक के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे वेंटिलेटर आईसीयू में वेंटिलेटर में रखा गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। जांच से ये पता चला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की इंटॉक्सिकेशन के कारण ये हादसा पेश आया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, ईरान के वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर आयतोल्ला अली खामिनेई के शव को आज तेहरान भर के रास्तों पर ले जाया जाएगा, जिससे जनता उनके अंतिम दर्शन कर सके। उनकी मयत में दुनिया के कई देशों के राष्ट्र और सरकारी नेता तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। कल ईरान में आम छुट्टी की घोषणा की गई थी, लेकिन इन सब के बीच उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा अली खामिनेई की गैर मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

आखिर में चले जानते हैं मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पश्चिम से आ रही एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़े बादलों का असर आज दिन के दौरान से पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर बाद दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा दक्षिण की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सैनल प्लातों पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी, मास्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जाने वाली एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं और कल से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकेगी। आज सुबह 6:46 पर सूर्योदय हुआ। शाम को 5:43 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई मार्च महीने के आखिर में सरकार ने मॉरिशस में 64,165 विदेशी कर्मचारियों का रिकॉर्ड दर्ज किया सरकारी अस्पतालों में मरीजों की ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं अधिकारियों के अनुसार समाधान के लिए इमरजेंसी एम्बुलेंस सिस्टम और ई हेल्थ की तरफ जरूरी कदम बढ़ाए जा रहे हैं गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी देखते हुए जल्द ही एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाएगा ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने इस फैसले का स्वागत किया अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान में वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर अयतुल्ला अली खामेनी की मैयत में उनके बेटे और उत्तराधिकारी की गैर मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया देश विदेश की नई खबरों के साथ ही मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ इसको आप तक पहुंचाने में फिजान हमारे साथ रहे जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार
1: NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुनिए नंबर 4C रॉयल रोड ओकुले में 81 साल की 81 years old श्रीमती

बाला रामदू, श्रीमती बाला रामदू, पैदाइशी नाम एराना, जो फीफी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे रॉयल रोड बोबासा के लिए एनसन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। बेचू रोड बोनाकवे में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड श्रीमती दाना लक्ष्मी प्रोताप, पैदाशी नाम ओबिगादू, जो मून नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके पति श्री किशोर कुमार प्रताप के मकान बेचू रोड बोनाकवे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोनाकवे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। शुमेलागो मोदाल बेमी 27 साल की 27 ईयर्स ओल्ड के दिवेश गौरिया, जो गो नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे की माँ श्रीमती रूपवंती गौरिया के मकान शुमेलागो मोदालबे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रणमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। थोबी श्रोत्रियोले में 83 साल की 33 ईयर्स ओल्ड श्रीमती धनमावती गोबिन, पैदाशी नाम भवानी, जो धर्मावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके बेटे श्री नीरज गोबिन के मकान थोबी श्रोत थयोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थयोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:00 PM। ला क्लेमेंस रिविया जो एम्पॉमे 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड श्रीमती जसोदा पोचू, पैदाशी नाम आगुंदुआ, जो ज्ञानती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके बेटे श्री दानी पोचू के मकान लाक्लेमेंस रिविया जो एम्पॉमे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। लाफोर्ज स्ट्रीट पोंकोलविल नोवेल फ्रांस में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री तातेज बहादुर पदारत, जो मानन नाम से ज़्यादा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके मकान लाफोर्ज स्ट्रीट पोंकोलविल नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। बोग स्ट्रीट विलमेकोचेमिलिते में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री राजकुमार जगन, जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के डेढ़ बजे इनकी बेटी श्रीमती विद्या जुरावन के मकान बोग स्ट्रीट विनमेकोचे मिलते ऐसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 5:30 PM। सिमेटिया रोड प्लान मानियो में 36 साल के 36 ईयर्स ओल्ड श्री वितीश बुधन, जो निश्ले नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 4:30 बजे इनकी अर्थी आज शाम 4:30 बजे इनकी माँ श्रीमती संध्या राबूजी के मकान सिमेचिया रोड प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 4:30 PM। स्कूल लेन पेटी जूली में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड श्री ईश्वर लाल जगीसर, जो पिंगो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती अनिता जगीसर के मकान स्कूल लेन पेटी जूली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 11:30 AM। इंदिरा गांधी रोड पेटी राफे में 45 साल की 45 ईयर्स ओल्ड श्री शिव कुमार बानिया
जो अश्विन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी।

0: मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी आज दिन की 2 बजे इनके मकान इंदिरा गांधी रोड पिछे आफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोमा स्काल पिछे आफे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। फिलाओ लेन ग्रैंड पॉइंट ऑफ पीमामी, फिलाओ लेन ग्रैंड पॉइंट ऑफ पीमामी 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड श्रीमती चंद्रावती शंकर पिताशी नाम रामलोगन जो प्रभावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री विनोद शंकर के मकान फिलाओ लेन ग्रैंड पॉइंट ऑफ पीमामी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोएटो बीच की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा।
2: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते,

0: जो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
4: लड़की बड़ी अनजानी है।
1: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
5: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
1: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: वेलकम टू RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: नॉर्थ, साउथ,
3: 103.5,
2: ईस्ट, वेस्ट,
3: 96.4,
2: सेंटर,
3: 99.4।
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
1: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2
0: Radio Musti.
4: गाड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 7 बजे हैं।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Mustie.
2: वेल दोस्तों, अगर बाहर का मौसम देखा जाए तो इतना सुहाना है, इतना प्यारा है कि दिल करता है कि हाय इसी में खोके रह जाए। आप सबों का वेलकम करते हैं मंडे 6th of July। कैसे हैं आप? सुबह के 7:09 हुए हैं, बस साथ देने के लिए आ ही गए हैं और टूटी फूटी आवाज़ में आपका साथ देंगे, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो गाने हैं वो आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। सो दिस इज़ विनीता विद यू आपके अपने मॉर्निंग बीट में। आपको बता दें यहाँ पर आपके लिए स्पोर्ट्स न्यूज़ लेकर आए हैं, मौसम का क्या हाल होगा, ट्रैफिक की क्या रिपोर्ट है, हाँ बर्थडे ऑफ द डे इसको कैसे भूल सकते हैं हम, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके और हमारे कुछ बातें जो कि बहुत सारी बातें बन जाती हैं। तो साथ देते रहिए, हमारे गीतों के साथ एंजॉय करते रहिए, अपने मंडे को खूबसूरत बनाइए मन लगाते हुए हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग बीट।
0: मॉर्निंग बीट
1: RM2 Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप इस समय सुन रहे हैं मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती और मैं हूँ विदिता का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्शन। आवाज़ थोड़ी अलग लग रही है ना। अरे घबराओ नहीं, ये कोई नया रेडियो फिल्टर नहीं है, बस सर्दी जुकाम का स्पेशल इफेक्ट है और ये थोड़ी देर में चला जाएगा। अब बस आप लोग हमारे साथ रहिएगा और अभी के लिए मैं इतना कहूँगी कि अगर आज आप किसी का दिन स्पेशल बनाना चाहते हैं, किसी को हैप्पी बर्थडे विश करने के बाद अगर आपको कोई गिफ्ट दिलाना चाहते हैं तो वो काम हम पे छोड़ दीजिए। लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से हम एक वाउचर ले आए हैं जो हम उनको दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, उनका नाम और उनका फ़ोन नंबर, जी हाँ जिनका बर्थडे है उनका फ़ोन नंबर आपको हम तक पहुंचाना है ऑन 5499-1294।

क्या बात है भाई, आजकल कोई फोन ही नहीं उठाता। आप लोग विशेस के लिए इतने सारे नंबर भेजते हो, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि उनसे बात हो जाए और उनसे कुछ ऐसी भी बातें हो जाए जिनसे हम भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाओ। मस्ती तो हमें भी चढ़ी रहती है कि भाई किसी को आज हम बकरा बना दें, लेकिन क्या बात है आजकल कोई फोन उठाता ही नहीं है। तो हम कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं, चलिए देखते हैं अभी क्या फोन बचता है, क्या ये फोन उठाते, अगर फोन उठा दिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं क्या बोलूं, इनको तो वाउचर देना ही पड़ेगा। तो शायद मेरी आवाज से डर के लोग आजकल फोन नहीं उठा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई हेलो बोलेगा कि नहीं। फोन तो वैसे भी बज रहा है भाई, चलिए देखते हैं। बजा बजा, फोन तो बज रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। क्यों नहीं उठा रहे हो भाई, उठा लो फ़ोन, हमें भी मन है कि हम थोड़ा सा आपसे मजाक कर लें। चलो कोई बात नहीं जी, यहाँ पर कोशिश तो हमारी जारी है और हमारी कोशिश यही थी कि आज हम बैंक पे थोड़ा सा लूट मारते और रिद्धि जी जो हैं उनसे हम कुछ बातें करते, लेकिन रिद्धि सोबरन ने फ़ोन नहीं उठाया। काम करती हैं वैन में, बैंक में काम करती हैं, शी इज़ 25 ईयर्स ओल्ड। ओके क्या बात है, तो चलो कोई बात नहीं जी, आपको हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की तरफ से। आई होप कि आप सुन रही होगी रेडियो, और जिन्होंने भी उनके लिए मैसेज भेजा है, मेरे ख्याल से उनकी मम्मी है जिन्होंने मैसेज भेजा है, तो भाई आपकी बेटी ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन उनको हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश कीजिएगा। एंड उनके लिए हम लेकर आए हैं एक वाउचर, जी हाँ एक वाउचर जो आपको आकर कलेक्ट करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। और साथ में आपको करना क्या है, आईडी कार्ड उनका लेकर आना पड़ेगा, याद रखिए आज नहीं तो कल, बस दो दिन है आपके पास, आपको आकर ये जो वाउचर है कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड वंस अगेन रिधि को हैप्पी बर्थडे। RM2 Radio Masti Feel

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की ओर। जानेंगे कि अभी चल क्या रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है और क्या चल रहा है। विदिता, तुम भी कमाल की बात करती हो। हाँ, तो अभी अरविंद आने वाले हैं थोड़ी देर में हमारे लेकर कुछ लेटेस्ट खबरें। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो आप लोग जाहिर सी बात है समझने की कोशिश करिए, भाई मैं ही हूँ विदिता, मैं ही हूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं खुद की आवाज़ सुनकर सोच रही हूँ कि कहीं और तो मुझसे बात नहीं कर रहा। होता है आजकल सर्दी खांसी ज़ुकाम यही चल रहा है और मैं थक गई हूँ बोलते बोलते। भाई अपना ख्याल रखो। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये लड़की सबको कहती थी अपना ख्याल रखो, फिर उसका ख्याल कौन रख रहा है। मैं खुद रख रही हूँ, डोंट वरी। और यहाँ पर आपको बस इतना कहूँगी कि मौसम जब बदलता है तो इसके चलते कभी कभी घरेलू नुस्खे काम नहीं करते, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा और ज़िद्दी मत बनिएगा। जब एक बार मम्मी ने बोल दिया कि डॉक्टर को दिखाना है तो जाना है, ठीक है। चलिए इसी के साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे। मंडे 6 जुलाई, भूलिएगा नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो वी गोना विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अश्रिति निमांशा बालगोबीन। 18 साल की हो गई अभी, मेरे ख्याल से अपनी मम्मी के साथ होगी, स्कूल जा रही होगी। तो चलिए उनके लिए बस बहुत सारा प्यार। एंड जितने भी लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि सूरज बिंका काठुको से, वो भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको भी बहुत सारा प्यार है पूरी फैमिली की तरफ से। हैप्पी बर्थडे।

0: नैना लड़ावा नहीं, हम टीवी लगावा और फिर उसके बाद मैच दिखावा और फिर उसके बाद अरविंद आ जाते हैं स्पोर्ट्स न्यूज के साथ।
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो द फ्लो एक्सपर्ट।
2: स्पोर्ट्स न्यूज
3: रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
0: चलो भाई बात कर रहे थे हम इंग्लैंड की और यहाँ पर अरविंद लेकर आए हैं हमारे लिए लेटेस्ट खबरें। गुड मॉर्निंग अरविंद।
4: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आरएम टू लिसनर्स। द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। व्हाट ए मैच, लाखों में एक। इंग्लैंड के द थ्री लायंस के लिए एटीट्यूड की प्रॉब्लम कही जा रही थी, पर एटीट्यूड का मामला रहा इंग्लैंड 3 मेक्सिको 2। क्वार्टर फाइनल में इट्स इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, इस पर अभी चर्चा करेंगे। अर्लिंग अलोन ने ब्राजील को घर भेजा। लासेलिसाओ वर्ल्ड कप 2026 से आउट। 2-1 से नॉर्वे की जीत। इट वॉज नॉट फ्रॉम नॉर्वे, ये है नॉर्वे। अर्लिंग अलोन का डबल, ब्राजील का गोल पेनाल्टी पर नेमार ने स्कोर किया। हर तरह से नॉर्वे ब्राजील से बेहतर टीम थी। उसके गोलकीपर नाइलॉन का लाजवाब परफॉर्मेंस, पेनाल्टी रोका, कई बार टीम को बचाया। वर्ल्ड कप में नॉर्वे की सबसे कीमती जीत। पहली बार के लिए नॉर्वे वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में। 5 बार वर्ल्ड कप विजेता ब्राजील को वापस स्कूल भेजना होगा सीखने के लिए कि इन दिनों फुटबॉल कैसे खेलते हैं। नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फर्स्ट हाफ में 6 मिनट के अंतराल में 3 गोल, सबसे पहले बेलिंगम का डबल, फिर मेक्सिको के लिए पिनेडेस का गोल। खराब मौसम के कारण मैच सुबह 5 बजे शुरू हुआ, मतलब 1 घंटा बाद। फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड के गोलकीपर पिकफोर्ड ने कई बार मेक्सिको को रोका। सेकंड हाफ की शुरुआत में ही इंग्लैंड के डिफेंडर क्वांशा को रेड कार्ड दिखाया गया। 10 खिलाड़ियों के बावजूद इंग्लैंड के लिए हैरी केन का गोल पेनाल्टी पर 3-1, फिर इसी हैरी केन के फाउल पर मेक्सिको के लिए पेनाल्टी, स्कोर किया राउल यिमेनेज ने। यहां से इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी डिफेंड करने लगे। अज़्तेका स्टेडियम का माहौल गर्म हो गया। 10 खिलाड़ियों के साथ सहना पड़ा मेक्सिको के अनगिनत प्रयास, यहां तक कि कप्तान केन को निकाला गया। एडेड टाइम 11 मिनट इंग्लैंड के लिए 11 घंटों से कम नहीं था, पर बहादुर जांबाज लायंस मेक्सिको के प्रहारों को नाकाम करते रहे। पिकफोर्ड का सेंसेशनल मैच, इंग्लैंड जीत गया 3-2 से। एटीट्यूड का डर था, पर इंग्लैंड का एटीट्यूड काम आया। आज के मैच रात के 11 बजे पोर्टुगल वर्सेस स्पेन, फिर कल सुबह 4 बजे यूएसए वर्सेस बेल्जियम, कल ही रात 8 बजे अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट और कल मिडनाइट किक ऑफ रात्रि के 12 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया। बुधवार को आराम का दिन, फिर गुरुवार को थर्सडे से क्वार्टर फाइनल शुरू। यूएसए का फुलाहिन बालोगन आज खेल पाएगा, उसके रेड कार्ड को ओवरटर्न कर दिया गया। बोस्निया के खिलाफ उसे रेड कार्ड दिया गया था, ऐसे में वो आज का मैच नहीं खेलता, पर फीफा ने रेड कार्ड से सस्पेंशन को वापस ले लिया। फैसले के तुरंत बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा को थैंक यू कहा, शुक्रिया कहा। इस फैसले से बहुत लोग नाराज हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और फीफा के बीच, उसके प्रेसिडेंट इन्फांटिनो के बीच गहरी मित्रता है। बेल्जियम इस फैसले से नाराज है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बालोगन यूएसए का टॉप स्कोरर है, उसका मैदान में होना यूएसए के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, मेजर बूस्ट है, जबकि बेल्जियम के लिए खतरा। रेफरी विसल बजा के फैसला लेते हैं, यूएसए में ट्रंप बजा के फैसले बदले जाते हैं। ट्रांसफर न्यूज में मैनचेस्टर यूनाइटेड का टारगेट बन गया है चेल्सी का मिडफील्डर आंद्रे सांतोस। इंटर मिलान का फुलबैक डेंजल डेम्फ्राइज अब रियल मैड्रिड में आ गया है। न्यूकासल यूनाइटेड ने होफनहाइम से आइवरी कोस्ट के इंटरनेशनल खिलाड़ी बाजुमाना टूरे को साइन किया, और लियांड्रो ट्रोसा आर्सेनल से बेसिक्टास में जा रहा है 17 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग में। टेनिस, कल नोवाक जोकोविच विंबलडन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, साथ में उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया विंबलडन में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाला। ये रिकॉर्ड पहले रोजर फेडरर के पास था। अन्य मैचों में पेगुला की जीत हुई, मुचोवा की जीत, सबालेंका की हार, ओसाका ने उसे हराया, यानिक सिन्हा अपना मैच जीत पाया, कोको गोव की जीत, ओगा अलियासी में स्ट्रोफ की जीत। आज के मैचों में पाउलिनी येला, जिमित्रो फेरी, लेहेका वेरेव, डेमिनो कोबोली, कीज नोस्कोवा, फ्रिट्स बुब्लिच। फॉर्मूला वन मोटो रेसिंग चैंपियनशिप में ब्रिटिश ग्रैंड प्री में शार्ल लेक्लेर्क जीत, मर्सिडीज पर जॉर्ज रसेल उसके पीछे आया, बोजम पूरा किया लेविस हैमिल्टन ने। फिर क्रिकेट में वीमेन T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम बनी ऑस्ट्रेलिया, फाइनल में इंग्लैंड को हराया। So that's it, the latest from the sports world. फिर मिलेंगे 8:30 with the World Cup magazine. पर चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, इंग्लैंड ने वो कर दिखाया जो इस वर्ल्ड कप में अभी तक किसी ने नहीं किया था, मेक्सिको पर गोल स्कोर करना। एक नहीं, दो नहीं, तीन गोल इंग्लैंड ने स्कोर किया, इसीलिए उनको थ्री लायंस कहते हैं। तो इंग्लैंड के अब सफर जारी है, मुकाबला होगा अर्लिंग आलोन के नोवे से, जिसने ब्राजील को रफा दफा किया। क्वार्टर फाइनल गर्म होगा, बताएंगे आपको जरूर द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप, जरूर सुनिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
0: थैंक यू अरविंद, थैंक यू सो मच।
1: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
2: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2, Radio.

0: से है।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: Radio Musti.
1: North, South,
3: 103.5.
1: East, West,
3: 96.4.
1: Center,
3: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
5: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
6: 8 baje hai. नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 के पहला तिमाही में विदेशी कामगार लोग देने से वो लोग के देश में भेजल जाए होला पैसा में गिरावट आयल बाटे। एक बार इसमें ये रकम 2.889 बिलियन से कमती होकर 2.786 बिलियन रुपया होल बा। ये आंकड़ा जून महीना के आखिर में जारी करल गल है, जब विदेशी कामगार लोग के काम की स्थिति के लेके देश में सार्वजनिक बहस छिड़ल बा। मार्च महीना के आखिर में सरकार मॉरिशस में 64,165 गो विदेशी कामगार लोग के रिकॉर्ड दर्ज कर ले रहा। हालांकि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि फैजल अली बीगन के अनुसार जे उ सब लोग के भी सूची में शामिल करल जाए जे अपन काम छोड़ के भी हिया दस्तावेज के बिना रहत हो जा, त इस संख्या 70,000 के करीब पहुंचे सकी। सरकारी अस्पताल में मरीज लोग के ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ल चुनौती अक्सर सामने आवता। हेल्थ सर्विसेज के अंतरिम निदेशक डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इस सब समस्या के समाधान खातिर जरूरी कदम उठावल जाता। वो बतैलन कि डायलिसिस के मरीज लोग के पहले भी घर से अस्पताल ले निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ही ट्रांसपोर्ट के सुविधा मिलत रहल, बकिर अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा मजबूत करके 24 घंटा ई सेवा उपलब्ध करावे के। अधिकारी लोग ई भी मानेलन जा कि अस्पताल में मेडिकल दस्तावेज गवा जाला और ओकर गलत फाइलिंग एगो बहुत बड़ा चुनौती है। डॉक्टर रिसोल के अनुसार एकर पाछे डिजिटल प्रणाली और रिकॉर्ड्स विभाग में कर्मचारी लोग की कमी के कारण है। और समाधान के तौर पर ही मंत्रालय ई हेल्थ देने कदम बढ़ावता। शुरुआत फ्लैग के अस्पताल के संगे हो। ई सिस्टम के जरिए देश के सब सार्वजनिक अस्पताल में

रेकॉर्ड्स के एक एक नेटवर्क उपलब्ध रही। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्या हुलाले का लोग खातिर उपयुक्त सुविधा कमती होवे के देख के एगो विशेष सुविधा केंद्र बनावल जाए। ई एगो नवा संस्था मुख्य रूप से उस सुझाव में शामिल रहल जे ऐसा लेका लोग के देखभाल से जुड़ल।

0: खातिर स्थापित करल गल कमिटी दिले रहल। कल्याण मंत्रालय ई संबंध में एगो नवा विधेयक प्रस्तुत करी। मंत्रिमंडल ई संपूर्ण स्वायत्त केंद्र की तत्काल स्थापना खातिर मंजूरी दिले बाटे। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनिता गुरा भी ई फैसला के अत्यंत महत्वपूर्ण बताइले हवन और एकर स्वागत करले हवन। घरेलू हिंसा से पीड़ित लोग की बेहतर सुरक्षा करे के और एक संगे ही हिंसा करे होला लोग के खिलाफ उचित कार्यवाही करे के ई डोमेस्टिक अब्यूज बिल के प्रमुख मकसद है। जेकर परी गल मंगर के राज्यसभा में बहस चलल। ई विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष के आर मजबूत करी। एक खातिर ई हिंसा के परिभाषा के दायरा बढ़ावल जाता और एक में आर्थिक भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक शोषण जैसन रूप के भी शामिल करल जाता है। संगे ही ई विधेयक में एक्सक्लूजन ऑर्डर और इंटरवेंशन ऑर्डर जैसन प्रावधान करल जाता है जिकर से पीड़ित लोग और लोग के लयका लोग के बेहतर सुरक्षा मिली और हिंसा करे होला लोग के अपन हरकत खातिर जवाबदेह होय की पड़ी। दूसरा देश की खबर में ईरान के वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर अयतुल्लाह अली खामिनी के शव के आज तेहरान के रास्ता भर में चलावल जाए जेकर से जनता उनकर अंतिम दर्शन कर सकी। उनकर मैयत में दुनिया के कई देश के राष्ट्र सरकारी नेता लोग तथा वरिष्ठ अधिकारी लोग शामिल होवत हो जाए। कल ईरान में आम छुट्टी की घोषणा करल गल रहल बकीर ई सब के बीच उनकर बेटा और उच्चाधिकारी उत्तराधिकारी मुश्तबा अली खामिनी के गैर मौजूदगी सबके ध्यान आकर्षित कर ले बाटे। ते रहल भोजपुरी की समाचार तो ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Potential suppliers, contractors and consultants, now you can register online with the Mauritius Broadcasting Corporation to be able to supply goods, works, services and consultancy services. TV contents such as films, TV serials, local productions, amongst others. TV broadcasting equipment and accessories including spare parts. All details and conditions are available on MBC's website mbc.mu and on MBC's Facebook page. To register online, all relevant documents and requested information should be uploaded through MBC's website or the Procurement Policy Officer's website. Deadline for registration is the 31st of July 2026.
2: Morning Beat.
3: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: वही तो चोर इनका डिग्ची कराए लेके चला गया, लेकिन आप उनको पिला दो एक कप गर्मा गर्म चाय, घड़ी मिलाते चलिए। सुबह के 8:09 हुए हैं।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: I'm sure इस गाने को सुनने के बाद आप बहुत हंस रहे होंगे, आपको बड़ा मजा आया होगा, हमें भी आता है, इसलिए हम ऐसे गाने लेकर आते हैं आपके लिए मूड बनाने के लिए। और कहते हैं ना कि मंडे में मन लगाना जरूरी होता है, तो आपका मन लग गया होगा, नहीं भी लगा होगा तो लगा लीजिए, क्योंकि हम साथ हैं और साथ रहेंगे अभी 9 बजे तक। आज मौसम कैसा रहेगा जानना नहीं है आपको, मुझे तो जानना है। चलिए अदिति से मिलते हैं।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ओनली टू विनर्स।
4: आम हालत, दक्षिण पश्चिम से आ रहे एक फ्रंटल सिस्टम से जुड़े बादलों का असर आज दिन से हमारे इलाके पर पड़ने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा, दोपहर बाद दक्षिण और ऊंचाइयों पर रह रहकर बारिश हो सकती है, रात के दौरान भी ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा दक्षिण की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सरल प्लाटो पर न्यूनतम 14 से 17, अधिकतम 19 से 22 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अतिरिक्त जानकारी, मस्कारेंस के दक्षिण पश्चिम में पाए जा रहे एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर तेज और ठंडी हवा चलेंगी। कल से तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकेगी। सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम को 5:43 पर।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti.
5: Fin de mois, et si on faisait les choses autrement? Du 26 juin au 9 juillet, chez Winners, retrouvez les grandes marques que vous aimez à des prix qui font vraiment du bien. Les 2 kilos de riz basmati Rajmahal XXXL 11-21 à 129,95 € et les 5 litres de liquide vaisselle Winners à 139,95 €. Pas oublier, excan to pay te gagne plus points WIV.
6: On est tous Winners!
1: Morning Beat!
2: RM2 Radio Musti in the mix.

0: prêt au défi de long shift? Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: कभी कभी हाथ खोलकर कांटों को जाने देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं ना, तब तक ज़िंदगी नए फूलों को हाथ में आने का मौका ही नहीं देता। भाई, छोड़ देना कभी कभी हार मानना नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ी जीत होती है। समझाते हैं दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग, यादें या सिचुएशंस पकड़ के बैठे रहते हैं जो सिर्फ दर्द देती हैं, लेकिन कभी कभी उन कांटों को छोड़ देना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना आप पकड़ के रखोगे उतना ही वो कांटे आपको जख्म देंगे और आपका खून बहेगा। क्योंकि जब हाथ खाली होते हैं तभी जिंदगी उनमें नए रिश्ते, नए मौके और नई खुशियां रख पाती है। तो आज का दिन इसी बात के नाम, जो चीज सिर्फ तकलीफ दे रही है उसे प्यार से अलविदा कहने ही हिम्मत कहिए। जी हाँ, ऐसे में अगर हो सकता है कि उसके बाद कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नए खूबसूरत फूल आ जाए, तो जो हो गया उसको जाने दीजिए, जो है अभी जिंदगी को मुस्कुराने का मौका दीजिए।
0: Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: RM2, Radio Musty.

0: Hey guys, you're listening to Morning Beat Vidita ke saath aapke apne Radio Masti par ho rahi hai namasti.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Masti.
0: शांति मंडे में मन लगाना इतना आसान नहीं होता, वो भी विंटर के इस मौसम में जहाँ पर सुबह उठने का भी मन नहीं करता, पता है. लेकिन विंटर वो मौसम है जहाँ पर लोग दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं. वैसे ही जैसे लोग ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर पीते हैं ना, उन लोगों को पता नहीं क्यों अचानक से चाय से प्यार हो जाता है और उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते. कहते चाय के बारे में कुछ मत बोलना. हाँ, चाय भले अदरक वाली हो, चाय भले इलायची वाली हो, बस चाय ही चाहिए. आप मानेंगे ना भाई. मॉर्निंग मॉर्निंग में घर से निकलते ही मन कहता है कि वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, फिर सैलरी की याद आ जाती है. हाँ, जानती हूँ जानती हूँ. वैसे तो आज सुबह मेरी आवाज़ भी घर से निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, आप लोगों की याद आ गई इसलिए हम भी पहुँच गए.

0: झुमका।
1: ये बहन क्यों झूठ बोलती है, बड़े बड़े झुमके लटका के घूमती रहती है और कहती है व्हाट झुमका।
2: मॉर्निंग बीट
3: RM2 Radio Musti in the mix.
1: इस गाने को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हमें भी उड़ने का मन कर रहा है। उड़ने की कोशिश मत करना, गाड़ी आराम से चलाना। कुछ ट्रैफिक दिखे तो बता देना 549 और 1294 पर।

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: थोड़ी देर में वर्ल्ड कप मैगजीन के साथ अरविंद हाजिर होने वाले हैं और तब तक मैं आपसे मांग करूंगी कि आप बस अपने टेंशन को दूर भगा दीजिए और हमारे गाने एंजॉय करते रहिए। और अभी तो विंटर है, विंटर में मुझे पता है लोग पानी पीना पसंद नहीं करते, लेकिन प्लीज़ कीप अ बॉटल ऑफ रूम टेम्परेचर वाटर नियर बाय और उसे ऑफन आपको सिप करना चाहिए एंड ज़्यादा चीखना चिल्लाना, स्पेशली अगर आपकी आवाज़ ख़राब है तो वो अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। आपको चाहिए कि आप अपने गले को आराम दें, अपनी आपको आराम दी, हो सके तो 10-15 मिनट के लिए आप बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स करें, क्योंकि ज़्यादा फोर्स करोगे तो तभी तबीयत बिगड़ जाती है। एंड मेक श्योर कि अपने आप को आप हाइड्रेटेड रखें। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर सलाह दे रहा है कि घर पर रहो आराम करो, तो डॉक्टर की बात ज़रूर मानो, वरना मम्मी को अगर सिखाना होगा तो वो तो कान पकड़ के सिखाएगी, क्योंकि मम्मी हमेशा कहती है मैंने पहले ही कहा था, तब पता चल जाना चाहिए कि आपको मम्मी की बात पहले सुन लेनी चाहिए थी।

0: Kramaric, Bukayo Saka, past Kane, but Bellingham coming in! Two big problems and they suffer. Bellingham, England coming again, it's Harry Kane and Bellingham again! 2 in 2 minutes for England, who are in Mexican dreamland! Alvarado puts it into a great area and Quiñones! It's their top scorer here at the World Cup, Julian Quiñones.
1: I just think he just comes through the back with maybe raised studs. That's what Harry Kane, the England players, weren't happy about.
0: Alvarado, again looking for Jimenez. Oh, Pickford with another worldy save. The England goalkeeper. That was spectacular.
1: It's magnificent positioning and reflexes. There's not as much pace on that Alvarado cross as the first one that Jimenez had.
0: Due to the spot, the 10 men of England have a penalty.
1: Ball first, all it needs is a touch past the goalkeeper, and Rangel has committed himself. It absolutely is a penalty, but it's just brilliant work from Anthony Gordon, taking a chance
0: against Raul Rangel. It's England's King Kane who strikes again for the Three Lions. They've been given at both ends now. Jimenez to bring it back to one. Raul Jimenez!
2: Shoulder up. Skipped away from his man. Shoulder up and he's lifted it up. Behind! He plunders again! And not for having the time of their life. Shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it for Norway!
3: England और नॉर्वे की जय हो. दो लाजवाब मैच, खासतौर पर इंग्लैंड वाला, इस पर चर्चा करेंगे. लेकिन अर्लिंग अलॉन ने ब्राजील को घर भेजा. लासिलिसाओ वर्ल्ड कप 2026 से आउट. 2-1 से नॉर्वे की जीत. इट वाज नॉट फ्रॉम नॉर्वे. ये है नॉर्वे अर्लिंग अलॉन का डबल. ब्राजील का एक कंसोलेशन गोल नेमार ने स्कोर किया. इस मैच में गोलकीपर नीलॉन का भी लाजवाब परफॉर्मेंस रहा. ब्राजील ने एक पेनाल्टी भी मिस की. 5 बार वर्ल्ड कप विजेता ब्राजील को अब वापस स्कूल भेजना होगा सीखने के लिए कि इन दिनों मॉडर्न फुटबॉल कैसे खेला जाता है. नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा. ये मैच तो अपने आप में लाजवाब रहा. फर्स्ट हाफ में 6 मिनट के अंतराल में 3 गोल. सबसे पहले बेलिंगम का डबल, फिर मेक्सिको के लिए क्विनोनेस का 1 गोल. खराब मौसम के कारण मैच सुबह 5 बजे शुरू हुआ, मतलब 1 घंटा बाद. फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड के गोलकीपर पिकफोर्ड ने कई बार मेक्सिको को रोका. सेकंड हाफ की शुरुआत में ही इंग्लैंड के डिफेंडर क्वांशा को रेड कार्ड दिखाया गया. 10 खिलाड़ियों के बावजूद इंग्लैंड के लिए हैरी केन का गोल पेनाल्टी पर 3-1. फिर इसी हैरी केन के फाउल पर मेक्सिको के लिए पेनाल्टी स्कोर करता है राउल यिमेनेज. यहां से इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी डिफेंड करने लगे. अस्तेका स्टेडियम का माहौल गर्म होता गया. 10 खिलाड़ियों के साथ सेना भरा मेक्सिको के अनगिनत प्रयास, यहां तक कि कप्तान हैरी केन को निकाला गया. एट द टाइम 11 मिनट एज इफ इट वाज 11 आवर्स. बहादुर जाबाज लायंस मेक्सिको को प्रहारों को नाकाम करते रहे. पिकफोर्ड का सेंसेशनल मैच. इंग्लैंड की जीत 3-2 से. आल्टीट्यूड का डर था, पर इंग्लैंड का एटीट्यूड काम कर गया. आज के मैच रात के 11 बजे पोर्टुगल वर्सेस स्पेन, फिर कल सुबह 4 बजे यूएसए वर्सेस बेल्जियम, कल ही रात 8 बजे अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, और कल मिडनाइट किक ऑफ रात्रि के 12 बजे स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया. बुधवार को आराम का दिन, फिर गुरुवार को क्वार्टर फाइनल के मैच खेले जाएंगे. यूएसए का फोलागिन बालोगन आज खेल पाएगा. उसके रेड कार्ड को ओवरटर्न कर दिया गया है. बोस्निया के खिलाफ उसे रेड कार्ड दिया गया था. ऐसे में वो आज का मैच नहीं खेलता, पर फीफा ने रेड कार्ड को सस्पेंशन

0: से वापस ले लिया। फैसले के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा को थैंक यू कहा, शुक्रिया कहा। इस फैसले से बहुत लोग नाराज हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और फीफा के प्रेसिडेंट इन्फांटिनो के बीच गहरी दोस्ती जो है। बेल्जियम इस फैसले से नाराज है क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बालोगन यूएसए का टॉप स्कोरर है, उसका मैदान में होना वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेजर बोस, जबकि बेल्जियम के लिए खतरा। रेफरी विसल बजाते हैं मैच में, यूएसए में ट्रंप बजते हैं फैसले बदलने के लिए। वर्ल्ड कप स्पेशल, स्पेन और पोर्टुगल के बीच आइबेरिया डर्बी, डर्बी इबेरिको, ये दोनों देश इबेरियन पेनिनसुला में है, साउथ वेस्टर्न यूरोप, दो पड़ोसी आमने सामने। टेक्सास के डाला स्टेडियम में यूरोप के दो महारथी आमने सामने। यहां तक आने के लिए स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से पछाड़ा था, जबकि कठिनाई के साथ पोर्टुगल की जीत हुई थी क्रोएशिया के खिलाफ। स्पेन ने अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है, वो मात्र टीम है। दो जेनरेशन के दो सुपरस्टार आमने सामने, पोर्टुगल में रोनाल्डो तो स्पेन में लामिन यामाल। स्पेन के लिए माइकल ओयाजाबाल 4 गोल स्कोर कर चुका है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के खाते में 3 गोल है। जून 2025 में पोर्टुगल ने स्पेन को हराकर यूईएफए नेशंस लीग जीता था। ओप्टा सुपर कंप्यूटर के अनुसार विनिंग चांस स्पेन 49.2, पोर्टुगल 25.6। बहुत फुटबॉल पंडितों का मानना है कि ये एक टाइट लो स्कोरिंग मैच होगा जो एक्स्ट्रा टाइम में भी जा सकता है। कल सुबह 4 बजे यूएसए वर्सेस बेल्जियम, को होस्ट यूएसए के लिए मैसिव मोमेंटम, 3 मैच विनिंग स्ट्रीक, लेटेस्ट 2-0 से बोस्निया की जीत, 10 खिलाड़ियों के खिलाफ, बोस्निया पर जीत 10 खिलाड़ियों के साथ। बेल्जियम ने एक्स्ट्रा टाइम में जाकर 3-2 से सेनेगल को हराया। वर्ल्ड कप की शुरुआत धीमी थी पर रफ्तार पकड़ चुका है बेल्जियम का गोल्डन जेनरेशन। कप्तान क्रिस्टियन पुलिसिच फुल फिट है यूएसए के लिए। बेल्जियम में वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, वेटरन खिलाड़ी, एक्सपीरियंस बहुत है, चिबो कुतुआ, लुकाकू, दे ब्रुइन, ट्रोसा आदि। यूएसए अपने घर में है, होम सोइल, कंप्लीटली शिफ्ट द डायनामिक्स। इसलिए ओप्टा सुपर कंप्यूटर के अनुसार यूएसए 32.37.2%, बेल्जियम 36.5%। करीबी मामला होगा यूएसए वर्सेस बेल्जियम कल सुबह 4 बजे। सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप।
1: FIFA World Cup 2026, 11 June से 19 July. Catch all the news, views, previews and latest updates.

0: It was the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Morning Beat. James.
2: RM2, Radio Musty in the mix.
3: ओ जी, इंग्लैंड की जीत हुई तो अंग्रेजी भेड़ हो जाए थोड़ा आपके लिए। You're listening to Morning Beat विदिता के साथ on Radio Musty।

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: चलो भाई, अब तो मेरे जाने का टाइम हो गया और विकास के आने का टाइम हो गया है।
3: गुड मॉर्निंग।
2: मेरे स्प्लिट पर्सनालिटी को गुड मॉर्निंग नहीं
3: बोले। नहीं, तुम्हारी स्प्लिट थ्रोट है।
2: मैं देखने में एक हूँ और बात करने में दो लग रही हूँ आज।
3: हाँ, अच्छी बात है। हाँ। देखो, ऐसा ही है, जो स्प्लिट पर्सनालिटी है ना, हाँ, उसके बीच में थोड़ा टाइम स्प्लिट कर लो।
2: अच्छा, ठीक है।
3: सुबह की तो होगी कहानी, अब जाकर कुछ खाना पीना और एक चाय तूफानी,
2: मस्त मूड बनाना, ये तो।
3: चलो ऐसा करो कि तुम जाओ, जाकर कुछ सोचो कि मैं क्या खाऊंगा। मैं
2: क्यों सोचूं कि तुम क्या खाओगे?
3: क्योंकि तुम जा रहे हो ना कैंटीन।
2: अच्छा,
3: जहाँ पर विशाल से बात होगी और इतने सारे हमारे जो इंग्लैंड वाले सपोर्टर्स हैं, उन सबकी बात होने वाली है। ओह माय गॉड, आज लगता है कि ऑफिस के अंदर यही होगा कि क्या कमाल कर दिया सुबह सुबह। और कितने लोग हैं जो अभी भी सो रहे हैं? हाँ, क्या काम पे नहीं? इतना प्यार?
2: No,
3: वर्ल्ड कप
2: no,
3: के साथ चाय का कप?
2: No.

0: सुद्धि संक्षिप्त समाचार आपसे आदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई है। सालाना तौर पर यह रकम 2.889 बिलियन से घटकर 2.786 बिलियन रुपए हुई है। ये आंकड़े जून महीने के आखिर में जारी किए गए हैं, जब विदेशी कामगारों के काम करने की स्थिति को लेकर देश में सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई है। मार्च महीने के आखिर में सरकार ने मॉरिशस में 64,165 विदेशी कामगारों का रिकॉर्ड दर्ज किया था। हालांकि श्रमिक संघ के प्रतिनिधि फैजल अली बिगन के अनुमान का अनुमान है कि अगर उन लोगों को भी इस सूची में शामिल किया जाए जो अपना काम छोड़ने के बाद बिना दस्तावेज के यहाँ रह रहे हैं, तो ये संख्या 70,000 के करीब पहुँच सकती है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंतरिम निदेशक डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इन समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डायलिसिस के मरीजों को पहले से ही घर से अस्पताल तक निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती रही है। अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा मजबूत करना ताकि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। अधिकारियों का ये भी मानना है कि अस्पतालों में मेडिकल दस्तावेजों का खो जाना या उनके गलत फाइलिंग एक बड़ी समस्या है। डॉक्टर रिसोल के अनुसार इसके पीछे डिजिटल प्रणाली और रिकॉर्ड्स विभाग में कर्मचारियों की कमी का कारण है। समाधान के तौर पर मंत्रालय ई हेल्थ की तरफ कदम बढ़ा रहा है। शुरुआत फ्लैग के अस्पताल के साथ की जाएगी। दुनिया मौसम संबंधी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार

जुलाई और सितंबर महीनों के बीच एल नीनो के तेज होने का शंका है, जिससे दुनिया के कई इलाकों में भीषण गर्मी की लहर, सूखे तो कहीं पर भारी बारिश का खतरा बढ़ जाएगा। मॉरिशस भी इसे अछूता नहीं है। वक्वा के ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। आमतौर पर एल नीनो का असर 8 से 12 महीनों तक रहता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान के वरिष्ठ आध्यात्मिक लीडर आयतुल्लाह अली खामिनी के शव को आज

0: जिसे जनता उनके अंतिम दर्शन कर सके। उनकी मैयत में दुनिया के कई देशों के राष्ट्र और सरकारी नेता तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। कल ईरान में आम छुट्टी की घोषणा की गई थी, लेकिन सबके बीच उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुश्तबा अली खामिनी की गैर मौजूदगी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया, दीजिए नमस्कार।
1: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
2: Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: नमस्कार नमस्ते मंडे का दिन 6 जुलाई हे गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है। और मंडे की मॉर्निंग बात करूं तो आज काफी कमाल की मॉर्निंग इसलिए भी रही क्योंकि अरे सुबह सुबह मैच खत्म हुआ ना। हाँ तो हर किसी की बात उसी पे चल रही है। अब चाहे क्रिकेट की बात करें हम या फिर हम बात करें किसी भी स्पोर्ट की, सब कुछ लेकर यहाँ पर जरूर शामिल होते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक या फिर आपकी स्पोर्ट्स की दुनिया, सब कुछ मिलता है यहीं पर। द लेटेस्ट कमिंग फ्रॉम बी टाउन एज वेल। चलिए हमारा प्रोग्राम मस्ट मॉर्निंग शो बिल्कुल शुरू। और मंडे की मॉर्निंग बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे ये मंडे क्यों हो गया शुरू, भाई करें तो क्या करें, हफ्ता मंडे से ही शुरू होता है। ये वो आता लगे कि आज कल आप जो लेट नाइट मैचेस देख रहे हैं उसके चलते हाँ वही वो रेफरी सीटी नहीं मारता, वो आपका अलार्म की घंटी है। लेकिन लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम कर दो ना। चलिए ठीक है। वैसे आप बताइए कि आपकी शुरुआत कैसी रही। वैसे अच्छी न्यूज़ आपको मिल गई अगर आप इंग्लैंड के फ़ैन हैं या फिर नॉर्वे के, तो आज देखते हैं क्या होता है। बड़ी टीम्स, बड़ी खबरें, ऑल दिस कमिंग राइट अवे बी टाउन से लेकर आपकी राशियां थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड, अभी चलेंगे हम टिल मी से बना हुआ म्यूजिक तक। राइट चलेगा सिलसिला टिल 12 PM।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: चमक तो ये थोड़ी सी जिंदगी में ढिंचक जरूर लेकर आया। अगर म्यूजिक नहीं होता ना माय गॉड, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में। नहीं, इसे म्यूजिक के साथ साथ चलिए लाते हैं आपके लिए लेडी लक।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
0: Yes, ladies and gentlemen, 6th of July, Monday का दिन, time check 21 past 9 in the morning, और शुरुआत करते हैं वे।
2: Aries, मेष राशि।
0: Aries, आज full on energy mode में हो, बस excitement में जल्दी decision मत लेना। Office हो या प्यार हो, थोड़ा chill करके move करोगे तो game तुम्हारा होगा। Lucky color red, smile करो, universe तुम्हारे side पर है।
2: Taurus, वृषभ राशि।
0: भाई आज कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना जरूरी है, खुद को चैलेंज करना थोड़ा जरूरी है। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी बड़ा सरप्राइज बन सकती है, वॉलेट पर नजर रखो और दिल खोल कर जिंदगी जियो। लकी कलर ग्रीन, आज का मंत्रा ट्रस्ट प्रोसेस।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: जेमिनी, आज बातों से ही बाजी मारोगे, यानी आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही कमाल के हैं। नेटवर्किंग हो तो फिर आपकी जो वाइब है वो सबको नजर आएगी, बस गॉसिप से सेफ डिस्टेंस रखो। लकी कलर येलो, शाइन ऑन चैटरबॉक्स।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: इमोशंस थोड़े से हाई हो सकते हैं, भावनाओं में बहकर कुछ कहकर कहीं मुसीबत में ना फंस जाएं, इसलिए इंट्यूशन अपना स्ट्रॉन्ग रखें और काम करते जाएं। फैमिली या दोस्त के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे तो मूड फ्रेश रहेगा। लकी कलर व्हाइट। दिल की सुनो, ओवरथिंक मत करो।
2: लियो सिंह राशि।
0: लियो, समय रहते अपना काम कर दियो, वैसे स्पॉटलाइट आज भी तुम्हारी ही है। कॉन्फिडेंस हाई रहने वाला है और लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, बस थोड़ा हम्बल टच ऐड करना जरूरी होगा तो अप्लॉज डबल हो जाएगा। जोरदार तालियां। भाई लकी कलर गोल्ड, रोर विद द स्टाइल।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: परफेक्शन के पीछे मत भागो,

0: वो 3 डेट्स में कहा है ना, हाँ काम करते रहो, परफेक्शन खुद आपके पीछे भागेगा, प्रोग्रेस पे फोकस करो। आज के एक पेंडिंग काम को फाइनली टिक कर सकते हैं धीरे धीरे, एक एक प्रायोरिटी बेस। नेवी ब्लू आपका लकी कलर, रिलैक्स भी करो और प्रोडक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ो।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: भाई बैलेंस ही आपकी सुपर पावर है। रिलेशनशिप में स्वीट मोमेंट्स मिल सकते हैं और कोई गुड न्यूज भी नॉक कर सकती है, नॉक नॉक। अरे कब तक वेट करोगे, 10 o'clock? हाँ लकी कलर पिंक, स्माइल से ही मैजिक क्रिएट होने वाली है।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: मिस्ट्री तुम्हारे लिए आइडेंटिटी है। आज किसी सीक्रेट प्लान पे काम करने पर आप काम कर सकते हैं और बस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। लकी कलर मरून, स्टे कूल स्टे पावरफुल।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: लग रहा है कि जैसे एडवेंचरस आपकी राइड होने वाली है। अरे एडवेंचर बुला रहा है, न्यू आइडियाज और न्यू पीपल आज एक्साइटमेंट लेकर आ सकते हैं, बस प्रॉमिसेस सो समझ के करना। लकी कलर पर्पल, एक्सप्लोर करो और एंजॉय करो।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: कैप्रिकॉर्न आज हार्ड वर्क का रिजल्ट नजदीक है, बॉस हो या बिजनेस, आज तुम्हारी इरिगेशन नोटिस होगी। जो आपकी मेहनत है, परिश्रम जो आपका है, वो सबको नजर आने वाला है, लेकिन थोड़ा सेल्फ केयर ये भी स्केड्यूल में ऐड करो ना। लकी कलर ब्राउन, कीप क्लाइंबिंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: एक्वेरियस आज तुम्हारे यूनिक आइडियाज सबको इम्प्रेस कर सकते हैं, क्रिएटिव मूड ऑन होगा तो कुछ नया जरूर होगा, कुछ नया करने की कोशिश करते रहो। लकी कलर इलेक्ट्रिक ब्लू, थिंक डिफरेंट विन बिगर।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: Yes, last but not the least, Pisces, आज ड्रीम मोड के अंदर है, भाई ये आज आपके लिए लकी भी साबित हो सकता है, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन दोनों टॉप गियर में रहने वाले हैं। म्यूजिक सुनो, रिलैक्स करो और पॉजिटिव वाइब्स को स्प्रेड करो। लकी कलर सी ग्रीन, गो विद द फ्लो।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: ऐसा फुटबॉल के चक्कर में बच्चे भी रेफरी बन गए कि मम्मी पापा थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर लो ये भी हो रहा है या फिर आपको लगता है कि बच्चों को तो सही टाइम पे सुला दिया, अब अपना टीवी सेट ऑन और वहीं पर फुल वॉल्यूम पर गेम ऑन। सर आज भी बहुत स्पेशल मैच होने ही वाला है, वैसे बहुत सारी प्लानिंग के बीच में आई थिंक अच्छा है कि अगर आप वक्त निकाल सकते हैं अपने लिए। हाँ लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग करें, लोग पहले सो जाते हैं और उसके बाद मैच टाइम पर उठकर थोड़ा देख ले, क्योंकि 4 साल बाद आता है ना वर्ल्ड कप तो लगता है कि देख लो कोई बात नहीं। लेकिन अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान रखना ये भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप उठ ही नहीं पाए सुबह या फिर ऐसी हालत में गए कि बाकी काम करने के लायक ही नहीं है। ये वर्ल्ड कप चलेगा ठीक है, लेकिन सुबह सुबह आप बिल्कुल परफेक्ट मूड में होने चाहिए, उसके बाद सब कुछ ठीक होगा। टू ऑल द वंस, अभी छोटा सा ब्रेक लेकर हमारे गानों को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। बताइए कि आपकी साइड पर मौसम के हालचाल हैं या फिर आज नींद वींद की क्या हालचाल है। गुड मॉर्निंग कहते हैं रेडियो मस्ती टीम, बिल्कुल फिट सारे भानु और अब्दुल के लिए लगाना या लेश हमारे साथ दे रहे हैं और वहीं पर कहते हैं ज्योति शादो बनारस से लगाना टू आशनी रेखा सुरेखा एंड मदर फैमिली के ऑल्सो टू द टीम। तो थोड़ी देर में हम लाएंगे आपके लिए लाइफ स्टाइल मंत्रा और अभी के लिए हम चाहेंगे कि आप भी अपने आप को फिट एंड फाइन बना लें। छोटा सा ब्रेक, आंखें खोल कर थोड़ा स्ट्रेच करके और फिर बोलें रेडी फॉर द डे। अरे सुनते रहें।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: ऑलराइट ही, आज का जो है लाइफस्टाइल मंत्र वो है, बॉडी को कराओ मूव, मूड खुद करेगा ग्रूव। तो ये एक्सरसाइज का नाम सुनते ही अगर जिम में जाने की मेंबरशिप या हैवी वर्कआउट याद आता है तो टेंशन मत लीजिए। फिटनेस का मतलब सिर्फ डंबल्स उठाना, वेट उठाना नहीं होता। अपने फेवरेट गाने के ऊपर थोड़ा सा डांस करना 15 मिनट ही सही काफी होता है। लिफ्ट की जगह स्टेज यूज करना, ये भी कमाल की एक्सरसाइज। मार्केट तक वॉकिंग कर लीजिए, घर की सफाई भी एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। आसपास जाने के लिए आप साइकिल यूज करते हैं, कमाल की बात है। जब बॉडी मूव करती है तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और एनर्जी बढ़ती है, मूड नेचुरली बेटर फील होने लगता है। और सबसे अच्छी बात, मूवमेंट से सिर्फ बॉडी फिट नहीं होती, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो याद रखिए, आज का एक छोटा सा कदम यानी कि एक छोटी सी वॉक आपके लिए बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम को दूर रख सकती है। तो एक्सक्यूज कम, मूवमेंट ज्यादा।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

गाना कैसे शुरू होता है? ना ना ना ना ना, अरे कभी तो खुशी के लिए कर दो। हाँ हाँ हाँ, जेंटलमैन, आरम टू पर अभी चल रहा है मस्त मॉर्निंग शो और ये सिलसिला चलेगा टिल 12 PM। हाल चाल कैसे? काफी जगह पार्टी हो रही है लेकिन ब्राजील के आने से काफी लोग दुखी भी हैं। अरे दुखी सुखी, ये आज एनर्जी की बत्ती क्यों है बुझी? एंजॉय लाइफ।

0: मिलते हैं अदिति से जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। हेल्थ सर्विसेज के अंतरिम निदेशक डॉक्टर हरीश रिसोल के अनुसार इन समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि डायलिसिस के मरीजों को पहले से ही घर से अस्पताल तक निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा मजबूत करना ताकि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। दुनिया मौसम संबंधी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार जुलाई से सितंबर महीनों के बीच एलनीनो के तेज होने की आशंका है, जिससे दुनिया के कई इलाकों में गर्मी की भीषण लहर, सूखे तो कहीं भारी बारिश का खतरा बढ़ जाएगा। मॉरिशस भी से अछूता नहीं है। वाकवा के ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों को आजकल एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा है, जिसमें यूजर नेम रिजर्व करने के लिए कहा जा रहा है। 29 जून को इस मैसेजिंग ऐप ने दुनिया भर में अपने 30 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स के लिए ये नया फीचर लागू करने की घोषणा की। जल्द ही बिना अपना फ़ोन नंबर शेयर किए संपर्क करना मुमकिन होगा, जबकि अभी ऐसा करना ज़रूरी है। अमेरिका की इस कंपनी के अनुसार इस कदम के पीछे मकसद है उन लोगों की प्राइवेसी बेहतर करना जिन्हें किसी ग्रुप चैट में शामिल होने का आमंत्रण मिला है या जो कोई नया कॉन्टैक्ट बना रहे हैं। हालांकि

कि इस बड़े अपडेट को अपनी सबसे बड़ी मार्केट में एक बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ा है। भारतीय सरकार ने व्हाट्सएप से इस फीचर को रोकने के लिए कहा है क्योंकि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग के मामले बढ़ने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी ने नॉर्दर्न

आइलैंड्स पर प्रहार किया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें हैं। इस तूफान के साथ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं जुड़ी हैं। कुछ जगहों पर भारी नुकसान की खबरें हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: ऐसा लगता है जैसे एक मैजिक हो रहा है. द मैजिक इज हैपनिंग राइट हियर.
1: RM2 रेडियो मस्ती
0: Safely landing into the second hour, 10 बजकर 11 मिनट, 10, 11, उसके बाद सीधा 12. नहीं, 12 बजे तक प्रोग्राम चलने वाला है, लेकिन धीरे धीरे प्यार से.

0: 92
1: Radio Musti.
0: Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Welcome to RM2.
1: Musti Mornings, Radio Musti.
2: Hey, फैशन लवर्स, आज का पहला स्टाइल मंत्र एकदम सिंपल है. ट्रेंड हर सीजन बदलता है, लेकिन स्टाइल हमेशा आपकी पर्सनालिटी से बनता है. हर चीज जो सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स पे अच्छी लगती है, जरूरी नहीं कि वहां पर भी अच्छी लगे. नहीं, अच्छी बात है कि आप अपना स्टाइल क्रिएट करो, मैजिक वहीं से क्रिएट करो, शुरू करो. भाई शॉपिंग करते वक्त ये मत सोचिए कि ट्रेंड में क्या है, ये चल रहा है तो यही पहनेंगे. क्या मैं इसमें कंफर्टेबल फील करूंगा या करूंगी, क्या इसमें कॉन्फिडेंस के साथ आई कैन कैरी द लुक. क्योंकि दुनिया का सबसे पहले स्टाइलिश आउटफिट भी तभी अच्छा लगता है जब उसे पहनने वाला कॉन्फिडेंट हो. सो फैशन का असली रूल, ड्रेस टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस. जब आप अपने स्टाइल को ओन करते हैं तभी असली फैशन स्टेटमेंट बनती है. बस
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हल्कोरी फैशन, हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स. कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट.

0: अरे साहब बहाने हो या बहाना, अगर ठंड ज्यादा है तो मना मत करो कि तुम्हें नहाना।
1: RM2 Radio Masti. Feel the Masti.
0: कह रहे हैं ना टेम्परेचर थोड़ा कम होगा।

0: to Radio Musti.
1: शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रही है? अब इसकी जरूरत नहीं। हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: Allons chez Lolo. Chez Lolo, saveur marine, 4 tranchées, 1 kg, du Madagascar à 379 roupies. Omega, huile de soja, 1 litre, 67,95 roupies. Modio, fruit cocktail, du 425 grammes à 29,95 roupies.
3: Lolo y

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चलो कुछ मैसेजेस आपके और यहाँ पर कहते हैं गुड गुड मॉर्निंग बेस्ट मिक्स म्यूजिक एंड आरएम टू पर ये गानी चलती रहती है. वैसे कहते हैं बस एक प्यारा सा गाना हो जाए स्पेशली मेरी मम्मी के लिए और वो काम करती हैं खुद दोस्त में एंड बस यही चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ आती जाए. अरे थैंक यू सो मच आप उनको करना चाहती हैं सरप्राइज प्रिशा राइट प्रिशा थैंक यू सो मच और जैसे मौका मिलेगा ज़रूर फ़ोन करेंगे. वहीं पर कहते हैं बस गुड मॉर्निंग एंड पूरी टीम को अ लवली डे अहेड. मे लॉर्ड शिवा ब्लेस यू विद गुड हेल्थ एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी टुडे एंड ऑलवेज. बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी आपका भी स्वागत कार्यक्रम के अंदर और आपकी एंड गुड विशेस के लिए आपकी

0: भावनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेहबर कहती है जाना और सिल्विया के लिए यूवी कृषि एनसी उसन फैमिली है फ्लैग से हमारे साथ दे रहे हैं थैंक यू। और एक गाना सुनना चाहते हैं चलिए उसको मैं नोट कर लेता हूँ वहीं पर कहते हैं हैप्पी बर्थडे एंड दिस वन टू शिवम एंड ये है मुसलमान से दौड़े में और कहते हैं मम्मी मीनाक्षी हैं पापा हैं करुण साथ में सिस्टर भी साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि मज़ा आता जब सुबह गाने के साथ शुरुआत होती है और फिर लगता है कि बाकी दिन तो ठीक होने वाला है। अच्छी बात है कि आप म्यूज़िक थेरेपी में विश्वास करते हैं ये हुई ना बात। कहते विधि के लिए निहारिका के लिए एंड ऑल्सो रामित फैमिली के लिए मोसल मोस सेंट ऑन्द्रे से थैंक यू सो मच। चलिए गाने की तरफ चलते हैं उसके वापस लौट कर आते हैं कुछ और किचन टिप्स एंड हाउस होल्ड ट्रिक्स।
1: वेलकम टू RM2
2: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: FM2
1: रेडियो मस्ती
2: मेगा प्रोमो को क्वालिटी देखो टाइल्स 30x30 मेगा डील लो टाइल्स 60x60 सीपीएस सेल्स लो ग्रानिट क्वार्ट्ज प्री कासे लो लावो ला लुमिएर मॉडर्न प्री

0: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, il a toujours un pause, un souffle, un moment. Nescafé First. Après tout fait une différence. Il peint sa tasse, il y a un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé.
1: RM2
2: Radio Musti. गाना लेके जाएगा सीधा 11 बजे के समाचार के, उसके बाद फिर से मुलाकात होती है, एक घंटे का सफर और बाकी, बस साथ रहें, भी साथ देते रहें। और आपका साथ हो तो प्रोग्राम में हमेशा बात हो,

0: 6th of July, Monday ka din. Time check, exactly 11 a.m. राशि अंतरराष्ट्रीय न्यूज अपडेट के साथ स्टूडियो में आ गई हैं अदिति, उनसे मिलते हैं जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। कोंडेमास में कल एक हादसा पेश आया, 24 वर्षीय एक महिला ओमेश्वरी एंटनी की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की इंटॉक्सिकेशन के कारण हुई। उसके पति ने उसे बाथरूम में बेहोश पाया और अस्पताल पहुंचाए जाने पर फ्लाकी अस्पताल में उसे आईसीयू में दाखिल किया गया और उसे वेंटिलेशन पर रखा गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। जांच से पता चला है कि इस हादसे के पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड का के इंटॉक्सिकेशन का कारण है। घरेलू हिंसा के पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा करना और साथ ही हिंसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना, ये डोमेस्टिक अब्यूज बिल का प्रमुख मकसद है, जिस पर पिछले मंगलवार से राष्ट्रसभा में बहस चल रही है। ये विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेगा। इसके लिए इसमें हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसमें आर्थिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक शोषण जैसे रूपों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस विधेयक में एक्सक्लूजन ऑर्डर और इंटरवेंशन ऑर्डर जैसे नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे पीड़ितों और उनके बच्चों की बेहतर सुरक्षा हो और हिंसा करने वालों को अपनी हरकतों के लिए जवाबदेह होना पड़े। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी देखते हुए जल्द ही एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। ये नई संस्था उन मुख्य सुझावों में से एक है जो ऐसे बच्चों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशने के वास्ते स्थापित कमेटी ने दिए हैं। परिवार कल्याण मंत्रालय इस संबंध में एक नया विधेयक प्रस्तुत करेगा। मंत्रिमंडल ने इस पूर्णतः स्वायत्त विशेष देखभाल और शिक्षा केंद्र की तत्काल स्थापना के लिए मंजूरी दी है। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनीता गुरा ने इस फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार इस संस्थागत कमी को दूर करना आवश्यक है। बैंक ऑफ मॉरिशस के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में विदेशी कामगारों द्वारा उनके देशों में भेजे जाने वाले पैसे में गिरावट आई है। सालाना तौर पर यह रकम 2.889 बिलियन से घटकर 2.786 बिलियन रुपए हुई है। ये आंकड़े जून महीने के आखिर में जारी किए गए, जब विदेशी कामगारों के काम करने की स्थिति को लेकर देश में सार्वजनिक बहस छिड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जोरदार चक्रवाती तूफान बावी ने नॉर्थर्न मारियाना आइलैंड्स पर प्रहार किया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें हैं। इस तूफान के साथ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ जगहों पर भारी नुकसान की भी खबरें हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड लिस्पेरेंस ट्रेबुशे में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड श्री सुरेंद्र रंजाया, श्री सुरेंद्र रंजाया जो सुरेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सेलू रंजाया के मकान रॉयल रोड लिस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10:30 AM। नंबर 67 पुस स्ट्रीट थोंगबो में पुस

Street Thongbomi, 77 साल की 77 years old श्री हरिदेव लक्ष्मीन, श्री हरिदेव लक्ष्मीन जो गुरु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके बेटे श्री मनहर कुमार लक्ष्मीन के मकान नंबर 67 पूस स्ट्रीट थोंगबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शुमेला गो मोदाल बे।

0: थी आज दिन के 2 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी माँ श्रीमती रूपवंती गौरिया के मकान शुमेला गौ मौदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तो वो में बल्कि श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडिया 2 PM केजू रोड पिची विलाज गुडलैंड्स में, केजू रोड पिची विलाज गुडलैंड्स में 86 साल के 86 ईयर्स ओल्ड श्री लखनाथ गोपाल चिमंगतू, श्री लखनाथ गोपाल चिमंगतू जो विद्यानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके मकान केजू रोड पिची विलाज गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 1 PM रॉयल रोड ओकुले में, रॉयल रोड ओकुले में 81 साल की 81 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बाला रामदू, श्रीमती बाला रामदू पैदाशी नाम इराना जो दामी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके रॉयल रोड बुबासें की एलियन सन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टूडे 3 PM शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

Oh yes, a beautiful track. And ladies and gentlemen, जहाँ पर गानों की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं एक्टर्स की, so large in the life, जिंदगी हर कोई जीना चाहता है. लेकिन शुरुआत बैंड बाजा बारात अनुष्का दी उसके साथ, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी जबरदस्त एनर्जी, वो पा हाउस. लगता है कि हर जनरेशन का एक फेवरेट हीरो रणवीर सिंह. इतनी कमाल की शुरुआत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ही इज गॉन ऑन टू द वर्सटैलिटी. जहाँ पर एक रैप बॉय बने, गली बॉय के अंदर, वहीं पर दिल धड़कने दो. सबके दिल को धड़काते हुए आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द थर्ड आवर. ये है आप ही का मस्ट मॉर्निंग शो. चलिए, गानों के साथ दिल की बात की थी ना, याद आ सकता म्यूजिक आ लाइक. आप बताइए 5491294 पर. थोड़ी देर में कुछ हाउस होल्ड डेको टिप्स. ओहो, मंडे की मॉर्निंग कैसी शुरुआत. अरे हो गई ना म्यूजिक के साथ मुलाकात.

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए, हो हो हो,
1: यूं ही फिसल गए। आ, आ,
0: आ। अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: बिन भेजाओ संभाल के चुप क्या चाहे।

0: For his beautiful songs और लगता नहीं कि ये गाने यूं ही चलते रहें, मौसम चाहे बदलते रहें, हम संग संग ऐसे ही दुनिया में थोड़ा और चलते रहें. Ladies and gentlemen, मिलाते हैं आपको किसी से.
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.
0: देखिए साहब, हमारा मकसद होता है कि रेडियो के जरिए, अपने गानों के जरिए आप तक जरूर पहुंचे. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यू लिसनिंग टू द वेरी बेस्ट. और सिलसिला है म्यूजिक का, सिलसिला है एक बंधन का. और कहते ना किस्मत कनेक्शन, अरे आप वो लोग हैं जिनके लिए हम गाने चलाते हैं. और अगर आप ही आ जाए स्टूडियो में तो बड़ा मजा आता है. अभी सबसे पहले सुन लेते हैं. नमस्ते. हेलो.
3: नमस्ते. नमस्ते.
0: इतना सिखाए कि जोश से बोले, इतनी हवा निकल गई. एक बार फिर से नमस्ते.
3: नमस्ते.
0: अब मजा आया ना. अच्छा, तो हमारे सामने जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो टीम लीडर हैं, वो बैठी हैं. आपको भी नमस्ते. बताइए अपने बारे में कुछ.
3: जी, मैं गोकुला से आई हूँ.
0: अच्छा.
3: हमारे जो महिला समाज है.
0: हाँ जी, हाँ जी.
3: तो हम लोग आए हैं एमबीसी में यहाँ पर. और
0: कोई बात नहीं, रेडियो पे कैसे बोलना है सोचा नहीं था, अभी तक सुन ही रहे थे, लेकिन अच्छा लगा. हाँ, तो अपने पूरे दोस्तों के साथ.
3: जी, हमारा नाम है विश्वानी नंदलोल.
0: हाँ जी, हाँ जी. और यहाँ पर आए तो अभी थोड़ा घूमा आपने एमबीसी में, थोड़ा स्टूडियो में गए.
3: हाँ.
0: ये देखिए कितना मजा आया. हाँ. वो चीजें जो आप देखते हैं कि एमबीसी टीवी है, एमबीसी रेडियो कैसे होता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी कि आपको लाकर यहाँ पर दिखाए कि कैसे सब कुछ होता है.
3: जी,
0: और आप लोग काफी हसमुख हैं. ये जो आप पॉजिटिविटी लाए हैं, जो खुशियां लाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए. देखिए फ्री में हमें मिल गई. और अगर आप थोड़ा सा गुनगुना दे तो और मजा आएगा. आप, मेरे को पता लगा आप गाते हैं, तो हो जाए ऊपर वाले का लेकर नाम. बताइए.
3: तो मैं भजन गाती हूँ.
0: हाँ हाँ, बताइए ना.
3: मंदिर में जब पूजा है
0: तो साथ मिलकर थोड़ा सा गाते ना, हो जाए.
3: हाँ, एक शिव जी के गा दे.
0: हाँ, प्लीज प्लीज शुरू करिए.

0: M2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: एक्चुअली स्टडीज ने दिखाया कि जब आप म्यूजिक सुनते हैं और एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ म्यूजिक जो आपको पसंद हो तो सडनली आपके जो बॉडी पैरामीटर्स हैं ना वो ठीक होने लगते हैं। इसी को कहते हैं म्यूजिक थेरेपी।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: अच्छा काफी लोग हैं जो इसको नजरअंदाज कर देते हैं। टू ऑल द वंस लिसनिंग एट द मोमेंट, पर चाहे रोड पर हो, घर पर हो या थोड़ा सा ब्रेक लेकर, क्योंकि अभी लंच ब्रेक होने वाला है ना, तो थोड़ी सी प्लानिंग होती है, भाई ऐसे करते हैं थोड़ी देर में बाहर मिलते हैं। अच्छा क्या लेकर आए? सब्जी तो रोटी मेरी, हाँ लेकिन पेट में जगह खाली किसकी? आपके? चलो लगे रहो। अच्छा वैसे कहते हैं कि लोग कितने बिजी हो जाते हैं ना, बातें तो चलती रहती हैं, चाहे फैमिली फ्रेंड्स या कलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जिससे आपकी बातचीत होनी चाहिए वो आप हैं खुद। हाँ खुद, यानी कि मन की बात। At times you need to sit and decide where you stand in life। खुद से बात करना और ये सोचना कि आज मैं जहाँ हूँ ठीक है, लेकिन कल कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, या फिर कौन सी वो चीज़ है जो दिमाग के राउंड अबाउट में गोल एंड गोल घूम रही है, क्या है वो जो आपको परेशान कर रही है, हैरान कर रही है, तो फिर कुछ करना तो ज़रूरी है। गेट टू द रूट ऑफ द इशू। मैं आज सच में कैसा फील कर रहा हूँ? अगर आंसर है थोड़ा टायर्ड, तो ये सोचिए कि क्या वो चीज़ है जो आपको खुशी देती है। वो चीज़ें करने से आपका कॉन्फिडेंस वापस लौट कर आएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और फिर लगेगा कि भागे काम तो ऐसे ही झटपट फटाफट हो जाएगा, बस लगे रहो। अरे कभी कभी लोग होते हैं जो अपना फेवरेट इंस्ट्रूमेंट साथ लेकर घूमते हैं, चाहे एक माउथ ऑर्गन हो या फिर एक फ्लूट। अरे साहब चारों तरफ है म्यूजिक की लूट, आप भी लगे रहो, साथ देते रहो। थैंक यू।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings Radio Musty.

0: Radio Mustang.
1: ये वक्त कुछ ऐसा होता है जहाँ पर सब कुछ थम सा जाता है, बट यस एक ब्रेक के साथ साथ जब लगे आपको कि जिंदगी एक बार फिर से रिचार्ज होकर अपनी स्पीड से अपनी रफ्तार से चलती जा रही है, तो इसी का नाम जिंदगी है। यही तो है सच्चाई मेरे भाई। दिस वन गोज आउट स्पेशली फॉर प्रेमा एंड भामिनी के लिए, एंड कामिनी भी है, फॉरेस्ट साइड में है। हाँ ये कौन सी साइड है मुझे नहीं पता, लेफ्ट राइट, लेकिन सेंटर में दिल धड़क रहा है। एंजॉय दिस वन।

ऐसे गानों के साथ ऐसे लगता है ना जैसे यू आर इन एन इमेजिनरी वर्ल्ड, एक दुनिया ऐसी जो कि आपने खुद से बनाई है, खुद से सजाई है। और वहीं पर एक डेडिकेशन आई है विकी की तरफ से, गोज आउट स्पेशली टू टेडी, बाहों के दरमियान प्यार मोहब्बत से जिंदगी यूं ही कटती जाए, तेरा साथ हर जन्म में मुझे यूं ही मिलता जाए। Well, ladies and gentlemen, जाने का वक्त हो रहा है बस थोड़ी देर में, रेट्रो रिदम डोंट फॉरगेट, यहाँ पर एवरग्रीन सुपर हिट गाने आपका इंतजार कर रहे हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? RM2 आपके साथ AM to BM।

This one goes out specially to Vishma, who's also listening in अपनी टीम के साथ and ऐसी मुस्कुराते हुए अपनी टीम को लीड करती हुई and sending in all the positive vibes and energy. ऐसे इंसान का साथ हो तो कोई फिगर नहीं है ना. अरे फिगर को मारो गोली. म्यूजिक साथ है तो म्यूजिक भी मूड को ठीक कर देगा स्लोली स्लोली.

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से। अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओ को भी नमस्कार। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल रिकॉर्ड्स के संचालन से जुड़ी चुनौतियां अक्सर सामने आ रही हैं। हेल्थ सर्विसेज के अधिकारियों के अनुसार इन समस्याओं के समाधान के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा कहा गया है कि डायलिसिस के मरीजों को पहले से ही घर से अस्पताल तक निःशुल्क और प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। अब मकसद है इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सुविधा मजबूत करना ताकि 24 घंटे ये सेवा उपलब्ध कराई जा सके। घरेलू हिंसा के पीड़ितों की बेहतर सुरक्षा करना और साथ ही हिंसा करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करना, ये डोमेस्टिक अब्यूज बिल का प्रमुख मकसद है, जिस पर पिछले मंगलवार से राज्यसभा में बहसें चल रही हैं। ये विधेयक घरेलू हिंसा के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत करेगा। इसके लिए इसमें हिंसा की परिभाषा का दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसमें आर्थिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक शोषण जैसे रूपों को भी शामिल किया जा रहा है। गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधाओं की कमी देखते हुए जल्द ही एक विशेष सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। ये नई संस्था उन मुख्य सुझावों में से एक है जो बच्चों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान तलाशने के वास्ते स्थापित कमेटी ने दिए हैं। ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन अनिता गुरा ने इस फैसले को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और इसका स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जोरदार चक्रवाती तूफान बावी ने नॉर्दर्न मारियाना आइलैंड्स पर प्रहार किया। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में भूस्खलन की खबरें हैं। इस तूफान के साथ 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ जगहों पर भारी नुकसान की खबरें हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आगे दीजिए, नमस्कार।
2: Retro Rhythm.
3: RM2. Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। बताइए आज दोपहर कैसी जा रही है आप सबकी? काम के बीच हैं, घर पर हैं, या बस थोड़ा सा ब्रेक मिला है आप सबको? जो भी कर रहे हैं उसमें आज हम थोड़ा सा म्यूजिक का तड़का लगा देते हैं। कहीं पर चलाएंगे हम थोड़े से तड़क भड़क वाले गाने, जिससे आपकी दोपहर जो है थोड़ी सी रिफ्रेश हो जाए और अच्छे से गानों का साथ मिले। और हम थोड़े से ऐसे गाने चलाएंगे जिससे थोड़ा सा आपको ब्रेक मिले, जहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा सुकून दे सके। तो चलिए, मैं हूँ आपके साथ पूनम, शुरू हो चुका है आपका रेट्रो। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप भेज सकते हैं 5499-1294 पर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:18 हो चुके हैं और हम तो इतना ही कहेंगे, काम थोड़ी देर रुक सकता है पर खाना बिल्कुल आराम से खाइए, हो सके तो हाथों से खाइए, वो और भी इंजॉय करता है इंसान। और अगर आप स्पून से खा रहे हैं या फोक से खा रहे हैं तो बट रिलैक्स होके खाइए, क्योंकि भागना कहाँ है भैया, खाने के लिए तो काम किया जाता है। पूरे दिन तो हम लोग यहाँ वहाँ भागते रहते हैं कामों को लेकर, सिर्फ खाने के लिए। तो चलिए इंजॉय कीजिए अपना खाना, आराम से बनाइए अगर बना रहे हैं तो, और अगर खा रहे हैं तो वो भी आराम से। उसके साथ साथ हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं लोग, जो फोटोज़ भेज रहे हैं अपने किचन में, जो खाना प्रिपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हम खाना बना रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है प्रोग्राम को साथ देते हुए, तो भाई हम भी आपको कहेंगे साथ देते रहिए। साथ में जुड़े हुए हैं इस समय यलेश जी, जो कि सुरीनाम से हैं और बता रहे हैं, उन्हें बड़ी प्यारी सी फोटो भेजी है नूडल्स की। हम यलेश आपको ये कहेंगे पूरी प्लेट फिनिश कीजिएगा, बीच में कहीं रुकना नहीं चाहिए। साथ में वीना जी नोवल फोंस से हैं और अपने हस्बैंड देव को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और उनको सिर्फ इतना कह रही हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो नाइस ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू। ऐसे ही सबके हस्बैंड और वाइफ्स एक दूसरे को प्यार करते रहें और क्या चाहिए। जना जी साथ जुड़ी हुई हैं और अपने परिवार को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। ज्योति जो कि शातो बनारस से हैं, वो अपने पूरे फैमिली आशनी रेखा सुरेखा और मधु फैमिली को एक गाना सुनाना चाहती हैं। साथ में ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डैरन

0: श्वेता, रवीश, प्रीशा, लुएशा एंड अपादू फैमिली पूरे रोशनवा से और गाने की फरमाइश भी कर रहे हैं और बहुत ही खुश हो रहे हैं। कह रहे हैं कि गाने बड़े अच्छे चल रहे हैं भाई, चलते रहेंगे। आपकी पसंद अगर जो है तो हमें भेज सकते हैं 5499129 पर। तब तक इंजॉय कीजिए अपने ये गाने।
1: Retro Rhythm RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमान कल्याणपुर की आवाज़ में अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती। क्या गाना था भाई, दिल खुश हो जाता है। और हम तो यही कहते हैं, सबका ख्याल रखते रखते थोड़ा सा आराम भी दिया कीजिए अपने आप को। थोड़ी सी ऐसा दोपहर का टाइम है तो थोड़ा सा कुछ ऐसा हेल्दी खाया कीजिए जो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं खा पाते हैं, या कहते हैं ना कि रात को डिनर में नहीं खा पाते हैं। हो सकता है कि आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें बनानी आती हो सकता है बिल्कुल ना बनानी होती है, पर आपको डिसाइड तो करना होना चाहिए ना कि क्या खाना है इस टाइम। नून आवर्स में हम हमेशा बोलते हैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा पीते रहा कीजिए, नींबू पानी पीते रहा कीजिए। अगर आपकी थोड़ी सी आजकल थोड़ा वेदर ख़राब है तो आप हो सके तो अवॉइड कीजिए, बनाना को अवॉइड करना चाहिए यानी कि केला को, और थोड़ा दही को भी अवॉइड करना चाहिए, पर नींबू पानी या अगर जिंजर टी ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए। और ये टाइम जो है ना, ये रिलैक्स करने का है, रिलैक्स के साथ साथ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने का भी है। तो आपको अगर मेडिटेशन कर सकते हैं हल्की सी, 2-3 मिनट की भी करेंगे, आँखें बंद कीजिए बस थोड़ा सा, जो ड्राइव कर रहे हैं वो नहीं, बट जो अपने घर पर हैं या जो थोड़ा सा ऑफिस में है, थोड़ा सा 1-2 मिनट का नैप भी लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 2-3 मैसेजेस भी ले लेते हैं। सुरेखा जी जो कि कैथरबोन से जुड़ी हुई हैं, पूरे परिवार के लिए गाना सुनना चाहती हैं। अंजलि एन तितली के लिए अगला गाना चलेगा जो कि फिया जी ने डिसाइड किया है। अब्दुल सायरा बानो जी के लिए भी प्यारा सा गाना चलेगा, पर अब्दुल जी कहते हैं कि मैं सायरा को बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए एक प्यारा सा गाना ज़रूर चलाइएगा। ज़रूर अब्दुल जी, ऐसे ही बस अपना प्यार बांटते रहिए उनको और बस खुश रहिए, हम तो यही कहेंगे आपके लिए। और साथ में इस समय हमारे साथ तनवीर जी, आयशा, तेजल, रायना, रेखा, करुणा, कामिनी एंड तारा चंद जी भी जुड़े हुए हैं, और कमला एंड गंगा बिसुन अनिश जी भी जुड़े हुए हैं साथ में, और वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। साथ में गीता भोला राम फ्रॉम सातु बनारस, अरे क्या बात है, आप सबका आना भाई बहुत ही अच्छा लगता है, आप सबके मैसेजेस दिल खुश कर देते हैं। तो चलिए इंजॉय करते हैं गाने, और उसके साथ साथ आप अपनी डेडिकेशन बताते रहिएगा और बताते रहिएगा कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं 5499-1294 पर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: मेट्रो रिदम
1: 12:41 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपनी प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, मैं हूं आपके साथ पूनम। तो कहते हैं ना कि जब बहुत से गाने ऐसे चलते हैं जहां पे आवाज़ हो किशोर कुमार की और बात हो पल पल दिल के पास, तब तो दिल सच में मचल जाता है। ऐसे ही एक प्यारा सा मैसेज आया है हमारे पास एक हमारे लिसनर का, जो कि जिनका नाम है मनोज जी, जो कि पोर्ट लुइस से हैं, और वो कह रहे हैं जब मैंने अपनी मुझे पता नहीं वो उनकी वाइफ थे या हैं अब या गर्लफ्रेंड थे, जो भी थे, उन्होंने ये लिखा, जब मैं फिया को पहली बार मिला था तो मैंने एक प्यारा सा गाना उनके लिए लिखा था और मैं हमेशा कहता हूँ वो हमेशा मेरे पास रहे, मेरे दिल के पास रहे। अगर वो कहीं चली जाती हैं तो मुझे एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी कितनी खोखली और अधूरी हो गई, और आज भी जब आपके गाने सुन रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि स्टिल आई एम मिसिंग ओनली हर। सो ब्यूटीफुल गाना भी और मैसेज भी आपने जो पसंद चूज़ की है, बिल्कुल हम चलाएंगे आपकी पसंद का गाना, पर हम आपको यही बोलते हैं कि आप हमेशा जिसके भी करीब रहना चाहते हैं उसके करीब रहिए, पर उसके साथ में बात करते रहिए। अगर कोई छोटी मोटी कोई बात हो भी जाए तो बस सॉरी बोल के ख़त्म कर दिया जाए क्यों नहीं। तो इंदिरा जी साथ हैं हमारे और पूरी फैमिली के लिए, रेशमा, विमल, अंजू, केशव, नील, मायसा और पूरे परिवार को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। हम चलाने वाले हैं राजन रघुपत जी जुड़ चुके हैं जो कि लंदन से हैं, और वो भी एक बस कह रहे हैं कि जो भी गाना चलाएंगे उसमें मेरा नाम जोड़ दीजिएगा, मैं तो साथ ही हूँ आपके, रेडियो मस्ती के बिना तो हम नहीं जी सकते। सो स्वीट, थैंक यू सो मच, हम भी नहीं जी सकते आपके बिना, और आपके सबके मैसेजेस जब आते हैं तभी हमें अच्छा लगता है। माला जी जुड़ी हुई हैं बाम्बू से, जो कि सुखराम एंड भीम फैमिली के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं। देव जी अभी फ़ोन कर रहे थे, मैंने उठाया नहीं, पर हम आपको यही कहेंगे आप पेरिस से बात करते हैं और आप मैसेज करते हैं और आपका कॉल या आपकी जो चॉइस होती है मुझे बहुत पसंद आती है, तो फिर से आप दोबारा बताइएगा कौन सा गाना सुनना चाहते हैं और उसके बाद हम चलाएंगे आपकी पसंद का गाना। तब तक इन्जॉय कीजिए ये गाना।
0: RM2 Radio Musti

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं।

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा अकबर अली से। आपको नमस्ते।
1: नमस्कार रादाब। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC की पहल पर कोलिंस ओडेट मॉरिशस में हैं। कैद खानों में सुधार के लिए वो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन मिशन पर आए हैं। मॉरिशस 9 चुने देशों में शामिल हैं जहाँ UNODC अंतर्राष्ट्रीय नियम अनुसार कैद खानों का अनुपालन परखेगा, खासतौर पर कैदियों के साथ सलूक और कैद खानों के संचालन के लिए। स्टॉक टेकिंग के इस मिशन से मुख्तलिफ पहलुओं को देखा जाएगा और मॉरिशस अधिकारियों को सहयोग देने के वास्ते सिफारिशें दी जाएंगी। इस सिलसिले में आज सुबह प्रधानमंत्री दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक खास बैठक लगाई गई। गुजरी 1 जुलाई को नया सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट लागू किया गया, जो सन 2012 वाले पुराने कानून की जगह है। इसके जरिए नए प्रावधान हैं ताकि बीते सालों में सजा प्राप्त करने वाले लोगों को समाज में दोबारा मौका मिले और उन्हें नौकरी मिलने में कोई मुश्किल ना हो। लेकिन बावजूद ये कि कुछ जुर्म हमेशा के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में रह जाते हैं, कुछ दूसरे अपराध को हटाया जा सकता है। लागोजा में 46 साल के एक आदमी के यहाँ 900 से ज्यादा साइकोट्रोपिक दवाएं पाई गई हैं। कल सुबह उसके घर की तलाशी ली गई। गांजा और 3,150 रुपए की रकम की भी जब्ती की गई। ये पैसे ड्रग्स की बिक्री से बरामद किए जाने का शक है। संदिग्ध मुजरिम को ड्रग तस्करी और डेंजरस ड्रग पोसेशन के अस्थायी इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया है। विदेश में कीव में लगातार दूसरी रात के दौरान रूस ने हमले किए। कम से कम 11 लोग जान से गए हैं, करीब 46 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें 5 बच्चे शामिल हैं। 20 से ज्यादा जगहों पर बचाव कार्रवाई की जा रही है। तुर्की में नेटो शिखर वार्ता की पूर्व संध्या पर ये हमले किए गए, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। शिमला गांव मोदालबिया में 27 साल के 27 years old श्री दिवेश गौरिया जो गो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दो बजे इनकी माँ रूपवंती गौरिया के घर शिमला गांव मोदालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तुम्बो में बग की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। नंबर 67 पुस स्ट्रीट थोंकबाव में 77 साल के 77 years old श्री हरिदेव लक्ष्मीन जो गुरु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। और थी आज तीन बजे इनके बेटे मनहर कुमार लक्ष्मीन के घर नंबर 67 पुस स्ट्रीट थोंकबाव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंकबाव की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:09 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, जहाँ पे होते हैं पुराने गाने। भाई चाहे लता की बात करो, चाहे मुकेश जी की बात करें हम, चाहे रफ़ी जी की, या चाहे किशोर दास की, इनकी आवाज़ में दम तो था भाई। ऐसे ही नहीं है, इतने सालों से इन्होंने हमारे दिलों पे राज किया हुआ है। और चाहे शैलेंद्र सिंह हो, और चाहे उसके बाद अगर आप महेंद्र कपूर की बात करें, तो ये भी अलग ही इनका रूप रहा है। इन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं जो कि नॉर्मली हमें सुनने को नहीं मिलते हैं। इनकी कुछ खास बातें, और फिर उसके बाद आ गए उदित नारायण, या आजकल जब हम अरिजीत जी के गाने सुनते हैं, सबकी अलग ही बात है। हर टाइम जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहता है, और ऐसी आवाज़ें भी चेंज होती रहती हैं। पर जो मोहम्मद रफ़ी, किशोरदा की आवाज़ें हैं, मुकेश जी की आवाज़ है, उनकी बात ही कुछ अलग है। चलिए भैया, आपके मैसेजेस के साथ में हम जुड़ जाते हैं, छोटे छोटे एक दो मैसेजेस लेते हैं। विश्वानी धूमन जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं साथ, और कह रही हैं लंच ले रही हूँ पर गानों के साथ जुड़ी हुई हूँ और इन्जॉय कर रही हूँ, थैंक यू सो मच आपका। शारदा जी, नीला जी, प्रतिभा एंड शोभा जी के लिए गाना चलाना चाह रहे हैं हम। साथ में इंडिया से जुड़े हुए हैं इस समय हमारे साथ हैरी सेठी जी, जो कि सुनना चाहते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना। ललित जी जो यूएसए से जुड़े हुए हैं, अपने सारे परिवार और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जुड़े हुए हैं, और कह रहे हैं इंजॉय कर रहा हूँ रेट्रो के गानों को। कहते हैं कि मेरे पापा जब ये गाने बजाते थे तब तो ये चीज़ें समझ नहीं आती थी, पर अब मेरी भी उम्र थोड़ी थोड़ी ऐसी हो रही है जहाँ पर मुझे ये गाने पसंद आने लगे हैं। यही तो खासियत है इन गानों की, कि उम्र जैसे बदलती है वैसे ये गाने पुराने गाने पसंद आने लगते हैं। तो चलिए भैया, एक प्यारा सा गाना सुनाते हैं आपको, पर उससे पहले हम ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे

0: सुनील शंभू जी के लिए, जो कि इस दुनिया में तो नहीं है पर उनकी पत्नी वीना शंभू जी कह रही हैं कि जब जब मैंने तुम्हें याद किया है हमेशा तुम मेरे पास रहे हो, मुझे एहसास होता है और यही प्यार, वो कह रही हैं मेरे साथ रहो हमेशा, और ये उनका फेवरेट गाना था, तो प्लीज़ ये ज़रूर चलाइएगा। तो हम आपके लिए चलाने जा रहे हैं, इंजॉय कीजिए आपका ये ब्यूटीफुल गाना।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

0: रेट्रो रिदम। 1:31 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। क्या बात है भाई, ये गाने ने तो जो मेरा मूड बनाया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना इन्जॉय किया है मैंने, मुझे एहसास नहीं हो रहा था ये गाना इतना अच्छा होगा। बट आपकी पसंद है भाई, कौन कह सकता है कि आपकी पसंद में कहीं कमी। और हम जो वादा करते हैं आपसे वो भी निभाते हैं। आपने जो जो गाने बोले हमने वो चलाए, जो जो समझ आता है हमें भी कि इस टाइम में जो फिट बैठते हैं हम, तो वो गाने आपके लिए ज़रूर चलाते हैं। और हम आपको भी यही कहेंगे कि आप अपनी पसंद के तो गाने बताते हैं, बट थोड़ा सा बस टाइम देख लिया कीजिए, जो हमें लगता है कि सूटेबल है हम ज़रूर चलाएंगे। चलिए भाई, 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय सुरेश शर्मा साजदा जी साथ जुड़े हुए हैं, इन्जॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। ललिता जीतन जी भी जुड़ी हुई हैं, अपने परिवार के साथ में ये प्रोग्राम सुन रही हैं, शायद ऑफिस में होंगी, तो हम आपको यही कहेंगे इन्जॉय कीजिए। कल्याणी सेतुल जी भी जुड़ी हुई हैं और इन्जॉय कर रही हैं इस प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच। चाचा महिन हेलो जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आपने बोला कि मोगैम्बो खुश हुआ क्योंकि आपके पसंद के गाने चल रहे हैं, तो हम भी आपको इसीलिए खुश करते हैं क्योंकि आपको पसंद आते हैं गाने। तो हम जो आपके लिए गाना चलाएंगे वो चलाएंगे तुरुप की रानी चोरों का राजा, वो भी नई वाली, पुरानी वाली नहीं। चलिए भाई, आप मोगैम्बो खुश हुआ तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में आज 2 लोगों का बर्थडे भाई, जो होगा तो बहुत लोगों का, पर हमें जो मैसेज आया हम वही पढ़ेंगे। आज है हितेशनी का बर्थडे और उनका पूरा परिवार उन्हें विश कर रहा है और उन्हें ये कह रहा है तुम इतनी प्यारी क्यूट बच्ची हो और हमेशा ऐसे ही बनी रहो। तो भाई हम भी आपको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे हितेशनी, इन्जॉय कीजिएगा आपका ये दिन और केक कट करते हुए हमें ज़रूर याद करिएगा। साथ में आज कमला जी का भी बर्थडे है, तनवीर, आयशा, तेजल, तरश चंद, वनीशा, वर्षा, रायन एंड अनिष्ठा उन्हें कत्रबोन से विश कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आप हमारे पास रहें, हमारे साथ साथ रहें, हम बाकी सब देख लेंगे। क्या वादा भैया, आपके पास इतने प्यारे बच्चे हैं तो फिर और क्या चीज़ किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जब इतने प्यारे बच्चे होते हैं। ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को कहीं भी जाने मत दीजिएगा। तो चलिए भाई, इन्जॉय करते हैं आपके गाने। ये है आपका तुमसे प्यारा कौन,
1: Retro Rhythm RM2

0: Bollywood.
1: Radio must be

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:43 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ। भाई ये पुराने गाने जो होते हैं ना मस्त लगते हैं, मतलब एहसास होता है कि आप एक बस गाने चलते रहे और आप अपनी एक फीलिंग के साथ जुड़ जाते हैं और हमें कुछ याद नहीं रहता। तो यही है, बस जो ड्राइव कर रहे हैं उनको हम यही कहेंगे, आराम से गाड़ी चलाते रहिए, हम आपके साथ हैं, इंजॉय कीजिए। साथ में इस समय एक हमारे ऐसे ड्राइवर हैं जो कि इस टाइम गाड़ी चला रहे हैं, जबकि वो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर ही तो होता है ना, पर वो है मतलब एक हमारी मैम है, उनके हस्बैंड है जो इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं और वो गाने सुन रहे हैं। उनको पुराने गाने बहुत पसंद है। उनका नाम है सुया जी, सुया बिहारी जी, और उनके हस्बैंड हैं लाल देव, और वो इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो गाड़ी चलाते रहें पर आराम से घर आएँ, और मैंने उनके लिए कुछ गरम-गरम बनाना है आज उनके लिए कुछ स्पेशल। तो भाई चलिए आप बनाइएगा और हमें भी याद कीजिएगा साथ में। भाई ऐसे प्यार वाले गाने तो चलते हैं, बट कुछ लोग हैं जो किसी का दिल सच में चुरा लेते हैं। आज है नीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आज उनके ग्रैंड सन आरव का बर्थडे है, नानी नाना और सुभाष जी जो कि विश कर रहे हैं उन्हें, और उन्हें कह रहे हैं कि तुम इतने प्यारे हो, इतने क्यूटी क्यूटी पाई हो, और हमारा दिल करता है कि बस तुम हमारे आमने सामने घूमते रहो, डोलते रहो, और जहाँ पे भी अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करो फटाफट से घर आ जाना, क्योंकि हमने भी आपके लिए कुछ तैयारी की हुई है। तो हम भी आपको विश करते हैं आरव, हैप्पी बर्थडे टू यू, और इन्जॉय कीजिएगा गानों को भी और साथ में अपने बर्थडे को भी। साथ में फिदू जी भी जुड़ी हुई हैं जो कि फ्रांस से साथ दे रही हैं, आज उनकी ग्रैंड डॉटर जो कि आज 4 साल की हो गई हैं लैला, बहुत ही प्यारा नाम है लैला, उनको भी बर्थडे विश कर रही हैं और कह रही हैं कि तुम बहुत प्यारी हो, अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, एक तो लैंग्वेज की बात है और दूसरे मेरा एहसास तुम्हें समझ नहीं आएगा, बट सच में तुम मेरे दिल में रहने लगी हो, मैं क्या करूँ तुम्हारे बिना, दिल ही नहीं लगता। सच बात है, नानी नाना हो, दादा दादी हो, इनका प्यार अलग ही होता है। तो चलिए भैया इन्जॉय करते हैं गाने और साथ में आपके लिए हम चलाते हैं ये, जिनका भी आज बर्थडे है उन सब के लिए।

0: Radio Musti.
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: तो दोस्तों आज का ये खूबसूरत साथ यहीं तक था। उम्मीद है इन गानों ने आपके दोपहर को और सुहाना बनाया होगा। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मिलेंगे रेट्रो रिदम में कुछ यादगार नगमों के साथ। एंजॉय कीजिए अपना रेट्रो रिदम। मेरे बाद आएंगी परी आपके लिए बॉम्बे टॉकीज लेके। एंजॉय कीजिएगा रेडियो मस्ती को और ये हमेशा आपके साथ है।

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। आदाब। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC की पहल पर कोलिंस ओडोटे मुर्शस में हैं। कैद खानों में सुधार के लिए वो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन मिशन पर आए हैं। मुर्शस 9 चुने देशों में शामिल हैं जहाँ UNODC अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार कैद खानों का अनुपालन परखेगा, खासतौर पर कैदियों के साथ सलूक और कैद खानों के संचालन के लिए स्टॉक टेकिंग के इस मिशन से मुख्तलिफ पहलुओं को देखा जाएगा और मुर्शन अधिकारियों को सहयोग देने के लिए सिफारिशें दी जाएंगी। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी प्रधानमंत्री दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक विशेष बैठक लगाई गई थी जिसमें प्रिजन्स कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। गुजरी 1 जुलाई को नया सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट लागू किया गया है जो सन 2012 वाले पुराने कानून की जगह है। इसके जरिए नए प्रावधान हैं ताकि बीते सालों में सजा पाने प्राप्त करने वाले लोगों को समाज में दोबारा मौका मिले और उन्हें नौकरी मिलने में कोई मुश्किल ना हो। बावजूद ये कि कुछ जुर्म हमेशा के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर पर रह जाते हैं लेकिन कुछ दूसरे अपराधों को हटाया जा सकता है। लागोजा में 46 साल के एक आदमी के यहाँ 900 से ज़्यादा साइकोट्रोपिक दवाएं पाई गई हैं। कल सुबह उसके घर की तलाशी ली गई। गांजा और 3,150 रुपए की रकम की भी जब्ती की गई। ये पैसे ड्रग्स की बिक्री से बरामद किए जाने का शक है। संदिग्ध मुजरिम को ड्रग तस्करी और डेंजरस ड्रग पोसेशन के अस्थाई इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया। विदेश में कीव में लगातार दूसरी रात के दौरान रूस ने हमले किए हैं। कम से कम 11 लोग जान से गए हैं, करीब 46 लोग जख्मी हुए हैं जिनमें 5 बच्चे शामिल। 20 से ज्यादा जगहों पर बचाव कार्रवाई की जा रही है। तुर्की में नेटो शिखर वार्ता की पूर्व संध्या पर ये हमले किए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की वहां राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। डुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव में 59 साल के 59 years old श्री भवन कुमार द्विवेदी परमानन, श्री भवन कुमार द्विवेदी परमानन जो कुशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और एयरपोर्ट में पैथ सुपरवाइजर थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 11 बजे इनके घर डुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदाल बया क्रिमिशन ग्राउंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरवाती 11 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Techies.
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: तो चलिए दोस्तों 2:10 हो गए हैं. स्टूडियो में हमारी जो स्वीट स्वीट आरजेज हैं यहाँ पर नाचती गाती हुई पूनम वेदिता लुक लुक आहा, ये इतनी खुश कैसे हो सकती है? दोपहर के 2 इतनी खुशी किस बात की है? वो भी मंडे आफ्टरनून, ऐसा क्या हो गया? ओ माय गॉड. चलिए यहाँ पर बोल रहे हैं रणवीर सिंह का बर्थडे, कह रही है आमिर खान की शादी. सो सेलिब्रेशन मोड इज ऑन और आपका वार्म वेलकम. 2:10 हो गए हैं दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ मंडे आफ्टरनून एंड यस वी आर सेलिब्रेटिंग रणवीर सिंह का बर्थडे. वैसे हमने एक स्पेशल प्रोग्राम जरूर किया था आपके लिए ऑन 1st of July, जहाँ पर वी हैड 2 hours ऑफ स्पेशल सॉन्ग्स रणवीर सिंह के, बिकॉज ये एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनका कोई भी गॉडफादर नहीं था और जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों के साथ उन्होंने सबके दिल को लुभाया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट धुरंधर, जिनमें हमने उनको देखा. उनकी जो लास्ट रिलीज रही है वही है धुरंधर, जहाँ पर इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस फिल्म ने. हर एक गाना इतना पॉपुलर

और उनका जो रोल था हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत रांगी इसका लोगों ने इतना पसंद किया कि आप वेट कर रहे हैं कि भाई सेकंड पार्ट के बाद क्या थर्ड पार्ट भी आने वाला है लेकिन इसके लिए हमें करना है थोड़ा सा इंतजार आपको नहीं करना है इंतजार कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लेकर आए हैं इट्स योर बॉम्बे टॉकीज मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 पीएम

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 2:29 और बी टाउन की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आमिर खान ने संडे 5 जुलाई को अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रिंट संग रजिस्टर्ड मैरिज कर ली और अब कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन सब के बीच सलमान खान का भी एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में सलमान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की तीसरी शादी पर चुटकी लेते हुए नजर आते हैं। दरअसल सलमान खान की पुरानी वीडियो द कपिल शर्मा शो के दौरान की है और इस टाइम पर आमिर खान की लव लाइफ को लेकर सलमान को चिढ़ाया गया था। आमिर द्वारा गौरी को दुनिया से मिलवाने के जिक्र करते हुए कपिल शर्मा ने बताया कि आमिर सर ने अभी अपनी गर्लफ्रेंड से सबको इंट्रोड्यूस कराया है और आप तो उनसे 6 महीने छोटे भी है, वो रुक नहीं रहे और आप कर नहीं रहे। कपिल शर्मा की ये बात सुनकर सलमान खान एक मजेदार जवाब देते हैं। उनका कहना था कि देखो यार, आमिर की बात ही कुछ अलग है और वो एक आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी है। पूरी दुनिया जानती है कि वो एक परफेक्शनिस्ट है और जब तक शादी का वो एकदम परफेक्ट नहीं कर लेंगे तब तक वो करते जाएंगे। भाई ये कहना तो है सलमान खान का और ये ऐसा मजाक कर भी सकते हैं बिकॉज ये हम जानते हैं कि दोनों का एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। जब से उनकी फिल्म अंदाज अपना अपना आई थी तब से लोगों को उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और ऐसा मजाक तो एक नियर फ्रेंड क्लोज फ्रेंड ही कर सकता है। सो चलिए अभी के लिए तो परफेक्शनिस्ट को शायद अपनी मिस परफेक्ट मिसेस परफेक्ट मिल ही गई है एंड गुड विशेस पहुंचा रही हैं उनके सभी फैंस की ओर से और अभी हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रही हैं वी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स कर रही हैं आपका इंतजार। दैट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। तो चलिए दोस्तों साथ दे रहे हैं आप नॉट टू फॉरगेट योर मैसेजेस योर डेडिकेशंस 5499-1294 पर तरीका साथ टिल 4 PM।

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, आज 6th of July बॉलीवुड के एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये तो आप जानते हैं रणवीर सिंह इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज. शुरुआत हुई थी एज बिट्टू शर्मा फ्रॉम द फिल्म बैंड बाजा बारात. उनकी फर्स्ट फिल्म से ही लोगों को पता चल गया था कि ये लड़का एकदम टैलेंटेड है, सुपर पावर हाउस ऑफ टैलेंट, जहां पर एनर्जी भी एकदम फुल ऑन और हर एक रोल को वो बाखूबी निभाते हैं. हर एक रोल में अपने आप को री इन्वेंट करते हैं और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी. गोलियों की लीला, राम लीला, यस ये जो थी रासलीला जो रामलीला के नाम से काफ़ी पॉपुलर हुई और इसी फिल्म के साथ उनकी जो रोमांटिक केमिस्ट्री है शुरू हुई विथ हिज वाइफ दीपिका पादुकोण एंड अब तो दोनों प्राउड पेरेंट्स बन चुके हैं ऑफ दुआ सिंह. एंड वेल ये हम जानते हैं दैट सून दिल बी वेलकमिंग अपने अनदर बेबी को, सो उसके लिए भी बहुत सारी गुड विशेज. और ये हम जानते हैं दोस्तों की शुरुआत तो हुई थी बैंड बाजा बारात से, लेकिन उनकी जो लास्ट रिलीज रही उसने हर एक रिकॉर्ड को तोड़ा. एंड यस यू आर टॉकिंग अबाउट धुरंधर टेकिंग इंडियन सिनेमा टू द न्यू हाइट्स. धुरंधर ने हर एक रिकॉर्ड को तोड़ा और ये फिल्म रिलीज के बाद से ही हर एक कह सकते हैं हर एक रिकॉर्ड को अपने नाम करती आई है. इतनी पॉपुलर हुई कि क्रिटिक्स और साथ ही साथ व्यूअर्स ने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन तो किया ही और साथ ही साथ कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए. रणवीर सिंह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर किरदार को अपने आप में, मतलब जो किरदार होता है उनको वो पूरी तरह से ढाल लेते हैं, हर एक रोल में वो अपने आप को ढाल लेते हैं. एंड दैट्स रणवीर सिंह फॉर यू. और अब इंतजार है उनकी नेक्स्ट रिलीज का. वैसे तो काफ़ी चर्चाएं भी थी डॉन 3 को लेकर, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि उनके और फरहान अख्तर के बीच हो गई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और ये तो हम जानते हैं कि अब डॉन 3 में तो वो नजर नहीं आएंगे, लेकिन मच अवेटेड होगी उनकी नेक्स्ट रिलीज आफ्टर धुरंधर कौन सी होगी वो फिल्म, उसका रहेगा सभी को बेसब्री से इंतजार. द नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ रणवीर सिंह एंड एवरीवन हु इज कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ. सो वेयर फ्रेंड्स, साथ निभाते रहिए, मैसेजेस डेडिकेशन हम तक पहुंचाते रहिए. 5499-1294 इज द नंबर जहां पर हम कर रहे हैं आपका इंतजार. अभी के लिए इट्स मैं और तू एंड इसी गाने को डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम. एंजॉय दिस वन.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.
3: And well friends, it's 2:55 with this track hum badhne wale hain aapke samacharon ki or. लौट कर आएंगे समाचारों के बाद। इट्स योर बॉम्बे टॉकीज ऑन रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ। फॉर नाउ कॉकटेल 2 का ये गाना, द वेरी पॉपुलर वन, एंजॉय दिस वन।

0: देश विदेश की खबरों को लेकर स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार और आदाब. छात्रों के लिए दो नए अंडर ग्रेजुएट वजीफे यानी छात्रवृत्तियां दी जाएंगी. हालिया राष्ट्रीय बजट में इसका ऐलान किया गया था. इसके अलावा ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत की जाएगी ताकि छात्र प्रैक्टिस कर सकें. कैम्ब्रिज ने शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा कि ग्रेड 10 में ही ऐसी टेक्निकल प्रोग्राम शुरू किया जाए जैसे कृषि और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में. गुजरी 1 जुलाई को नया सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर लागू किया जाएगा जो सन 2012 वाले पुराने कानून की जगह ले. इसके जरिए नए प्रावधान हैं ताकि बीते सालों में सजा प्राप्त करने वाले लोगों को समाज में दोबारा मौका मिले.

0: और उन्हें नौकरी मिलने में कोई मुश्किल ना हो, बावजूद ये कि कुछ जुर्म हमेशा के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर पर रह जाते हैं, कुछ दूसरे अपराधों को हटाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC की पहल पर कोलिंस ओडिटो मॉरिशस में हैं। कैद खानों में सुधार के लिए वो यहाँ एक ऑब्जर्वेशन मिशन पर आए हैं। मॉरिशस 9 चुने देशों में शामिल हैं जहाँ UNODC अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार कैद खानों का अनुपालन परखेगा, खासतौर पर कैदियों के साथ सलूक और कैद खानों के संचालन के लिए। स्टॉक टेकिंग के इस मिशन से मुख्तलिफ पहलुओं को देखा जाएगा और मॉरिशन अधिकारियों को सहयोग देने के लिए सिफारिशें दी जाएंगी। विदेश में पैसिफिक टापुओं में सालों के बाद एक जोरदार तूफान ने प्रहार किया है। बावी नामी इस तूफान से बड़े नुकसान पेश आए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। दुलम स्ट्रीट न्यूग्रोव में 59 साल के 59 years old श्री भवन कुमार द्विवेदी पोमानन, जो कुशन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे इनके घर दुलम स्ट्रीट न्यूग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबेया क्रिमेशन ग्राउंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: More music in the mix.
2: Aaj Azadi hai.
3: Bombay Talkies. Radio Musti.
4: Radio Musti.

तो चलिए दोस्तों, 3:05 हो गए हैं। वार्म वेलकम कर रहे हैं आप सभी का ऑन द वेव्स ऑफ RM2 रेडियो मस्ती। इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स एंड बी टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM। साथ दे रहे हैं आप भी, सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: और चलिए दोस्तों, रणवीर सिंह सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज. हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्म दे चुके सुपरस्टार रणवीर सिंह बॉलीवुड में एक खास और बड़ी पहचान बना ली है. धुरंधर और धुरंधर 2 की अपार सफलता के बाद उनके करियर में चार चांद लग गए हैं और इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर तबाही मचाई. हालांकि आज हम आपको उनके बर्थडे के मौके पर उनकी उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो पुलिस की वर्दी में वो छा गए थे और उन्होंने 10 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी. रणवीर सिंह आज 41 ईयर्स के हो चुके हैं और सुपरस्टार का जन्म मुंबई में 6 जुलाई 1985 को हुआ. बॉलीवुड में बैंड बाजा बारात फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रणवीर ने 1.5 दशक से ज्यादा में कई सारी खास फिल्में की है और इन्हीं फिल्मों से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई है. रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा ने बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया था. साल 2018 में रिलीज हुई इस मूवी ने उनके ऑपोजिट नजर आई थी सारा अली खान और उनसे वो 10 साल उम्र में छोटी थी. हालांकि दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया और फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी काफी पसंद किए गए. और 28 दिसंबर 2018 को रिलीज हुई सिम्बा में रणवीर सिंह ने संग्राम सिम्बा भाले राव का किरदार निभाया था. रोहित शेट्टी के इस डायरेक्शन में बनी फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और IMDB की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 95 करोड़ रुपीस था. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 240 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया जबकि दुनिया भर में इसने 394 रुपीस कमाए और इसके साथ ये बन गई सुपर डुपर हिट. सो वंस अगेन रणवीर सिंह को उनके फैंस की ओर से हम विश करेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और अभी के लिए आप ही साथ देने हैं दोस्तों. सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5499 1294 पर.

सिम्बा की बात की है, सो वी हैड टू प्ले दिस गाना आप सभी के लिए. आंख मारे ओ लड़का, आंख मारे आप सभी के लिए जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती. गुड म्यूजिक हमेशा 24/7. और आज तो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम रणवीर सिंह का बर्थडे, सो दिस वन गोज आउट उनके सभी फैंस के लिए एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती. God, one more

0: रेडियो मस्ती सुनते रहो।
1: और चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में लेकर आएंगे आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर। सो रहेगा इंतजार इसी मैजिकल नंबर पर मेरी का साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। ज्योति नूरन एंड रिबेल, एंजॉय दिस वन।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: Friends, it's 3:52 and it's time for Pari to say goodbye. Jaate jaate aapke messages, aapke dedications 5499124 par Mr. Pritam abhi to saath de rahe hain aap aur wapas aa gaye hain kaam se and tune to RM to Radio Masti dedicate karna chahte hain gana for your lovely wife Varsha. So have a wonderful time hamare is pyare se radio station ke saath. Agla gana aapke liye. Lalita Jeetan abhi aa gayi hain kaam se ghar wapas, enjoying your coffee with some beautiful songs. Sabhi Jeetan parivar ke naam dedicate kar rahi hain agla gana. Saath hi yahan par we have Vidhu ji hamara saath de rahe hain aap bhi. So next one goes out for you. Happy Monday wishes sabhi ke liye. That's coming from Veena Jagesa. Belby Mohel se hamara saath de rahi hain sabhi doston ke naam, sabhi parivar ke naam. And goes out for Radio Masti team. Thank you so much. Saath hi yahan par Roshni keh rahi hain ki weekend to aapka mast beeta hoga. Bilkul ji, aapki company mein acha acha beeta hamare dear listeners jo हमारे साथ है और ऐसे ही गानों को एंजॉय कर रही हैं आप. सो अगला गाना होगा आपके नाम रोशनी. हैव अ वंडरफुल वंडरफुल मंडे अहेड. साथ ही यहां पर कुमार देवीचंद आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू एंड फॉर पापा श्याम देवीचंद. और चलिए यहाँ पर मैश्ड पोटेटोज आप ये पिक्चर हम तक पहुंचा रही हैं. दैट्स रियली स्वीट विजया जी. सो एंजॉय योर आफ्टरनून एंड एंजॉय योर टी टाइम. अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम. लुडमिला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप भी और डेडिकेटिंग गाना फॉर सिस्टर ईशा एंड मॉम के नाम. उनके लिए प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज. वी ऑल्सो हैव दाविस एंड लाल माची से हमारा साथ दे रहे हैं. सो गाना होगा आपके लिए एंड एंजॉइंग द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. दैट्स कमिंग फ्रॉम वीना जी. थैंक यू जी. सो छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटिफुल ट्रैक From the film Cocktail 2, एक heart touching song. आप सभी के लिए अरिजीत सिंह की आवाज, उनका साथ देती हुई सुनिधि चौहान. Enjoy this one. इसी track के साथ परी signing off. मेरे बाद आ रही है गिनिशा लेकर your अवतार vibes. मुलाकात होगी आपसे कल same place same time 2 से लेकर 4 बजे तक in your Bombay Talkies.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check 4 PM. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. सुमैरा अकबर अली से आपको नमस्कार और आदाब.
6: नमस्कार आदाब. यूनिवर्सिटियों में एचआईवी एड्स के खिलाफ एक प्रोग्राम चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई. चेतना अभियान चलाने, मुफ्त में वॉलंटरी और गुप्त स्क्रीनिंग करने के लिए ये पहल ली गई है. 25 से 34 साल के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन नौजवानों को स्क्रीनिंग करवाना एक बड़ी चुनौती है. छात्रों के लिए 2 नए अंडर ग्रेजुएट वजीफे यानी छात्रवृत्तियां दी जाएंगी. हालिया राष्ट्रीय बजट में इसका ऐलान किया गया था. इसके अलावा ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत की जाएगी ताकि छात्र प्रैक्टिस कर सकें. कैम्ब्रिज ने शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा कि ग्रेड 10 में ऐसी टेक्निकल प्रोग्राम शुरू किया जाए जैसे कृषि और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में. एक व्यक्ति ने रात के वक्त मेट्रो की टिकट मशीन से चोरी की है. करीब 1 लाख रुपए के नुकसानात हुए. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मेट्रो स्टेशन में सुरक्षा काफ़ी है. मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के कंट्रोल रूम के स्तर पर किस तरह की निगरानी रखी जाती है ताकि नेटवर्क की गतिविधियां सुचारू रूप से चलें. और विदेश में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के औपचारिक दौरे पर गए हुए हैं. दक्षिण पूर्व एशिया के दक्षिण पूर्व की सबसे बड़ी अर्थनीति के साथ भारत और यानी कि रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा की जा रही है. कई क्षेत्रों में अहम घोषणाएं की जाने वाली हैं जैसे कि प्रतिरक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार के क्षेत्रों में. तो अभी के लिए बस इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार और आदाब.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: Raftar Vibes, Filmy Rides,
0: RM2.

बिल्कुल जी, चिल करने का टाइम आ गया है क्योंकि ऑन रेडियो मस्ती इट्स टाइम फॉर यू टू चिल आउट विद सम गुड म्यूजिक इन योर रफ्तार वाइब्स। सो विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार जी, गिनीशा का प्रणाम। 4:07 हो चुके हैं। सो दोस्तों, रश आवर फुल ऑन चल रहा है और रोड्स पे ट्रैफिक भी फुल स्पीड में है, और अगर आप स्टेयरिंग व्हील के पीछे है तो ड्राइव सेफली और इससे अलर्ट एंड सीट बेल्ट जो है जरूर लगाए रखे, पेशेंस रखे और बस अपने आपकी इस जर्नी को और भी स्मूथ बनाने के लिए ऑन दिस लवली मंडे आफ्टरनून की निशा गई है विद सम किने चुने बहुत ही लवली गाने। और जो रेडियो से कनेक्टेड हैं सुबह से, आपका तो हम कैसे फिर से स्वागत कर सकते हैं। आप तो हमारे साथ 24/7 हमेशा रहते हैं, तो बस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि अगले कुछ मिनट में आ रहा है जबरदस्त गाने, मस्ती एंड एंटरटेनमेंट और ट्रैफिक अपडेट्स भी, एंड इवन योर स्पोर्ट्स अपडेट्स सिर्फ आपके लिए आपके फेवरेट स्टेशन पर, यानी कि RMT रेडियो मस्ती। तो चलिए ड्राइवर्स, ड्राइव से स्माइल वाइड एंड याद रखे कि घर पहुंचना है, और सबसे जरूरी बात ये है कि आपको आराम से सेफली पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पर। सो ड्राइव सेफली एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक ऑन RMT रेडियो मस्ती।

0: लड़के।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2।
3: बिल्कुल जी, बॉलीवुड की ही राइड्स कराते हैं, क्योंकि लेकर आते हैं कुछ ऐसे लवली लवली गाने स्पेशली बॉलीवुड की दुनिया से आप लोगों के लिए। आज है मंडे 6th of July 2026। To all those who are celebrating their birthdays today, I just want to wish you a magical birthday. जी हाँ दोस्तों, और मेरे प्यारे प्यारे listeners, हम तो बस इतना पूछना चाहते हैं कि आप लोग कैसे हैं। I really hope that you're having a good good day. I know it's Monday today. Weekend के बाद जब भी मंडे आता है तो मंडे ब्लूज तो हम हमेशा फील ही करते हैं, बट स्टिल जब RM2 रेडियो मस्ती पर बजते हैं कुछ ऐसे लवली गाने जो आपके फेवरेट हो, सो आई गेस की मूड अपने आप ठीक हो ही जाता है। सो रोड ट्रिप एंजॉय कर लीजिए, और अगर फैमिली के साथ हो तो बस अपना फेवरेट स्टेशन ट्यून इन किया करो, क्योंकि आज की जो आफ्टरनून है बनने वाली है सुपर एंटरटेनिंग। बिल्कुल हम है गिनिशा जो साथ दे रहे हैं अगले कुछ घंटों तक। म्यूजिक होगा नॉन स्टॉप, बातें होंगी फुल ऑन मस्त, और डेडिकेशन होंगे वो भी दिल से स्पेशली आपके लिए। तो जो भी कर रहे हो एक स्माइल के साथ बस वॉल्यूम थोड़ा हमेशा हाई रख लीजिए, क्योंकि अगला गाना जो हम लेकर आए हैं वो खास कर आपके लिए। एंड टू ऑल दोस फॉर ड्राइविंग, हम हमेशा कहते हैं ड्राइव केयरफुली, आराम से गाड़ी चलाना। टू ऑल दोस जो बसेस में बैठे हैं आपको भी हम कैसे भूल सकते हैं। अब एक शॉर्ट आउट गोज टू ऑल ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स जो अभी है बस में हैं, और स्पेशली फॉर यू मिस्टर बच्चन जो है UBS बस सर्विस में काम कर रही है, एंड वो बोलते हैं कि उनके बस में बहुत सारे लिसनर्स एंजॉय कर रहे हैं हमारे खूबसूरत गानों के सिलेक्शंस को। तो रेडी होना, तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा रॉकिंग गाना स्पेशली आपके लिए, सिर्फ आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन पर। सो स्टे ट्यून्स, स्टे कनेक्टेड, कीप ऑन स्माइलिंग, और म्यूजिक को दिल से फील कीजिए, बिकॉज

0: so sexy.
1: You're listening to a radio.

0: तो चलिए जी टाइम बीता चला जा रहा है और आई रियली होप दैट यू गाइस आर रियली लविंग दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गानों का सिलेक्शन जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ऐसे अगर ट्रैफिक में फंस गए हो तो हम तो बस इतना कहेंगे कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बस फिलहाल के लिए हैव समथिंग टू टेल यू। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसी बातें इंसान सुन लेते हैं जो आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पैक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा ईजी पीजी हो। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेकर आते हैं मेरे जान। तो कल जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आज जो करना है वो सिर्फ आपके हाथ में है और जो करना है आप बस कर लीजिए। इसलिए छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, दिल से ही मुस्कुराइए और हर दिन किसी ना किसी की लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर फैलाइए। ऐसे काइंड वर्ड, यू नेवर नो, एक जेन्युइन स्माइल और एक हेल्पिंग हैंड कभी कभी किसी का पूरा दिन बदल सकता है। अपने सपनों पर हमेशा यकीन रखें और खुद पर भरोसा रखें और याद रखें कि धीरे चलना ठीक है, बस रुकना नहीं है। ज़िंदगी में हर सफ़र की अपनी कहानी होती है और आपकी कहानी का बेस्ट चैप्टर शायद अभी लिखा जाना बाकी है। सो स्माइल कीजिए, पॉजिटिव रहिए और लाइफ को हर रोज़ एक नई उम्मीद के साथ जिए। और जब आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही डाउन फील महसूस कर रहे हो तो बस अपने रेडियो के साथ जुड़े रहे 24/7, क्योंकि यही लेकर आते हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने जो हो सकते हैं कि शायद उन गानों में से आपका फेवरेट गाना हो। तो चलिए मूड को और भी खुशनुमा बनाते हैं और ज़बरदस्त गाने के साथ। तो चलिए आई वुड लव टू डेडिकेट द नेक्स्ट वन टू ऑल दोस्ट जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्तिन योर रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइड्स।
1: You're listening to

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: Raftar Vibes. Filmy Rides.
0: RM2.
3: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
0: Sports News.
1: Radio Musty in the mix.
4: वेल गाइस चेक योर टाइम 4:40 होने को हैं और स्पोर्ट्स गुरु आ गए हैं इन द स्टूडियो ऑलरेडी सेट टू गिव यू ऑल द अपडेट्स गुड आफ्टरनून अरविंद जी
5: गुड आफ्टरनून आपको गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स काफी थके हुए आज सभी लोग
4: बिल्कुल और सोशल मीडिया बिल्कुल क्वाइट है आज
5: निराश नहीं
4: बिल्कुल जी
5: आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ब्राजील कैन यू इमेजिन रात को 12 बजे तक जाकर मैच देखना इसमें आपकी टीम मॉरिशस में बहुत से लोगों के लिए
4: ब्राजील को सपोर्ट कर रहे थे
5: ब्राजील को सपोर्ट करते हैं वंडर हाउ मेनी सपोर्ट नॉर्वे ये बात अलग है कि हमने शुरुआत में कहा था कि नॉर्वे जैसी टीम से बच कर रहना होगा ड्यूरिंग द टीम प्रेजेंटेशन जब स्टैट्स के बल पर कहा था कि ये टीम यहां तक आई है इटली को 2 बार हराकर और अर्लिंग अलोन जैसा खिलाड़ी है फिर सो मेनी गुड प्लेयर्स और उसमें वो जो फोर्स लाफोर्स जो कहते हैं कि उसमें ज्यादातर खिलाड़ी बोडो ग्लिंट में खेलते हैं और बोडो ग्लिंट में खेलते हैं तो दे हैव व्हाट वी कॉल जे एंसेम्बल एक साथ खेलने में एक तरह से वो लोग एक्सपीरियंस हैं तो दे जस्ट हैव टू प्ले सेंड द बॉल टू अलोन दो शॉट गोल ब्राजील बाउ बाउ आउट
4: आउट
5: अब ब्राजील को जैसे मैंने सुबह कहा फिर से स्कूल जाना होगा फिर से सीखना होगा फुटबॉल मॉडर्न फुटबॉल किस तरह से खेला जाता है और ब्राजील में काफ़ी ओल्ड प्लेयर्स हैं तो उनको बच्चों के लिए अब जगह बनानी होगी देखते हैं और वैसे भी मैं जब आ रहा था कुछ लोग यूएसए की टीम के बारे में चर्चा कर रहे थे यूएसए की टीम और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कुछ लोग कह रहे थे कि वर्ल्ड कप यहीं पर बंद कर दो ट्रॉफी लेकर यूएसए को दे दो व्हाट हैपेंड अभी अभी यूईएफए ने कहा कि इंटेग्रिटी ऑफ गेम एट स्टेक ओवर फीफा बालूगन डिसीजन ये हुआ था और ये एक अनप्रेसिडेंटेड इनकॉम्प्रिहेंसिबल और अनजस्टिफिएबल है ऐसा यूईएफए ने फीफा के इस डिसीजन को कहा सो फुलारिम बालूगन यूएसए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी वर्ल्ड कप में उनका टॉप स्कोरर उसको बोस्निया वाले मैच के मैं मेरे ख्याल से या दैट वाज द मैच उसको मिला था रेड कार्ड मींस द नेक्स्ट मैच यू आर आउट अभी तक यही होता आ रहा है इस वर्ल्ड कप में लेकिन पता नहीं क्या हुआ फीफा ने कहा कि उसके रेड कार्ड को वापस ले लेते हैं या फिर बाद में उसको सस्पेंड करेंगे और जैसे फीफा ने डिसीजन दिया आउट ऑफ नोवेयर डोनाल्ड ट्रंप कंग्रेचुलेट

0: फीफा, तो इसीलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि क्यों वर्ल्ड कप खेलने आए हो यार, ट्रॉफी दे दो ट्रंप बजाने वालों को। यहाँ पर सिटी नहीं बजती, ट्रंप बजती हैं। एनीवे, फुटबॉल की बात कर रहे हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स भी आ गया इसमें। सो आज पोर्टुगल वर्सेस स्पेन, ये आज का मैच होगा रात्रि के 11 बजे, फिर लाइव होगा ये। और कल सुबह मैच है यूनाइटेड स्टेट्स बेल्जियम, ये 4 बजे। और कल रात मैच अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट। तो आज का मैच जो है पोर्टुगल वर्सेस स्पेन, यूरोप के दो महारथी, क्योंकि एक पोर्टुगल और दूसरी ओर स्पेन, दोनों हाल ही में लास्ट टू इयर्स दे वन द यूईएफए नेशंस कप, फिर यूरोपियन नेशंस कप इन्होंने जीता था। दे आर गुड, अब फुटबॉल लगभग इनका बराबर है, अनुभवी खिलाड़ी हैं, इधर कुछ जवानी का जोश लामिन यामाल भी हैं, तो टाइट होगा ये मैच। बहुत लोग कह रहे हैं कि इट कैन गो टू एक्स्ट्रा टाइम, यहाँ तक कि पेनाल्टी तक जा सकता है। स्पेन की टीम, दे आर द ओनली टीम नाउ नॉट टू हैव कंसीडेड एनी गोल इन दिस वर्ल्ड कप। और उबाज़बाल उनका जो खिलाड़ी हैं, अजीब नाम है, ही कीप्स ऑन स्कोरिंग। और पोर्टुगल में है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडेज, ये सब खिलाड़ी जिनका अनुभव काम आ सकता है। तो ये आज का 11 o'clock मैच। और यूनाइटेड स्टेट्स बेल्जियम, यूनाइटेड स्टेट्स वो मात्र टीम है को होस्ट बची हुई है, बाकी मेक्सिको आउट, फिर और कौन सी टीम थी आज होस्ट, कनाडा, कनाडा आल्सो इज आउट। सो यूनाइटेड स्टेट्स आज को होस्ट के रूप में बेल्जियम का स्वागत करेगा। बेल्जियम की टीम, उनके लिए शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे दे गॉट द मोमेंटम, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स अपने फैंस के सामने दे आर प्लेइंग क्वाइट वेल, देखेंगे। और कल रात ये 8 बजे, जल्दी है यार, रात को 8 बजे जल्दी है। When you imagine you're watching match at 4 a.m.
1: And you won't believe, aajkal itne sare youngsters hai na, I've heard hai, bachche jab baat kar rahe hai na, even on social media they are posting ki ye, who's awake now, abhi ye raat ke 2 baje kaun patch dekh rahe hai, aur ye school ke bachche hai, aur puch rahe hai ki ye, revision sab kuch ho gaya, everything is done in advance, just because we need to watch this.
0: Mujhe yaad hai, I talked about it last time. Bahut baar World Cup jab hota hai, to exams period mein hota hai, June, July, something like this. तो मेरे पापा जो हैं, ही वॉज फोन ऑफ फुटबॉल, 4 बजे 3 बजे उठकर फुटबॉल मैच देखता था। और मुझको कहता, तुम घर अंदर रिवाइज करो। तो मैं ये दरवाजे को थोड़ा सा हटाकर वॉचिंग द मैच, और इट वॉज इन USA, पता नहीं कहाँ था ये वर्ल्ड कप। एनीवे, दोज वर द स्टोरीज। अब वर्ल्ड कप तो है ही, ये तो हमने बता दिया। टोटनहम हॉटस्पर सील्स £100 million sterling move for Newcastle United, Tonali. So signing ho gayi hai Newcastle United ke Sandro Tonali ke liye, 26-year-old London mein a gaya Magpies mein se. Uska bid jo tha pehle £80 million sterling reject kiya gaya tha, lekin agreement ho gaya. Ab ye log 92.5 million initial fee denge, फिर फर्दर 7.5 मिलियन इन add-ons. कहां से इतना पैसा आया है टोटनहम हॉटस्पर के पास, एक ऐसी टीम जो पिछले सीजन रिलीगेट होते हुए बची, लेकिन तुनाली बहुत खुश है, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और 4 नए नए खिलाड़ियों को साइन कर लिया है टोटनहम हॉटस्पर ने, मैथ्यूस फर्नांडेज जो आया वेस्टहैम यूनाइटेड से, वेस्टहैम यूनाइटेड फॉर £85 million स्टर्लिंग। तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद द टोटनहम हॉटस्पर प्लेयर टोनाली, जो पहले न्यूकासल यूनाइटेड में आया था £55 million स्टर्लिंग पर, अब आ गया है इधर। तो वी कैन से इट्स द हाईएस्ट वैल्यू प्रीमियर लीग ट्रांसफर फीस, वन ऑफ द, एक टू अलेक्जेंडर इसाक हैं जो न्यूकासल यूनाइटेड से लिवरपूल में आया था, £125 million स्टर्लिंग। Newcastle United काफी महंगे में खिलाड़ियों को बेचता है। Then we've got Elliot Anderson, Nottingham Forest, Manchester City में for £116 million sterling, और Bayer Leverkusen से Liverpool में आया था Florian Wirtz, £116 million sterling, तो 100 million bracket में ये भी जुड़ गया है। इंग्लैंड के सेलिब्रेशन, कुछ लोग खेल कर घायल होते हैं, कुछ लोग सेलिब्रेट करते हुए घायल होते हैं, ये हुआ एंडरसन के लिए, लिवरपूल का खिलाड़ी, जो एक्स खिलाड़ी इंग्लैंड मिडफील्डर जॉर्डन हैंडरसन, एक रिस्ट इंजरी जब वो सेलिब्रेट कर रहा था, तो ऐसा ना कि खेलने का मौका नहीं दिया गया। सो उतनी उछल कूद करोगे तो होगा ही ऐसा, तो अब बिना खेले वो शायद अब आगे

0: नहीं खेल पाएगा. लेट्स टॉक अबाउट द टेनिस फिक्स्चर्स. आज के जो मैच होंगे इनमें लेट मी सी, पाउलिनी और इलिया के बीच मैच. अभी पाउलिनी 1-0 से आगे. जिमित्रो फेरी के खिलाफ खेलेगा. वेरे विल बी अगेंस्ट लेहेका. डेमिनो कोबोली, डेमिनो अभी 5-4 से आगे हैं. कीज नोस्कोवा. फ्रिट्स बुब्लिच. कोस्ट्रिक की जीत हुई आज क्रूगर के खिलाफ. मेर्टेंस और बुस्कोवा के बीच मैच भी अभी चल रहा है. तो कल सुबह इन सभी मैचों पर और कल के फिक्स्चर्स पर आपको अपडेट्स देंगे. व्हाट्स हैपनिंग इन द क्रिकेट वर्ल्ड. जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच फर्स्ट इंटरनेशनल डे. बांग्लादेश की टीम अभी बैटिंग कर रही है. दे नीड 69 रन फ्रॉम 30 ओवर्स विच इज प्रेटी मच रीचेबल. और सेकेंड टेस्ट मैच श्रीलंका वेस्ट इंडीज के बीच. श्रीलंका ने 549 रन 549 रन पर डिक्लेयर किया. वेस्ट इंडीज की टीम अभी 318 रन पर खेल रही है. दे आर ट्रेलिंग बाय 231 रन. और कल ऑस्ट्रेलिया वीमेन डिफीटेड इंग्लैंड वीमेन टू विन द T20 वर्ल्ड कप. जबकि इंडिया की टीम प्रिपेयरिंग, दी अंडर 19 टीम प्रिपेयरिंग टू प्ले अगेंस्ट श्रीलंका. ये मैच सेकेंड यूफ ओडीआई है, अभी खेला जा रहा है. सो लेट मी चेक. श्रीलंका की अंडर 19 टीम जीत गई ये मैच 8 विकेट से. और इंडिया की टीम जो है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द थर्ड T20 मैच जो होगा इंग्लैंड के खिलाफ. सो दीज आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे. डोंट फॉरगेट, आज और टिकटें दी जाएंगी फॉर द नेक्स्ट राउंड. कुछ लोगों को अलविदा कहना होगा. बट इंग्लैंड वाज एपिक अप यस्टरडे,
1: अमेजिंग
0: अगेंस्ट मेक्सिको. मेक्सिको के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाली मात्र टीम बनी इंग्लैंड. 3-3 गोल, जबकि ये टीम अभी तक गोल कंसीड नहीं किया था. फुटबॉल है, बहुत कुछ होता है आने वाले दिनों में, बहुत कुछ होगा. दिस इज द मैजिक ऑफ द वर्ल्ड कप.
1: ओके, व्हाट्स योर पर्सनल फीलिंग अबाउट है कि आपको जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे ना, याद है बड़े जोश के साथ हम, इवन मैंने भी बोला, आपने भी बोला था कि हमें लगा था कि शायद इवन फाइनल्स में भी, पता नहीं कि जीतेंगे या नहीं, लेकिन फाइनल्स में ब्राजील जो है जरूर पहुंचेंगे. लेकिन जब वो आउट हो गए, व्हाट वाज द फीलिंग?
0: मैंने ये कहा था कि दिल से ब्राजील इंग्लैंड, दिल से
1: हाँ जी.
0: लेकिन कहीं पर मुझे पता था कि ब्राजील इज नॉट डूइंग दैट वेल, क्योंकि क्वालिफिकेशन में दे केम फिफ्थ इन देयर ग्रुप. दिमाग में इट वाज ऑलवेज फ्रांस. और कहीं ना कहीं नॉर्वे को मैंने लिख रखा था. आई डोंट नो नॉर्वे इंग्लैंड को पार कर पाएगा या नहीं, लेकिन फ्रांस इज रियली डूइंग वेल. स्पेन भी, पर जैसे मैंने बताया ना, जो कुछ हो रहा है यूएसए में, कौन जाने ट्रॉफी हड़प कर रख ले बाकी लोगों को, घर जाने के ये भी हो सकता
1: है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड.
0: फुटबॉल को आगे.
2: दिस मैगजीन वाज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट.
3: Méga promo code quality déco. Tiles 30x30. Méga deal. Low tiles 60x60. Super sales. Low granite quartz. Prix cassé. Low lavoir. La lumière moderne. Prix soc. L'ardoise à ban prix qui pouvait ou même gagner pas quoi. Décoration pour la case. En dents, en déo. Sanité.

0: अवतार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: ट्रैफिक अपडेट।
3: I really hope that you guys are really loving and enjoying this beautiful गानों का selection जो लेकर आए हैं especially आप लोगों के लिए। वैसे अगर आप निकल चुके हैं इस वक्त पोर्टली से या नॉर्थ या साउथ की तरफ निकल रहे हैं तो heads up, evening traffic अपना रंग दिखाने शुरू हो गई है और थोड़ा extra travel time लेकर निकले

और पेशेंस के साथ ड्राइव कीजिए, क्योंकि रेजुई से फेनिक्स भी रूट पर भी ट्रैफिक स्लो मूविंग है. तो अगर आप उस डायरेक्शन में हैं, रिलैक्स रहिए और अननेसेसरी लेन चेंजिंग से ज़रूर बचिए. और साउथ बाउंड जो रूट्स हैं उस पर भी व्हीकल्स का फ्लो बढ़ रहा है, और इसलिए ड्राइव कॉमली माय डियर और सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए वाइल ड्राइविंग. रोजिल और कैटरबोन एज यूजुअल आई कैन सी रश आवर का फेवरेट हॉटस्पॉट. यहाँ ट्रैफिक जाम एक्सपेक्ट कीजिए, तो अगर पॉसिबल हो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपने स्केड्यूल में ऐड कर लीजिए. और जो लिसनर्स वेदर रोड पर जा रहे हैं, उसे यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी ट्रैफिक स्लो मूविंग है, स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी अपनी डेस्टिनेशन सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना. तो एक छोटी ऐसी एडवाइस है, रोड पर हर ड्राइवर किसी ना किसी अपने के पास घर जा रहे हैं, तो बस आराम से ड्राइव कर लीजिए. इसलिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ी कर्टेसी एंड एक स्माइल के साथ ड्राइव कीजिए. इंडिकेटर्स का यूज़ कीजिए, सीट बेल्ट हमेशा लगाए रखें, और मोबाइल फ़ोन को ड्राइव करते समय यह हमेशा यूज़ ना करें. तो चलिए, ड्राइव सेफली एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन.

0: बिल्कुल जी, हम तो चाहते ही हैं कि आप हमेशा हम लोगों के साथ जुड़े रहें एंड कीप ऑन एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल एंड लवली गाने जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सो फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 5:11 हो चुके हैं। माय डियर लवली लिसनर्स, विशिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन अ मैजिकल आफ्टरनून हमारे साथ ऑन आवर ऑन रेडियो मस्ती। नमस्कार जी और गणेशा का प्रणाम। टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग ड्राइव केयरफुली, टू ऑल दोस हु आर वर्किंग बुक वॉच टू यू, टू ऑल दोस जो आराम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं तो आराम फरमा लीजिए जी, बस हमारा साथ यूं ही देते रहना। आई होप दैट एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम। मंडे है तो क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना आज। बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि काफी ठंड हो रही है शाम को। दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग यू सम सनशाइन म्यूजिक माय डियर लवली पीपल आउट देयर। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर लवली रफ्तार वाइब्स, योर फिल्मी राइट्स विद मी आवर गणेशा। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर। और अभी से ही आप अगर किसी के लिए गाना डेडिकेट करना पसंद करोगे, सो व्हाई नॉट जस्ट सेंड इट टू मी राइट नाउ योर डेडिकेशंस ऑन 5499012294 पर 5 4 9 9 12 94.
1: You're listening to Radio Mastery.

0: To all those beautiful and lovely ladies and even gents जो already kitchen में घुस चुके हैं खाना बनाने के लिए खुगाश तो यू माय डियर और फिलहाल के लिए एक छोटी सी weather update अभी सुन लीजिए दोस्तों कल से मौसम और भी ठंडा होने वाला है focus के जो मुताबिक है temperature में लगभग 3 degrees के गिरावट देखने को मिलेगी यानी कि कल से 3 degrees Yes, the weather is going to drop by 3 degrees. So just be very cautious. And warm kapre zarur pehna taki aap log jo hain aur bache aur jo buzurg log jo hain bimar na ho jaye. So please just take care of yourself.
1: You're listening to Radio Masti.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2।
2: तो चलिए जी चेक होता है स्टूडियो की घड़ी में 5:31 हो चुके हैं। I've got your dedications on 5491294 पर 5491294 बाकी जो हमारे लिसनर्स साथ दे रहे हैं। अगर आप भी किसी को विश करना पसंद करोगे हैप्पी बर्थडे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी यू जस्ट वांट देम टू फील अ बिट स्पेशल टुडे सो यू जस्ट हैव टू सेंड मी योर डेडिकेशंस। और चलिए जी ये अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे हमारी प्यारी याली शाम के लिए जो सूरीनाम के रहने वाले हैं और आपके परिवार के लिए आपके लिए माय डियर थैंक यू बेटा फॉर सेंडिंग मी सच अ लवली मैसेज। वी हैव युविना एंड जुलियन दे आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे सो आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल बर्थडे सो हैप्पी बर्थडे टू यू ऑन आवर रेडियो मस्ती।

0: Mercury Fashion, house of ready-made garments.
1: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आर एम टी रेडियो में से फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम 5:43 हो चुके हैं यू आर लिसनिंग टू गिनिशा राइट नाउ ऑन आर एम टी रेडियो में से तो चलिए जी फैशन टिप्स का टाइम हो गया है और फिलहाल के लिए जैसे कि आपको पता है कि ये विंटर्स काफी कड़क चल रही है सो विंटर ऑफिस लुक का सीक्रेट लेकर आए हैं फॉर यू गाइज सो कीप इट सिंपल स्मार्ट और कंफर्टेबल एक क्रिस्प शर्ट का जो है उसके ऊपर लाइट वेट स्वेटर या क्लासिक जो कार्डिगन है पहनिए और उसे ऊपर एक वेल फिटेड ब्लेजर या जैकेट ऐड कर सकते हो न्यूट्रल कलर्स जैसे कि नेवी ग्रे ब्लैक या इवन बेज हमेशा एलिगेंट लगते हैं और ऑफिस के लिए परफेक्ट चॉइस होते हैं और हाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं क्लीन शूज मैचिंग बेल्ट एक स्टाइलिश वॉच आपके पूरे लुक को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं रिमेंबर कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट एक्सेसरी सो जब भी कुछ भी आप पहनो तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड जब आप अच्छा फील करते हो तो आप वैसे ही अच्छे दिखते हो सो स्टे वार्म स्टे स्टाइलिश और ऑफिस में अपना बेस्ट इंप्रेशन छोड़ दीजिए थैंक यू सो मच जी ऐसे ही बस यूं ही साथ देते रहना फॉर योर लवली फैशन टिप्स ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकोरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
3: नमस्कार और आदाब। शाम के 6 बजे हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। यूनिवर्सिटियों में एचआईवी एड्स के खिलाफ एक प्रोग्राम चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। चेतना अभियान चलाने, मुफ्त में वॉलंटरी और गुप्त स्क्रीनिंग करने के लिए ये पहल की जाएगी। गुजरी 1 जुलाई को नया सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट लागू, जो सन 2012 वाले पुराने कानून की जगह ले रहा है। इसके जरिए नए प्रावधान हैं ताकि बीते सालों में सजा प्राप्त कर गए लोगों को समाज में दोबारा मौका मिले और उन्हें नौकरी मिलने में कोई मुश्किल ना हो। एक बीघा जमीन की कीमत 85,000 रुपये। सरकार ने आलू उगाने वाले 64 खेतीहरों के लिए मुआवजे की ये रकम प्रस्तावित की। फाके की रिपोर्ट के बाद ये प्रस्ताव रखा गया कि ये प्रस्ताव रखा गया है। और पैसिफिक आइलैंड्स में भावी तूफान का प्रहार, नुकसान काफी ज्यादा है। नमस्कार राधा, पेश हैं समाचार बुलेटिन। सबसे पहले ये खबर। यूनिवर्सिटियों में एचआईवी एड्स के खिलाफ एक प्रोग्राम चलाने के लिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। चेतना अभियान चलाने, मुफ्त में वॉलंटरी और गुप्त स्क्रीनिंग करने के लिए ये पहल की जाएगी। 25 से 34 साल के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन नौजवानों को स्क्रीनिंग करवाना एक बड़ी चुनौती है। अनिशा मदाया, अशिता रघु।
4: एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय का ये छात्र पहली बार एचआईवी जांच करा रहा है। उसने अपने एचआईवी स्टेटस की जानकारी हासिल करने के लिए ये कदम उठाया है, लेकिन हमारी टीम के वहां पहुंचने तक केवल 4 छात्रों ने ही जांच कराई थी। हालांकि ये सेवा पूरी तरह निशुल्क और गोपनीय है, फिर भी छात्रों को जाँच के लिए प्रेरित करना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सब कुछ ठीक है। इस परीक्षण से हमें अन्य बीमारियों के बारे में भी पता चलता है। एचआईवी के बारे में कईयों को पता नहीं होता, या शायद वे बताना नहीं चाहते, उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। आजकल यौन संबंध के अंतर्गत बहुत लोग कॉन्डम्स का इस्तेमाल करते हैं, पर ये मॉरिशस में अभी भी मौजूद है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सेंट्रल हेल्थ लेबोरेटरी के आंकड़े बताते हैं कि युवाओं में एचआईवी संक्रमण का असर अब भी लगातार बना हुआ है। रोकथाम के चलते परीक्षण करवाने की सलाह दी जाती है। नौजवानों की अपनी जीवन शैली है वयस्कों की तुलना में।

0: एचआईवी को अभी भी कलंक माना जाता है। जैसे जहां स्वास्थ्य अभियान चलाए जा रहे हैं, वहां एचआईवी की तुलना में मधुमेह का परीक्षण करना ज्यादा आसान होता है। लोग इस सुविधा से दूर भागते हैं या कहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वर्ष 2024 में सामने आए नए मामलों में 25 से 34 वर्ष आयु वर्ग की हिस्सेदारी 48.3% रही, जबकि 2025 में ये 32.8% दर्ज की गई। वर्ष 2025 के दौरान देश भर में एचआईवी की 1,00,000 से अधिक जांचें की गई, जिनमें से 569 जांच विश्वविद्यालयों में आयोजित की गई। ऐसे परिदृश्य में इस क्षेत्र में जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि एचआईवी की रोकथाम को और प्रभावी बनाने के लिए विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकते हैं। ये पहल व्यापक रोकथाम रणनीति का हिस्सा है। ऐसे समय में जब मॉरिशस में युवा वयस्क अब भी एचआईवी संक्रमण के सबसे अधिक जोखिम वाले वर्गों में शामिल है।
1: एक व्यक्ति ने रात के वक्त मेट्रो की टिकट मशीन से चोरी किए, करीब 1,00,000 रुपए के नुकसान हुए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मेट्रो स्टेशन में सुरक्षा काफी है? मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के कंट्रोल रूम के स्तर पर किस तरह की निगरानी रखी जाती है ताकि नेटवर्क की गतिविधियां सुचारू रूप से चलें? अंजू राम गुलाम की रिपोर्ट में विस्तार विवरण गीता सुनारान का है।
2: रात के करीब 1 बजे का समय था। बेलरोज मेट्रो स्टेशन पर एक नकाबपोश व्यक्ति टिकट बिक्री मशीन को तोड़कर उसमें रखी नकद रकम चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार साबित होती है क्योंकि मशीन में नकद पैसा लगभग नहीं था। हालांकि इस तोड़फोड़ से लगभग 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। संदिग्ध को 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे। मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के चीफ ऑफ ऑपरेशंस लवेश जड्डू कहते हैं, 1 बजे के करीब अलार्म बजने लगा और तुरंत एक प्रोटोकॉल सक्रिय किया गया। सुरक्षा कर्मी स्थल पर पहुंचा, लेकिन काफी तेजी से व्यक्ति ने उसमें तोड़फोड़ की और चोरी करके चला गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारी टीम मेट्रो एक्सप्रेस लिमिटेड के कंट्रोल रूम पहुंची, जहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर व्यक्ति की हर गतिविधि पर कैमरों के माध्यम से नजर रखी जाती है। पूरे मेट्रो नेटवर्क के 22 स्टेशनों की निगरानी के लिए 6 कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है कि मेट्रो की संपत्ति तोड़फोड़ या चोरी का निशाना बनी है। एक्टिंग चीफ सर्विस सपोर्ट राजीव ननकू कहते हैं, दिन हो या रात गश्त लगाने वाली टीमें और सीसीटीवी मॉनिटोरिंग सिस्टम हैं, जहां हर समय सुरक्षा पर नजर रखी जाती है। हमारे कैमरे की निगरानी के लिए करीब 400 कैमरे हैं और पुलिस के साथ भी निरंतर संपर्क में रहते हैं। सातों दिन 24 घंटे एक पुलिस अफसर तैनात रहता है। हर किसी स्टेशन पर कोई घटना के बारे में पता चलता है तब हम पुलिस कर्मी को सूचित करते हैं, वो संबद्ध पुलिस स्टेशनों में सूचना देता है। शनिवार 20 जून को हुई इस घटना के बाद से बेलरोज स्टेशन की टिकट बिक्री मशीन आंशिक रूप से बंद है। मोगिसियो और उसकी जैसी अन्य टिकट मशीनें हर महीने 1.2 मिलियन यात्रियों की सेवा करती हैं, और अगर कभी आपके मन में किसी मेट्रो स्टेशन को लूटने का विचार आए तो मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि हर एंगल से आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही होती है।
1: गुजरी 1 जुलाई से नया सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर एक्ट लागू है, जो सन 2012 वाले पुराने कानून की जगह है। इसके जरिए नए प्रावधान हैं ताकि बीते सालों में सजा प्राप्त कर गए लोगों को समाज में दोबारा मौका मिले और उन्हें नौकरी मिलने में कोई मुश्किल ना हो। बावजूद ये कि कुछ जुर्म हमेशा के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर पर रह जाते हैं, कुछ दूसरे अपराधों को हटाया जा सकता है। सिंचा मोटू की रिपोर्ट में ज्यादा जानकारियाँ।
2: नए कानून में भेदभाव न करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत यदि किसी उम्मीदवार का पूर्व अपराध या दुष्कर्म उस पद से संबंधित नहीं है जिसके लिए उसने आवेदन किया है, तो नौकरी पर रखने वाले केवल उसी आधार पर उसे नौकरी से वंचित नहीं कर सकेगा। एक और महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर से कुछ अपराधों को हटाने के लिए मानदंडों को अधिक लचीला बनाया गया है। एक्टिंग प्रिंसिपल स्टेट काउंसिल वकील दामोदर सिंह बिसेसा कहते हैं, पुराने कानून के तहत अगर किसी को दोषी पाया गया और उसे कम से कम 5,000 रुपए का जुर्माना मिला, तब उसे 5 साल इंतजार करना पड़ता जब तक कि इस अपराध को उसके सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर से नहीं हटा दिया जाता। नए कानून के साथ 5,000 के जुर्माने को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। यानी अगर

किसी को किसी अपराध के लिए 50,000 रुपए तक का जुर्माना मिला, तब 5 साल तक इंतजार करने की बजाय 2 साल के अंदर ही ये अपराध उसके सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में शामिल नहीं होगा। अगर किसी को 50,000

0: की आयु में उसने अपराध किया हो, तब नए सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर में ये अपराध शामिल नहीं होगा। हालांकि कुछ दोष सिद्धियां ऐसी हैं जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा। इनमें सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर की जालसाजी या धोखाधड़ी से उसमें फेरबदल, शराब या मादक पदार्थों के प्रभाव में लापरवाही से वाहन चलाकर किसी की मृत्यु का कारण बनना और विभिन्न मौजूदा कानूनों के अंतर्गत आने वाले अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं। यदि कुछ अपराध या दोष सिद्धियां जीवन भर सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर में दर्ज रहेंगी तो कुछ अन्य अपराधों को इस सूची से हटा दिया गया है। डेंजरस ड्रग्स एक्ट के तहत अगर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है या अपने पास ड्रग्स रखता है या गांजे का सेवन करता है, ये अपराध जीवन भर उसके सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर में रहता है। नए कानून में प्रावधान है कि अगर किसी के पास बहुत कम लागत के ड्रग्स पाए गए या गांजे का सेवन किया गया तो ये सर्टिफिकेट में शामिल नहीं होगा। ये संभावना भी है कि क्षमादान दे दिया जाए, तब ये अपराध उसके सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर में शामिल नहीं होगा। जिला पुलिस स्टेशनों को अब सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर के लिए आवेदन स्वीकार करने और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। डीपीपी दफ्तर हर महीने लगभग 9,000 सर्टिफिकेट ऑफ करैक्टर के आवेदन प्राप्त करता है।
1: छात्रों के लिए दो नए अंडरग्रेजुएट वजीफे यानी छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। हालिया राष्ट्र बजट में इसका ऐलान किया गया था। इसके अलावा ग्रेड 11 और ग्रेड 12 में एक टेक्निकल एजुकेशन अप्लाइड पाथवे की शुरुआत की जाएगी ताकि छात्र प्रैक्टिस कर सकें। कैम्ब्रिज ने शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रस्ताव रखा कि ग्रेड 10 में ऐसी टेक्निकल प्रोग्राम शुरू किया जाए जैसे कि कृषि और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों में। एक बीघा ज़मीन की कीमत 85,000 रुपये। सरकार ने आलू उगाने वाले 64 खेतीहरों के लिए मुआवजे की ये रकम प्रस्तावित की। फागे की रिपोर्ट के बाद ये प्रस्ताव रखा गया। रिपोर्ट में ये उल्लेख हुआ कि सन 2025 में आलू की फसल में बहुत नुकसान हुआ क्योंकि एएमबी ने अनियमित बीजों की सप्लाई की थी। तांजानिया मॉरिशस के साथ अपना सहयोग कई सेक्टरों में मजबूत करने का इरादा रखता है जैसे शिक्षा, कृषि, पर्यटन और नई टेक्नोलॉजियों के संदर्भ में। तांजानिया की नई उच्चायुक्त सुजान सालोमी कागांदा ने आज गणराज्य के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र दिया। सन 2007 से दोनों देशों के बीच सहयोग है। मॉरिशस और तांजानिया एक स्थायी आयोग कायम करने का मकसद रखते हैं ताकि द्विपक्षीय रिश्तों को गहरा किया जा सके। लागोजा में 46 साल के एक आदमी के यहाँ 900 से ज्यादा साइकोट्रोपिक दवाएं पाई गई हैं। कल सुबह उसके घर की तलाशी ली गई। गांजा और 3,150 रुपए की रकम भी जब्त की गई। ये पैसे ड्रग्स की बिक्री से बरामद किए जाने का शक है। संदिग्ध मुजरिम को ड्रग तस्करी और डेंजरस ड्रग पोसेशन के अस्थायी इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया। और अब विदेश की खबरें। पैसिफिक टापुओं में सालों के बाद एक जोरदार तूफान ने प्रहार किया। बावी नामी इस तूफान से बड़े नुकसान पेश आए हैं। उधर केव में लगातार दूसरी रात के दौरान रूस ने हमले किए। कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है। करीब 46 लोग जख्मी हुए हैं जिनमें 5 बच्चे शामिल। 20 से ज्यादा जगहों पर बचाव कार्रवाई की जा रही है। और अब कुछ दूसरी खबरें विधि मासिबोरन के साथ।
2: ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिकी के पास शनिवार शाम लगी एक भीषण जंगल की आग के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया गया है। आग के तेजी से फैलने के बाद शहर के उत्तर में स्थित 3 छोटे उपनगरों के निवासियों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया गया है। मध्य पुर्तगाल के वुजेला के पास लगी एक भीषण जंगल की आग तेज हवाओं और अत्यधिक गर्मी के कारण कई नगर पालिकाओं में फैल गई है। जैसे ही निकासी के आदेश दिए गए, निवासी अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। अग्निशमन प्रयासों के तेज होने के साथ ही अधिकारियों ने हजारों हेक्टेयर भूमि के जलने की सूचना दी है। स्पेन के कोस्ता ब्रावा के बे ओंपोदा जिले में शुक्रवार को लगी जंगल की आग के कारण हजारों लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्षेत्रीय अधिकारियों के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार ये आग लगभग 1800 हेक्टेयर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है, जबकि दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तरी चीन में भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है।

0: जबकि देश के दक्षिणी हिस्से में आए एक ट्रॉपिकल तूफान ने पेड़ गिरा दिए और गाड़ियों को पानी में डुबो दिया। सुरक्षित स्थानों पर लगभग 3,600 निवासियों को स्थानांतरित किया गया है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश ने पूरे राज्य में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई और उसके उपनगरों में मूसलाधार बारिश के चलते मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। पालघर जिले के कुछ हिस्सों से बाढ़ जैसी स्थिति की खबरें हैं, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे व सतारा के घाट क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रायगढ़, रत्नागिरी और नासिक के घाट क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट लागू है।
1: और अब आज खेले गए मैचों की बात करते हैं। इंग्लैंड और नॉर्वे की जीत हुई है, मेक्सिको और ब्राजील की हार 3-2 और 2-1 से हुई है। विस्तार अरविंद बिसेसर के साथ।
2: वर्ल्ड कप में टीमें आती हैं जाती हैं, पर जब वर्ल्ड कप में से ब्राजील बाहर होता है तो इसे बड़ा झटका माना जाता है। ब्राजील की टीम इस बार नॉर्वे के खिलाफ हार गई, 2-1 से ब्राजील की हार। मेटलाइफ स्टेडियम जो रंगारंग था दोनों टीमों के रंग में, शुरू में नॉर्वे ब्राजील के खेल को परख रहा था। सिलेसाओ को एक पेनाल्टी भी मिलता है, लेकिन ब्रूनो गुमारेस के सामने नॉर्वे का चट्टान जैसा गोलकीपर नाइलन था जो पेनाल्टी रोक पाया। ऐसा मौका अगर हाथ से जाने दे तो बाद में पछताना पड़ता है। नॉर्वे में ऐसा खिलाड़ी है जिसको जब एक मौका दिया जाए तो वो छोड़ता नहीं। अर्लिंग हॉलैंड इस मैच में 4 शॉट लगाता है, 2 गोल। इंजरी टाइम में ब्राजील एक गोल कम करता है निमा के पेनाल्टी के जरिए, पर बहुत देर हो चुकी थी। नॉर्वे पहली बार के लिए वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में, जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड मेजबान देश मेक्सिको को हरा के यहां पर पहुंचा। ब्राजील के वर्ल्ड कप का किस्सा समाप्त, अब फिर से इस टीम को बनाना है।
1: और राउंड ऑफ 16 में आज रात 11 बजे पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला होगा। अमेरिका और बेल्जियम के बीच कल सुबह 4 बजे और अर्जेंटीना इजिप्ट के खिलाफ खेलने वाला है कल रात 8 बजे। विस्तार।
2: आज टेक्सास में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से है। एक 2024 में यूरोपियन चैंपियन बना था, दूसरा यूरोपियन नेशंस कप जीत पाया था। इबेरियन डर्बी कहा जाता है इसको। दो पड़ोसी आमने सामने। स्पेन की टीम पर अभी तक किसी ने गोल स्कोर नहीं किया है। डिफेंस मजबूत है और सामूहिक खेल उनकी शक्ति है। लामिन यमाल के साथ ओयोज़ाबाल गोल पर गोल स्कोर करता जा रहा है। पुर्तगाल अपने अनुभवी खिलाड़ी पर निर्भर करेंगे, जिनमें आक्रमण काफी है और अनुभव काम आएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ब्रूनो फर्नांडेज जैसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। करीबी मामला होगा दोनों के बीच। इस मैच में एक्स्ट्रा टाइम और पेनाल्टी तक भी जा सकते हैं। स्पेन की टीम यहां तक आने के लिए आराम से ऑस्ट्रिया को हराया, जबकि पुर्तगाल को बहुत पाप पर बेलने पड़े क्रोएशिया को हराने में। पुर्तगाल वर्सेस स्पेन, ये मैच 11 बजे एमबीसी के स्पोर्ट्स चैनल पर दिखाया जाएगा। फिर कल सुबह इस वर्ल्ड कप में बची मेजबान टीम यूएसए का सामना बेल्जियम से है। अपने घर में अपने फैंस के सामने हौसला बुलंद है यूएसए के लिए, और उनका टॉप स्ट्राइकर बालोगन, जिसको रेड कार्ड मिला था, उसे रद्द कर दिया गया था, वो खेल पाएगा। मॉरिशियो पोचेटिनो की टीम में ऐसे काफी खिलाड़ी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। सामने है बेल्जियम की टीम जिसमें अनुभवी खिलाड़ियों की कमी नहीं है। केविन डे ब्रुइन, लुकाकू, कूतवा सब हैं यहां पर। इस वर्ल्ड कप में धीमी गति से शुरुआत हुई थी, रफ्तार पकड़ते हुए यहां पर पहुंची है बेल्जियम की टीम। ये मैच 4 बजे कल सुबह।
1: और अब करते हैं मौसम की बात। हमारे इलाके में एक ज़ोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से मौसम काफ़ी हवादार और ठंड महसूस की जाएगी, और

कल सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक ऊंची लहरें उठने की चेतावनी होगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात आमतौर पर मौसम अच्छा रहेगा, सिवाय ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश होगी। पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों में बादल घिराएंगे और रह रहकर हल्की वर्षा होगी। कल दोपहर बाद घने बादल होंगे और ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 15 से 18, अधिकतम 17 से 20, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। और कल दक्षिण पूर्व की तरफ से हवा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र बहुत ही खराब रहेगा, दक्षिण पश्चिम में ऊंची लहरें उठेंगी 4 मीटर वाली। सभी प्रकार की सावधानियां बरतने की मांग की जाती हैं, खासतौर पर समुद्र में न जाने की दरख्वास्त है। कल 6:46 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:43 पर सूरज ढल जाएगा। तो ये थी अब तक की खबरें आप तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब शोक समाचार सुनिए। नंबर 67 नंबर 67 पुस स्ट्रीट थोंकबा में 77 साल के 77 इयर्स ओल्ड श्री हरिदेव लक्ष्मीन जो गुरु के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 3 बजे उठाई गई। दुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव में 59 साल के 59 इयर्स ओल्ड श्री भवन कुमार द्विवेदी परमानंद जो कुशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व पैथ सुपरवाइजर ऑफ एयरपोर्ट थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल 11 बजे इनके घर दुलम स्ट्रीट न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदाल बेया क्रिमेशन ग्राउंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड त्रॉ बुटीक त्रियोले में 47 साल के 47 इयर्स ओल्ड श्री सच्चिदानंद परलाकी जो ऋषि एक्स प्रिजन ऑफिसर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल ढाई बजे इनकी माँ परबावती सकुन परलाकी के घर महात्मा गांधी रोड त्वाबुची त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनुस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। जोली स्ट्रीट 400 में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती मानती राम सोहक पैदाइशी नाम जो मानती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल पौने एक बजे इनके भाई पुरन बली के घर जूली स्ट्रीट 400 से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:15 PM। कलाउटी राकुतू अली बॉम्बू मोतायोरी में 100 साल की 100 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कलाउटी राकातू पैदाइशी नाम सालडों जो पुपू साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल पौने ग्यारह बजे इनके बेटे देव राकातू के घर अली बॉम्बू मोतायोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पाई की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:15 AM। रॉयल रोड गुडलैंड्स में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड श्री देवानंद ईश्वरलाल बोलोराम जो बोलो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके घर रॉयल रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। रॉयल रोड लिस्पेरेंस ट्रिबुशे में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड श्री सुरेंद्र रंजया जो सुरेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनकी पत्नी सेलू रंजया के घर रॉयल रोड लिस्पेरेंस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

स्टूडियो के घर में सारे छे तो बज ही गए हैं मेरी जान. टू ऑल दोस हु आर ट्यून्ड टू आवर एंटी रेडियो में से आपका स्वागत है इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स योर फिल्मी राइट्स विद मी गिनिशा ऑन रेडियो मस्ती. एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. टू ऑल दोस जो अभी भी शायद रास्ते में हैं, स्टिल ड्राइविंग टू गो बैक होम, और शायद किसी ट्रांसपोर्ट में बैठे हैं, जैसे कि बस, टैक्सी या इवन मेट्रो में बैठे हैं, टू गो बैक होम एंड वंडरिंग अंधेरा हो गया है एंड स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो. सो आप बस आराम से बैठ जाना, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दोज ब्यूटीफुल एंड लवली गाने जो स्पेशली हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं. हियर वी गो, लेट के की आवाज में. हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू.

बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, ये प्यार इज पॉसिबल माय डियर। और वैसे भी जब ऐसे गाने हम लेकर आते हैं ऑन ऑन टू रेडियो मस्ती, तो सारे की सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ एंड यू गोना सी हर चीज़ पॉजिटिव में ही बदल जाएगा आप लोगों के लिए। 6:48 हो चुके हैं और अगला गाना हम लेकर आए हैं अनुषा के लिए जो रहती हैं says Jamil La Forestside. So the next one goes out for your husband Vimal. He's working right now, our sweet Perry friends Poonam, Chacha Anil Hasraj Maldini, and working at supermarket right now. So courage to you guys, and we do have the next one specially teen bachchon ke liye jo saath de rahe hain. That's coming from Ragini ki taraf se. 18th birthday mana raha hai koi. Yeah. So wishing a happy birthday to nephew Lakshya Soamba.

बिल्कुल जी, हमें भी यकीन है कि कभी ना कभी आप लोग जरूर मिलेंगे. अगर सच्चा प्यार करते हो तो जरूर मिलोगे. एंड फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू. आने वाली है थोड़ी देर में हमारी प्यारी दिव्या आपका साथ देने के लिए इन योर इवनिंग लाउंज. तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए. शुभ रात्रि एंड कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक ऑन ओनली ऑन रेडियो मस्ती.

कितना सुकून कितना आराम मिलता है जब आपसे मुलाकात करने आते हैं। ये सुकून ये आराम और ये पल फिर से लौट कर नहीं आने वाला है, इसलिए हमेशा हम कहते हैं ना कि आने वाला पल आकर ही रहता है और जाने वाला पल जाकर ही रहता है। कोई भी और कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। सो जितना हो सके अपने आज को अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ऑफ कोर्स सभी के लिए तो इट्स योर मी टाइम और मी टाइम के साथ साथ इट्स योर टाइम विद रेडियो मस्ती, जहां पर हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ खूबसूरत गाने ताकि आपको मौका मिले टू सिट बैक रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल कूल म्यूजिक सूदिंग गाने। एंड आपको मौका मिलेगा इन खूबसूरत रोमांटिक गीतों का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए टिल 9 PM। सो चलिए दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती एंड हमारा और आपका साथ ऐसे ही इतना खूबसूरत हम इस मुलाकात को बनाएंगे कि आपको खुद ऐसा लगेगा कि काश ये वक्त थोड़ा और ठहर जाता, लेकिन क्या करें, वक्त के साथ साथ तो सबको चलना पड़ता है। तो चलिए हम भी साथ साथ चलेंगे और साथ मिलकर आप लोगों के मैसेजेस और कुछ आपस की प्यार की बातें शेयर करेंगे ऑन 5499 1294। यस, वेटिंग फॉर योर मैजिकल मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज 5499 1294। या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 4028035 पर। लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप डेली हमसे बात करते हैं तो प्लीज़ आज दूसरों को भी मौका दे। कभी कभी क्या होता है, मुझे पता है कि आपको लाइन मिल जाती है तो आप लोगों को अच्छा लगता है बात करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि दूसरों को लाइन नहीं मिलती है और वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं। तो चलिए आज हम थोड़ा दूसरों के बारे में सोचेंगे और उनको मौका देंगे। तो चलिए जितने भी सारे लोग आप हिचकिचाते हैं उन्हें आने के लिए, आज नो एक्सक्यूजेज। अगर आप

लोग ऑफ एयर भी बात करने वाले हैं, तो आज हम आपको ऑन एयर लेने वाले हैं क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा बहुत आप अपने इस हेजिटेशन को थोड़ा ब्रेक करें और हिचकिचाहट से बाहर अपने कंफर्ट जोन में आए। एंड अगर आपको लगता है ना कि आपको कुछ शेयर करना है हमारे साथ, कोई डेडिकेशन है, कोई ख़ास गाना है जो आपके दिमाग में है और यू हैव बीन वेटिंग फॉर द शो ताकि आप अपने रोमांटिक गीत को रिक्वेस्ट कर पाएँ, तो चलिए आपका हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑन 4 2 8 2 3 5 कट्स।

0: ये दिल की धड़कनें सुन रही हैं आप, ऐसे ही आपके दिल की धड़कनों को और तेज कराना है हमारी खूबसूरत गीतों के जरिए। वेल शाम के 7:26 हो चुके हैं और जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन दैट इज रेडियो मस्ती, जहां पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज। चलिए कुछ आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे एंड यहां पर अगला गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू। करीश कहती है, हेलो दी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली आपके हबी रवि के लिए, ड्राइविंग राइट नाउ, उनसे हम कहेंगे ड्राइव सेफ एंड केयरफुल। तुमसे मिलके हमदम ये मैंने जाना, फ्रॉम प्यार का तराना। ओके, इसको ढूंढने की हम कोशिश करेंगे एंड हम रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं तो आप ओल्डीज़ के बजाय कुछ 90s, कुछ नए गीतों की फरमाइश कर सकते हैं। एंड चलिए, यहाँ पर हमें सीना का फ़ोन आया था फ्रॉम प्लेंदेबा पाई और उन्होंने कहा ऑन एयर बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ट्राई ही करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग हैं जो हमें फ़ोन करते हैं लेकिन बहुत ही हिचकिचाते हैं टू बी ऑन एयर। तो चलिए सीना, आप प्लेंदेबा पाई से नेक्स्ट गाना गुजार स्पेशल for you and for Alibag's family। And आपने कहा है कि अगर हो सके आप तो ऐसे ना थे मूवी से लिया गया, तो इस तरह से मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में। चलिए ये गाना तो हमने चला लिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जितने भी सारे लोग, अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज़ कोई ऐसे कूल म्यूज़िक जो हमारे जो स्लॉट के हिसाब से हैं वो हम चला पाएँ। चलिए यहाँ पर एक और फ़ोन हमें आ रहा है, तो हम देखेंगे लाइन पर कौन है, तो चलिए उनसे हम बात करेंगे। हेलो जी।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते प्रीति, कैसी हैं आप?
1: अच्छी, कैसी है?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। बताइए, आपका काम खत्म हो गया और अभी आप घर पर हैं, राइट?
1: मैं बर्तन मल रही हूँ।
0: चलिए ठीक बात है, ठीक बात है। आपने खाना खा लिया?
1: जी हो गया।
0: बिल्कुल सही बात आपने किया है। मेरा भी हो गया है और अर्ली अगर आप डिनर लेते हैं तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए प्रीति, आप हमें बताइए, हम हमेशा आपसे हम बात करते हैं लेकिन हम पूछना भूल जाते हैं कि आप करती क्या है।
1: मैं काम करती हूँ।
0: और कहाँ पे काम करती हैं आप? दूर
1: मैगजीन में।
0: ओके ओके, तो चलिए यहाँ पर अगला गाना आप किन के लिए डेडिकेट करना चाहती हैं और कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं आज?
1: मेरी मम्मी के लिए, मेरी बेटा के लिए योहान, नानी के लिए,
0: हाँ, और
1: आपके लिए और सुनने वालों के लिए।
0: रियली वेरी स्वीट ऑफ यू प्रीति। एंड कौन सा गाना आप सुनना

0: पसंद करेंगी?
1: कोई भी गाना।
0: चलिए कोई भी गाना आपके लिए हम डेडिकेट करेंगे। बिल्कुल रोमांटिक, तो एक एक करके हमने चुन चुन कर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका भी वक्त अच्छे से गुजरे। सो थैंक यू सो मच प्रीति, एंड डोंट फॉरगेट, ये गाना हमेशा आपके लिए हम डेडिकेट करना पसंद करते हैं, लेकिन अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोई भी दूसरा स्लॉट में आएंगे ना, तो ये गाना जरूर आपके लिए हम डेडिकेट करेंगे। प्रीति मैं ऐसी बकू बकू। सो थैंक यू सो मच प्रीति हमें फोन करने के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग अहेड, बाय बाय
1: बाय।
0: चलिए, ये हमारी प्यारी सी प्रीति जी, हमेशा जब ये गाना गाती हूँ ना तो बहुत ही खुश हो जाती हैं और एकदम चेहरा खिलखिला जाता है। और आप पूछेंगे कि मुझे कैसे पता, भाई आवाज़ से कोई भी शख्स हो ना, उनकी खुशी झलक जाती है, एंड यही खुशी हम आपके चेहरे पर देखना चाहते हैं और आपकी आवाज़ में महसूस करना चाहते हैं। आई जस्ट होप कि यू हैविंग अ ग्रेट ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती दिव्या के साथ इन योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM। तो चलिए, ऐसे ही हमारा साथ देते रहे। फिलहाल के लिए सिन्हा जी का गाना चलेगा, एंड इसके बाद एक खूबसूरत सा गाना रोमांटिक वाला, स्पेशली गोज आउट फॉर प्रीति, उनके बेटे के लिए, उनकी मामा के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए।
2: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

एक पल काफी ही हो जाता है और कभी कभी पूरी जिंदगी भी काफी नहीं होती है। बस ये डिपेंड करता है कि आपके लिए प्यार का डेफिनेशन क्या है, और प्यार का डेफिनेशन आता है उनसे जिनसे आप प्यार करते हैं, उसी से ही आपके प्यार का डिस्क्रिप्शन भी आता है जिंदगी में। और इसी वजह से टू कंक्लूड, लव हैज मेनी डेफिनेशंस, बट एट द एंड ऑफ द डे लव इज प्योर, लव इज लव। नहीं प्यार से ये गाना लेकर आए हैं आप लोगों के लिए आतिफ असलम की आवाज़ में, और इस गाने की फरमाइश की है आशा जी ऑफ मिडलैंड्स। आप ये गाना खास तौर से डेडिकेट कर रही हैं अपने सभी स्टाफ ऑफ ENT के लिए। थैंक यू सो मच, चाहे आप काम पर होते हैं चाहे आप घर पर होती हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड यही गाना गुज़ आउट टू ऑल योर फैमिली, आपकी बेटी के लिए और आपके दामाद के लिए जो स्विट्ज़रलैंड में हैं, एंड ऑल्सो टू योर फैमिली जो पेरिस में है, टू ईच एंड एवरी वन, एंड स्पेशली आपने हमारे लिए डेडिकेट किया हुआ है ये गाना, थैंक यू सो मच। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपके मैसेजेस का हम इंतज़ार कर रहे हैं ऑन 5499-1294, या फिर बात करने के लिए लाइन खुली हुई है ऑन 4028235। आई कैन अंडरस्टैंड, काफ़ी लोग फ़ोन करके ऑफ एयर बात करके ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमें ऑन एयर नहीं आना है, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर आना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वी जस्ट होप कि इस बार जब आपका फ़ोन कॉल आए तो आप ऑन एयर ज़रूर जाएंगे। सो दिस वन गोज़ आउट स्पेशली फॉर यू आशा जी, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए।

वेल वेल, आपने भी हमारा दिल चुराया हुआ है और आपके इस दिल को चुराने के लिए हम भी कुछ खास गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। रात्रि के 8:08 हो चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का हम दिल से वेलकम कर रहे हैं ऑन दिस मंडे इवनिंग 6 जुलाई 2026। ये महीना भी देखते ही देखते ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन इसको एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने के लिए रोज़ वी नीड टू एड डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट। और यहाँ पर आपको तो हर रोज़ आपका डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट मिलता ही है। गाने के तौर पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ खूबसूरत नगमे जिनको सुनने के बाद यू विल फॉल इन लव वंस अगेन। चलिए आपके कुछ मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं। आप कहते हैं कि आज आपकी रात की अच्छी शुरुआत हो, रात भर खूबसूरत सपनों की बरसात हो, जिन्हें आपकी निगाहें हर वक्त ढूंढती रहती हैं, खुदा करे सपनों में उनसे मुलाकात हो। दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर दिस एक्स्ट्रा स्पेशल मैसेज। आकाश चेतन मानसुक, आप हैं बॉम्बू से, साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। एंड चलिए अगला गाना गुजार फॉर दारेन श्वेता रवीश प्रीशा लवशा एंड आपादू फैमिली।

खुशनुआ कनेक्टेड विद अस एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, शायद आपका आज स्पेशल दिन है आज, तो आपको विश करेंगे मिनी मिनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड आई होप दैट यू हैविंग अ ग्रेट वन विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: पूछे जो कोई तो तेरा नाम दूं, कभी आपने एहसास किया है कि जिससे आप प्यार करते हैं कभी कभी उनका नाम प्यार की खुशबू बिखेरता है, और ये जो फ्रेग्रेंस ऑफ लव है इट नीड्स टू बी शेयर्ड एंड टू बी रेसिप्रोकेटेड। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि आप बदले में प्यार ही एक्सपेक्ट करेंगी। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और बदले में आपको दुगना प्यार मिलता है, दिस काइंड ऑफ लव इज एक्स्ट्रा स्पेशल। इश्क वाला लव आपको ज़रूर हो ही रहा है जब आप हमारी गीतों को सुन रहे हैं, मैसेजेस के जरिए तो पता चल ही रहा है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारा साथ देने के लिए इवनिंग लाउंज, जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM। वी हैव दिस ब्यूटीफुल सा गाना अलका याग्निक एंड विनोद राठौड़ की आवाज़ों में।

0: क्या बात है, प्यार का कैसा नशा चढ़ा ये तो प्यार करने वाले ही जानेंगे। बस यहाँ पर आपका साथ है और हमारे ये गाने और नॉन स्टॉप ऐसे ही प्यार की बातें हम कर रहे हैं। इट लुक्स सो सो हैवनली कि आपके मैसेजेस इतने खूबसूरत तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पर बस प्यार को ही महसूस कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर किसने कहा है, नमस्ते आपको दिव्या जी, आप कैसे हैं, बहुत प्यारे गाने बज रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह नेक्स्ट गाना जाएगा आपकी बहन शोभा के लिए, अनुराधा लक्ष्मी एंड सभी रेडियो मस्ती टीम के लिए, अनीता जी अपने फ्लिकॉन फ्लैग से साथ देने के लिए थैंक यू सो मच अनीता जी। एंड आपकी स्वीट स्वीट मैसेज आती हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे ही हमें याद करते रहिएगा अपने मैसेजेस के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए। चलिए यहाँ पर कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन बस ऐसे ही आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि प्यार की दुनिया में जब आप खोए रहते हैं ना, तो आपको हकीकत में भी आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हकीकत से आप जब रूबरू होते हैं तभी जाकर आपको एहसास होता है कि प्यार में खोए रहना ही सिर्फ प्यार नहीं होता है, प्यार में मेहनत करना भी प्यार होता है। कहने का मतलब यही है कि रोज़ रोज़ जिनसे आप बात करते हैं उनके लिए आप वक्त निकालते हैं, और ये वक्त निकालना ही प्यार कहते हैं, इसको ही मेहनत करना कहते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक ही फीलिंग के साथ ज़िंदगी का गुजारा हो जाएगा, इससे आप ज़िंदगी बसर कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। प्यार को बढ़ावा देने के लिए, प्यार को और भी इंक्रीज़ करने के लिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए और भी प्यार ऐड करने के लिए, थोड़ा और प्यार को ऐड करना ज़रूरी है, और ये पॉसिबल तभी है जब आप थोड़ा और ज़्यादा वक्त निकाल पाते हैं। तो चलिए, नेवर नेवर टेक द वन दैट यू लव फॉर ग्रांटेड, हमेशा वो डर होना चाहिए उनके उनके खोने का, और वो फीलिंग हमेशा उतना ही फ्रेश होना चाहिए जिस तरीके से आप पहली मुलाकात जो आपने फील किया है, उसी तरीके की फीलिंग वैसे ही होनी चाहिए। आफ्टर 20 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 30 इयर्स, तभी जाकर प्यार प्यार कहलाता है।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: कौन दिशा में जाना है और कैसे जाना है ये तो बस वक्त ही तय करता है। वक्त के साथ साथ ये आप भी तय करते हैं। कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में हम बैठे रहते हैं और हम डेस्टिनी या फिर लक पर इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप एक्ट और रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी को नई दिशा कैसे मिलेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कभी कभी ज़िंदगी को पलटना और अपनी किस्मत को पलटना आपके हाथों में ही होता है। ऐसे कहा जाता है ना कि जिनके हाथ नहीं होते हैं उनके भी किस्मत होते हैं, इसीलिए ज़्यादा किस्मत की लकीरों पर आपको इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बस ट्राई टू नो दैट लाइफ हैज़ अ स्टोरी, लेकिन कभी कभी इस स्टोरी का क्लाइमैक्स आपको ही लिखना होता है। इस स्टोरी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको ही लेकर आना होता है। 8:56 ऑलरेडी एंड चलिए ये गाना खास तौर से उन तमाम लोगों के लिए जो शायद नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, आपके बारे में हम ज़रूर सोच रहे हैं। यू हैव अ हार्ट एंड आपको बों कुहाज। इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है कल सेम टाइम 7 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे के बीच। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

It's a good, lovely evening, my dear listeners on the waves of radio. Masti, जी हाँ, जितने भी लोग काम पर है सबको बोको, आज लेट नाइट ड्यूटी पर होंगे या फिर नींद नहीं आ रही है, बस गाने सुनने का मन है, तो 3 घंटों का सफर ओनली फॉर यू माई डियर लिसनर्स एंड ऑफ कोर्स नीतू आपके साथ टिल मिडनाइट. इट्स योर लेट नाइट ग्रुप्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती.

बातें होती रहती हैं, इतनी सारी बातें भी होती रहती है। ओ माय गॉड, कितनी सारी बातें होती हैं। अब छोड़ो ना बातें, नहीं तो आगे बढ़ो। वैसे जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ पर नए रंग, नए लोग और नए एहसास मिलते हैं, है ना। कभी ये धूप सी जलती है, कभी छांव की सुकून देती है, लेकिन सच यही है कि जिंदगी को समझना नहीं जीना होता है। हर पल को अपना बनाना ही असली जीत होती है। समझ गए?

खुशी किसी बड़ी चीज में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में छुपी होती है, ये तो हम हमेशा कहते रहते हैं। एक मुस्कान, एक प्यारा सा शब्द या सुबह की हल्की हवा, ये सब खुशी के असली रंग होते हैं। जो इंसान इन छोटी बातों को महसूस कर लेना वो हमेशा अमीर होता है।

है तो गम भी होगा। दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। हर आंसू के पीछे एक सीख छुपी होती है। जो इंसान दुख को समझ लेता है, वो कभी जिंदगी से हार नहीं मानता।

लाइफ इज सो वास्ट, इसमें हम दो पल की जिंदगी जीते हैं लेकिन कितनी सारी चीजों के साथ भी जुड़ जाते हैं। गम हो, खुशियां हो, मोहब्बत, मोहब्बत सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं बल्कि दिल से दिल का रिश्ता होता है। ये दूरियों को मिटा कर भी पास रखती है और कभी कभी पास रह कर भी दूरी का एहसास करा देती है। मोहब्बत समझने से ज्यादा महसूस करने की चीज है।

What is love? Love, दोस्ती है. ये तो अंजलि ने भी कहा था. Yes, दोस्ती वो रिश्ता है जो बिना शर्तों के निभाया जाए. ना इसमें कोई हिसाब होता है, ना कोई वजह. बस एक भरोसा होता है जो वक्त के साथ और गहरा होता चला जाता है. सच्ची दोस्ती जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होता है.

वाह मस्त गाने चल रहे हैं ऑलरेडी इन द सेकंड आवर इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स. और रात को हम सोते हैं, सपने देखते हैं, दिन में उठते हैं, सुबह उठते हैं और सपने को साकार बनाने की हम कोशिश करते हैं. तो मेहनत करते रहे हाँ. वैसे सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते बल्कि जीने की वजह भी होते हैं. जो इंसान सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है.

इशारा है कि नेक्स्ट गाना डेडिकेट किया जाए टू ऑल द ब्यूटीफुल लिसनर्स आउट देयर। वक्त सबसे बड़ा गुरु होता है, ये सब कुछ सिखा भी देता है, ये कभी रुकता नहीं, इसलिए हमें भी हर पल को जीना सीखना चाहिए। वक्त की कीमत समझ जाओ तो जिंदगी आसान हो जाती है।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: वक्त हो और नेचर ना हो, प्रकृति जैसे हम कहते हैं, प्रकृति हमें शांति और

अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन कीजिए बिटवीन योर प्रोफेशन एंड योर प्राइवेसी यानी कि पर्सनल लाइफ। वैसे अकेलापन हमेशा उदासी नहीं होता। अगर आप अकेले हैं इस वक्त तो समझ लीजिए कि अकेलापन हमेशा उदासी नहीं होता। कभी कभी ये खुद को समझने का सबसे अच्छा वक्त होता है। इसमें इंसान अपनी असली पहचान से मिलता है। यस, अगर आप समझते हो कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, ये तो मौका है भाई। क्या किया, क्या करने वाले हो, पॉन्डर अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर प्रेजेंट, तभी आपको सही मायने में सही रास्ता मिल जाएगा।

रास्ता मिलने के लिए उम्मीद की भी किरण होनी चाहिए। जिंदगी तो वैसे उम्मीद पर ही टिकी हुई है। उम्मीद वो रोशनी है दोस्त, जो अंधेरों में भी जलती रहती है। जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी उम्मीद ही होती है जो इंसान को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो कभी भी उम्मीद ना छोड़े, आपकी हिम्मत टूटेगी नहीं।

आपसे इतनी बातें जो हम कर रहे हैं गानों के साथ कि पता भी नहीं चला कि वी आर ऑलरेडी इन द थर्ड आवर. हाँ, रिश्ते बनाने से ज्यादा उन्हें निभाना मुश्किल होता है. आप ही रिश्ते में हो ना, लेकिन जो लोग दिल से रिश्ते निभाते हैं उनकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहती है.

जाए रास्ते, एक मुस्कान जो है किसी का दिन बदल सकती है। ये छोटी सी जो चीज है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, जो बिना कुछ कहे सब कुछ कह देती है।

0: गाने मस्त चल रहे हैं. थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स. और बस थोड़ी देर में हमारी ये मुलाकात खत्म भी हो जाएगी. तो बस सफर को आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर कदम पर नए तजुर्बे लेने का भी नाम है. जो सफर को जीता है वो जिंदगी को जीता है.
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा. धीरे धीरे

कनेक्शन हो रहा है इन गानों के जरिए, थैंक यू सो मच। और दिल जो है एक ऐसी किताब है जिसमें हर एहसास लिखा होता है, कभी खुशी कभी दर्द कभी मोहब्बत, सब कुछ तो इसी में छुपा होता है ना। एंड इट्स सो बस जिंदगी के ऊपर, सो जिंदगी के खूबसूरत पलों को हम जी रहे हैं आपके साथ। और जिंदगी का असली फलसफा यही है दोस्त, कि हर दिन नए तरीके से जीना सीखो, जो बीत गया उसे सीख लो और जो आने वाला है उसे उम्मीद से देखो। टेक केयर, बाय बाय, कैच यू सून।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते